मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज सोमवार है, सक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:52 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हुए हैं। खेत खलिहान में सुनिए वार्ता जैविक खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आज के दौर में अधिक उत्पादन लेने के लिए हम कृषि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। उर्वरक, कीटनाशियों, फफूंद

0: नासियों, खरपतवार नासियों या अन्य कृषि रसायनों के प्रयोग से हमारे पर्यावरण को, हमारे जल को काफ़ी क्षति हो रही है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जल भी हमारा प्रदूषित हो रहा है और अंततः हम बीमार हो जा रहे हैं। हॉस्पिटल का खर्च जो है वो हमारा बढ़ जा रहा है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम जैविक खेती करें। जैविक खेती की आवश्यकता आज इसलिए ज़्यादा पड़ रही है कि हमारा अनाज ही दूषित हो जा रहा है, हमारी सब्जियां जो हैं वो दूषित हो जा रही हैं कृषि रसायनों के प्रयोग से, और उनमें पोषक तत्वों की कमी भी पाई जा रही है, खास करके सूक्ष्म पोषक तत्वों की। तो उसके सेवन से हम खुद बीमार पड़ जा रहे हैं और बीमार पड़ने से हमारा खर्च भी बढ़ जा रहा है। तो हमें शुद्ध अनाज मिले, शुद्ध सब्जियां मिले, शुद्ध दूध मिले, इसके लिए आवश्यक है कि जैविक खेती को हम बढ़ावा दें, जैविक खेती करें। जैविक खेती में आवश्यक ये बात है कि हम मिट्टी से लेकर के पौधे तक जो भी कृषि रसायनों का प्रयोग करते हैं उस कृषि रसायनों के प्रयोग में कमी लावें और अंत में कृषि रसायनों के प्रयोग को पूर्णतः समाप्त कर दें। तो इसके लिए जब हम खेत की तैयारी से बात शुरू करें तो रासायनिक उर्वरकों की जगह पर यदि हम गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक हम कृषि रसायनों के प्रयोग से बच जाते हैं, उर्वरकों के प्रयोग से बच जाते हैं। उससे भी अलग जो है वो आप बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, केंचुआ की खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं, फिर सिटी कंपोस्ट जो कि शहरों के जो कचरे होते हैं उनसे तैयार किया हुआ कंपोस्ट जो है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो खाद तथा उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिट्टी में जिनकी कमी देखी जा रही है उनकी भी आपूर्ति हो जाती है। फिर जब कीटनाशियों के प्रयोग की बात आती है, क्योंकि कीटनाशी सबसे ज़्यादा आपके जहरीले होते हैं और सब्जियों की फसल में खास करके जब कीटनाशियों का प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं तो उससे जो है खाने वाले व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान होता है जो सब्जियों का सेवन करते हैं, क्योंकि बहुत सी सब्जियों का सेवन हम सलाद के रूप में भी करते हैं, कच्चा भी खाते हैं और उस समय उसकी विषाक्तता जब होती है तो हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो सब्जियों की फसल में हम बर्मी कंपोस्ट या गार्डन में भी हम बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए जो प्राकृतिक विधि है, जो अन्य विधियां हैं, उस तरह से कीटनाशियों के प्रयोग को कम करके कीड़ों पर आप नियंत्रण भी कर सकते हैं। जैसे आपके खेत में कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो हाथ से चुन करके भी उन्हें आप नष्ट कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पर डंडे गाड़ दें और डंडे पर चिड़ियों के बैठने की व्यवस्था यदि कर दें तो खेत में यदि चिड़ियाँ आएंगी, पक्षी यदि खेत में आप आमंत्रित करते हैं तो वे स्वतः जो है कीड़ों को चुन करके खा जाते हैं, और इससे जो है बिना कीटनाशियों के प्रयोग के, बिना पैसे के आपका कीट नियंत्रण हो जाता है। उसी तरह से खरपतवार नाशी के लिए तो निकाई गुड़ाई आप करें, या जब रोग होते हैं तो रोग जनकों के नियंत्रण के लिए या रोग जनकों के रोकथाम के लिए भी आप प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। गोमूत्र से बने हुए कीटनाशी पदार्थ, गोबर से बने हुए कीटनाशी पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैविक खेती में धीरे धीरे कृषि रसायनों के प्रयोग को कम करके आप अपने जीवन को भी सुरक्षित रख सकते हैं और फसल उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं।
1: खेत खलिहान में अभी आपने सुना वार्ता जैविक खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोल

0: स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन।
2: पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को सरल शब्दों में कहें तो हर वो चीज जिससे हम घिरे हुए हैं, वायु, जल, पेड़ पौधे, खनिज, वो सारी प्राकृतिक उपहार जिन्हें प्रकृति ने, जिन्हें प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए दिया है। इनमें से वायु और जल तो इतने सुलभ हैं कि कुछ वर्ष पूर्व तक इनकी अहमियत का एहसास तक हमें नहीं था, पर अब वक्त बदल रहा है। वैसे तो मनुष्य के विकास का सीधा असर पर्यावरण पर आदिकाल से पड़ता रहा है। मनुष्य के पैर जहाँ जहाँ पसरते गए, वहाँ जंगल सिमटते गए, कई जानवर विलुप्त होते गए और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर हमारा विकास एक भार बनता गया है। पर पिछले 200 से 300 सालों में औद्योगिक क्रांति और उपभोक्तावाद ने मानवीय विकास को घातीय तरीके से बढ़ा दिया है और इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ भी रहा है। पर अब ये असर सामान्य जनजीवन में दिखने भी लगा है। वायु प्रदूषण पर्यावरण के कुप्रभाव का सबसे ज्यादा प्रतीत होने वाला एक उदाहरण है। अगर वैज्ञानिक आंकड़ों को आधार माने तो देश की राजधानी की हवा जहरीली है, और सिर्फ दिल्ली क्यों, देश के कई नगर की यही कहानी है। ओजोन का छिद्र बढ़ता जा रहा है और ये छिद्र ठीक अंटार्कटिका के ऊपर है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। जमीन के नीचे का जल स्तर गिरता जा रहा है, जिससे पीने के पानी की किल्लत देश में एक आम समस्या बन गई है। बढ़ती जनसंख्या के जरूरतों का ख्याल रखने के लिए पर्यावरण का जिस प्रकार हम शोषण कर रहे हैं, आज ये स्थिति डरावने स्तर पर पहुंच गई है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम नहीं हो रहा है। वैश्विक स्तर पर सम्मेलन होता है, पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाए जाते हैं, बारिश के पानी को संचित करने के उपाय किए जा रहे हैं, पर सबसे बड़ा परिवर्तन तभी दिखेगा जब पर्यावरण संरक्षण को समाज का, देश का हर व्यक्ति अपना निजी कर्तव्य समझेगा और इस कार्य के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। घर या कार्यालय से निकलते समय बिजली बंद कर दें, पानी का यथासंभव दुरुपयोग ना करें, निजी वाहनों का उपयोग कम कर सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। किसी भी संसाधन का उपयोग करते समय अगर हमारे मन को हम ये समझा सकें कि इस संसाधन की कीमत सिर्फ अमुक रुपये नहीं, पर्यावरण के प्रति हमारा एक कर्ज है जिसे शायद भविष्य में हमारी अपनी पीढ़ी को चुकाना होगा, तो पर्यावरण के प्रति हमारा नज़रिया बदलेगा। पर्यावरण ही वो अनमोल उपहार है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देने जा रहे हैं, और अगर हम इसे आज संरक्षित रखने में नाकामयाब रहे तो शायद हम आने वाली पीढ़ी को एक जीने योग्य जिंदगी भी दे पाने में सामर्थ्य नहीं होंगे। अतः एक संकल्प लें, खुद से, आज से, अभी से, अपनी दिनचर्या के हर कार्य में हम इस बात का ख्याल रखें कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान दें। इतना तो हम कर ही सकते हैं।
1: अभी आपने सुना चिंतन मनन, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए देश वंदना।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अभी आपने सुना समूह स्वर में देश वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं गुलशन कुमार की प्रस्तुति।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं उदित नारायण के स्वर में ये भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:35 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा में सुनिए वार्ता, उच्च रक्तचाप। वार्ताकार हैं डॉक्टर शिशिर कुमार पंजीकार।
1: रक्तचाप में नियमित रक्तचाप बढ़ जाती है। नियमित रक्तचाप 120/80 माना गया है। अभी नई सूचना के तहत WHO, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा 40 वर्ष से ऊपर व्यक्ति का नियमित रक्तचाप 140/90 माना गया है। ये बहुत कारणों से होता है। जो लोग शारीरिक काम काफी कम करते हैं एवं ज्यादा आराम में रहने वाले लोग होते हैं, साथ साथ खाना पीना काफी पौष्टिक खाते हैं, उन लोगों को रोग का शिकार होना पड़ता है। इसमें धमनियों के अंदर फैट आ जाता है, जिससे खून के संचार में अड़चन पैदा होती है। नली के अंदर फैट जम जाने से नली सांकरा हो जाता है, इससे खून को दौड़ने में अवरोध मिल रक्त को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिससे वो आगे बढ़ सके। इससे रक्तचाप बढ़ जाता है, इस प्रकार लोग इसके शिकार हो जाते हैं। दूसरा कारण मानसिक तनाव तथा कुछ अंदरूनी रोग है, जैसे किडनी, लीवर, डायबिटीज के रोग से जो लोग ग्रसित हो जाते हैं। इस रोग के कारण शरीर में जो ग्रंथि रक्तचाप को कंट्रोल करता है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती है, इसके वजह से रक्तचाप बढ़ जाता है। इस ग्रंथि को हाइपोथैलेमस नामक ग्लैंड कंट्रोल करता है। ये अपने दो सहयोगियों के द्वारा, जिसे वैसोकंस्ट्रिक्टर वैसोडायलेटर कहते हैं, के माध्यम से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। उपरोक्त रोग के कारण ये सही ढंग से अपना काम नहीं कर सकता, इससे ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है। इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे थोड़ी ही काम में थक जाना, चलने या काम करने पर सांस फूलते रहना, पसीना ज़्यादा आना, सिर एवं छाती भारी लगना, कभी कभी छाती में हल्का दर्द महसूस करना, हाथों में कभी कभी भारीपन महसूस करना, कभी कभी चक्कर भी आना। ये सारी जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पर हम लोग सोच सकते हैं कि ब्लड प्रेशर या रक्तचाप इनका बढ़ सकता है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हो चुके हैं, अगर उनका वजन ज़्यादा है तो उसे घटाना चाहिए। वजन घटाने के लिए खाने में परहेज, जैसे घी, मलाई, मक्खन, ज़्यादा मसाला इत्यादि खाना बंद कर देना चाहिए। नमक का मात्रा काफ़ी कम लेना चाहिए। खाने में ज़्यादातर हरा सब्जी एवं कच्चा फल का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने खाने पीने पर काफ़ी नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा इस रोग का खतरनाक परिणाम भी हो सकता है। इससे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज ऐसे खतरनाक रोग हो सकते हैं। ऐसे मरीजों को रोज 1 घंटा टहलना आवश्यक है। इस रोग में होम्योपैथी इलाज में हर रोगी शरीर के गठन के आधार पर हम लोग और उसके तत्काल लक्षण पर कोई भी दवा चयन कर सकते हैं। हम लोग इसमें खासकर मानसिक लक्षण के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। वैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो साधारणतः हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका नाम है एकोनाइट, 200 मात्रा में हम लोग प्राय दिया करते हैं। रोल्फिया सरपेंटाइना, जो मदर टिंचर अर्क के रूप में दिया जाता है। ग्लोनाइन 200, ये भी पोटेंटाइज रूप में देते हैं। नेट्रामियूर 200, इसको भी पोटेंटाइज के रूप में देते हैं। बेराइटामियूर 200, ये भी पोटेंटाइज रूप में देते हैं। अब एकोनाइट के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। एकोनाइट हम लोग देते हैं जबकि पेशेंट काफ़ी नर्वस कंडीशन में रहता है, थोड़ा सा परेशानी बढ़ता है तो काफ़ी नर्वस हो जाता है। ब्लड प्रेशर थोड़ा ही बढ़ता है कि उसकी बेचैनी बढ़ती है, उसमें धड़कन बढ़ जाता है और सब कुछ परेशानियाँ होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पहले एकोनाइट देने की कोशिश करते हैं। रोल्फिया सरपेंटाइना एक ऐसी दवा है जो आम तौर पर सभी ब्लड प्रेशर के मरीजों को दिया जा सकता है, जिसका जो डोज होगा वो 20 बूंद करके दिन में 2 बार नॉर्मल डोज है, और ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहे तो 20 बूंद करके 3 बार भी दिया जा सकता है, थोड़ी गर्म पानी के साथ आधे कप सुसुम पानी में डाल के। ग्लोनाइन जो दवाई है, ये सरदर्द बरकरार रहे हमेशा, कंजस्टिव हेडेक, जिसमें कि हमेशा जो रोगी है वो अपना सर को दबा के रखना चाहता हो या गमछा से या कपड़े से बांध के रखना चाहता हो, वैसे कंडीशन में हम लोग ग्लोनाइन प्रेस्क्राइब करते हैं। नेट्रामियूर स्पेशली, नेट्रामियूर उसको परेशान करता है जो धूप में आया, धूप से गया, उससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। या धूप में जाने से ब्लड प्रेशर राइज करने लगता है। नेट्रम्यूर उस कंडीशन में भी देते हैं, ग्लोनाइन भी उस कंडीशन में दिया जा सकता है, लेकिन नेट्रम्यूर और ग्लोनाइन दोनों लगभग पैरेलल काम करता है। बैराटाम्यूर रोगी को दिया जा सकता है, इसमें खास बात नहीं। हम लोग खास करके एकोनाइट, बैराटाम्यूर और रॉयल्फिया सरपेंटाइना, ये आमतौर पर ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस्तेमाल करते हैं।
0: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना वार्ता उच्च रक्तचाप। वार्ताकार थे डॉक्टर शिशिर कुमार पंजीकार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी।

चित्रकूट आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही कामना है कि गुरु, समाज तथा भाइयों सहित श्री राम का राजतिलक अवधपुरी में हो और उनके राज्यकाल में ही सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो। अयोध्यावासियों की इस प्रेमाभिव्यक्ति पर ऋषि मुनि अपने योग वैराग्य को हे मानते हैं। श्री राम के प्रति प्रजाजन की इस निष्ठा और समर्पण की भावना से किसे ईर्ष्या नहीं होगी। मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदरपूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण, गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदरपूर्वक उन्हें आश्रम ले चले।

रामचरितमानस गान संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

नई फिल्म से। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत। गायक कलाकार होंगी गोल्डी कुमारी एवं साथी। फिल्म संगीत नई फिल्मों से आप सुनेंगे 11:00 से। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। दोपहर 12:00 से आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। दोपहर 1:00 से आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। गायक कलाकार होंगी आशा देवी। 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। 3:00 से आप सुनेंगे बांग्ला गान। 3:20 पर आप सुनेंगे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। 3:25 से लेकर शाम 5:00 तक आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, शाम 5 बजे से आप सुनेंगे युवा वर्गों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। लोकगीत आप सुनेंगे 7:10 पर, गायक कलाकार होंगे कपिल देव ठाकुर। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, गायक कलाकार होंगे शालिनी। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्र संगीत, कलाकार होंगे उस्ताद विलायत हुसैन खान। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी।

कार्यक्रम विवरण में अभी आपने सुना हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र संप्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः संबंधेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारौ भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्।

0: वान आतंकवादं विरुद्ध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्री मोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारम्भमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः AI तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु IPL इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में जिसे आप रोजाना सुनते हैं सुबह के 7 बजे से लेकर 7:55 तक। और श्रोताओं, आज मैं हूं आप सभी के साथ।

आपका रेडियो दोस्त केशव और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह प्रोग्राम जानकारियों से भरा है, जहां पर हम जानते हैं बहुत सी जानकारियों को, जैसे कि मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास एवं अन्य जानकारियां। और श्रोताओं, आज आपको पता ही है कि हम अपने कार्यक्रम में जो है दो पड़ाव में आपको जानकारियां प्रदान करते हैं और कार्यक्रम के पहले पड़ाव में हम आपको सुनवाते हैं रसरंग। और रसरंग में आज हमारे साथ गायक कलाकार हैं अनिल कुमार आनंद, जिनका हम सभी भजन और गीत सुनकर आनंदित होंगे। और साथ ही साथ 7:20 पर आज हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि आज सोमवार का दिन है तो हम आपको आज सुनवाएंगे अंग्रेजी वार्ता। विषय होगा टीचिंग चिल्ड्रेन अबाउट बॉडी सेफ्टी। वार्ताकार होंगे टेस्मन मैथ्यू। और साथ ही साथ कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और जानेंगे अन्य शेष जानकारियों को। तो आइए श्रोताओं, बिना किसी देरी के अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और सुनते हैं गायक कलाकार अनिल कुमार आनंद के स्वर में ये भजन।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आवाजों का वो सुहाना सफर जो देश के कोने कोने में पीढ़ियों से गूंजता आ रहा है। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आपका अपना साथी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम प्यार से आकाशवाणी कहते हैं, अपनी शानदार यात्रा के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर चुका है। चाहे गांव के चौपालों पर बजता रेडियो हो या आधुनिक मोबाइल ऐप पर और FM बैंड पर, बदलते वक्त के साथ आकाशवाणी ने अपनी तकनीक को भी अपग्रेड किया है और आज के डिजिटल युग में भी नई ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उन सभी उद्घोषकों, कलाकारों और तकनीकी सहयोगियों को हमारा सलाम, जिनकी आवाज़ों ने इस 90 साल के सफ़र को जादुई बनाया है। जी हाँ श्रोताओं, और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको जानकारी देते हैं मौसम सूचना के बारे में, यानी कि मौसम सूचना में आज क्या कुछ होने वाला है मौसम में, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 18 मई को जिले के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी या फिर 50 से

किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रहने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की भी संभावना है। तो श्रोताओं, ये थी मौसम सूचना के बारे में जानकारी। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार अनिल कुमार आनंद के द्वारा गाया यह गीत।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रम शिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ जानकारियों को।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए रसरंग में सुनते हैं गायक कलाकार अनिल कुमार आनंद के द्वारा गाया यह भजन।

0: रसरंग में अभी आप सुन रहे थे गायक कलाकार अनिल कुमार आनंद को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है अंग्रेजी वार्ता टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट बॉडी सेफ्टी। वार्ताकार हैं टेस्मन मैथ्यू।
1: This is Akashwani Bhagalpur. It is 7:20 a.m. by our studio clock. Now you will be listening to an English talk entitled Teaching Children About

साल 2008 में आज ही के दिन पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। और आज ही के दिन साल 2008 ईस्वी में भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को उनकी किताब एनिमल पीपल हेतु कॉमनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया था। तो श्रोताओं, ये थी आज के तारीख में घटित ऐतिहासिक घटनाएं जिनके बारे में हमने जाना। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म फोर्स से। इस गीत को आवाज़ दिया है के एवं सुचित्रा ने।

0: श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ जानकारियों को।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट

0: मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexus showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
6: Nexus.
7: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं रेल सूचना के बारे में जानकारी। गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, जिसका सही समय है 7:50 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस, जो कि रोजाना ही चलती है और इस गाड़ी का सही समय है 7:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका सही समय है आगमन का 8:15 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 30 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका सही समय है 8:05 आगमन का और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 40 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जिसका सही समय है सुबह नौ बजे यह गाड़ी भागलपुर जंक्शन पहुंचती है और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 25 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 12253 यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस, जो कि साप्ताहिक गाड़ी है और यह सोमवार के दिन भागलपुर जंक्शन पहुँचती है और इस गाड़ी का पहुंचने का सही समय है 9:20 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 1:30 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्योल इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का सुबह नौ

पहुंचकर 35 मिनट और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 20 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, इस गाड़ी का सही समय है आगमन का सुबह 10:15 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि रोजाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है 11:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। तो श्रोताओं, ये थी रेल सूचना के बारे में जानकारी। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बचना ए हसीनों से। इस गीत को आवाज़ दिया है के एवं शिल्पा राव ने।

श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों के बारे में। सबसे पहली सुर्खी के बारे में अगर बात करें तो विक्रमशिला सेतु के टूटे अंश पर 5 मीटर गार्डर चढ़ा। विस्तार से बताएं तो विक्रमशिला सेतु के टूटे अंश पर बीआरओ की टीम ने रविवार को 5 मीटर गार्डर चढ़ा दिया है। सेतु पर 49 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा बेली ब्रिज बनाया जा रहा है। इंजीनियरों की निगरानी में कार्य तेजी से चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इस माह के अंत तक बेली ब्रिज का निर्माण पूरा हो जाएगा। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो अगली सुर्खी है कि 60,000 करोड़ निवेश करेगा अदानी ग्रुप। देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी रविवार को पत्नी और अदानी फाउंडेशन के चेयरपर्सन प्रीति अदानी के

साथ सारण जिले के मस्तिचक पहुंचे। यहां उन्होंने अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल परिसर में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर की भूमि पूजन किया। इस दौरान गौतम अदानी ने बिहार में बड़े निवेश का ऐलान भी किया। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो अगली सुर्खी है कि अध्यादेश जारी, सुप्रीम कोर्ट में जज 33 से बढ़कर 37 हुए। विस्तार से बताएं तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के लिए अध्यादेश जारी किया है। सरकार ने 5 मई को जजों की संख्या

28 मई की सुबह ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें अगली सुर्खी के बारे में कि प्लेऑफ में आरसीबी पहली टीम, कोहली का नया रिकॉर्ड। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। रविवार को पंजाब को 23 रन से हराकर उसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम के 18 पॉइंट हैं। प्लेऑफ मैच 26 मई से होंगे। फाइनल 31 मई को खेला जाना है। इससे पहले लीग मैच में आरसीबी ने पंजाब को 223 रन का टारगेट दिया था। इसमें विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर के अर्धशतक भी शामिल हैं। तो श्रोताओं, ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां, और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म ये दिल मांगे मोर से। इस गीत को आवाज दिया है सोनू निगम एवं अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, अब वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम में आपके साथ और आगे आ पाएं, क्योंकि 7:55 हो चुके हैं। और अब जाते जाते बस यही कहूँगा कि आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही आकाशवाणी भागलपुर से जुड़े रहिए। मैं केशव आप सभी से लेता हूँ विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज एवं उर्दू समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
7: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
9: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल VA बराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा कर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
10: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृह मंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृह मंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वी डी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड्स बायलैटरल टॉक्स विद हिज स्वीडिश काउंटरपार्ट उल्फ क्रिस्टेनसन इन गोथेनबर्ग। इंडिया एंड स्वीडन डिसाइड टू एलिवेट देयर बायलैटरल टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission Initiative. Congress leader V.D. Satishan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
11: Central to the visit was the adoption of a joint action plan which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under

0: administer him oath of office and secrecy at a function in Thiruvananthapuram this morning. The Chief Minister-designate unveiled a 21-member UDF cabinet last evening ahead of today's swearing-in ceremony. More from our correspondent.
1: The Congress-led UDF ministry is being sworn in today in Kerala after a gap of 10 years. The Chief Minister and 20 other ministers will take oath at a function organized at Central Stadium, Thiruvananthapuram. 16 members of the new ministry, including Chief Minister V.D. Satheesan, are becoming ministers for the first time. UDF workers in large numbers have been arriving in the state capital since yesterday afternoon to witness the swearing-in ceremony. Senior leaders, including Congress President Malik Arjun Kharge, leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, the chief ministers of Karnataka, Himachal Pradesh and Telangana, outgoing Chief Minister Pinarayi Vijayan and BJP State President Rajiv Chandrasekharan are expected to attend the ceremony today. Nidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah arrived in Raipur last evening on a two-day visit to Chhattisgarh. During his visit to the state, Mr. Shah will participate in several programs in Raipur and Bastar. A report from our correspondent.
2: On the first day of his visit to Chhattisgarh, Union Home Minister Amit Shah will flag off new vehicles under the Emergency Response Service Dial 112 in Raipur this morning. Later, he will travel to Bastar and inaugurate a public convenience center at Netanar village in the district. The center is aimed at providing easier access to government and digital services for people living in remote areas. Thereafter, Mr. Shah will reach Jagdalpur and pay tribute to Matthias at Amar Vatika. In the afternoon, he will interact at Badal Academy in Jagdalpur with families of Matthias, security personnel, people affected by Naxal violence and representatives of various local communities. In the evening, he will also attend the Bastar Ke Sang folk cultural program. This is Mr. Shah's first visit to the state after Chhattisgarh was declared Naxal free. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
0: The trail of the NEET paper leak case has now reportedly extended from Latur to Nanded in Maharashtra. A parent has been accused of purchasing the leaked question paper for 5 lakh rupees for his daughter. A CBI team questioned the individual yesterday and has summoned him to appear before the agency's Pune office tomorrow for further investigation. Meanwhile, in the same case, the Delhi Rouse Avenue Court has remanded Pune-based accused Manisha Mandhare to 14 days of CBI custody. According to the agency, Mandhare was a key conspirator in the leak of the NEET biology examination paper. The India Meteorological Department has said that the southwest monsoon is likely to set in over Kerala on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date of 1st of June. Our correspondent reports that conditions are favorable for the southwest monsoon to advance into more parts of the Southeast Arabian Sea, Bay of Bengal, Andaman Islands and Andaman Sea over the next 2 to 3 days.
3: IMD said Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Karnataka, Keralam and Mahe are likely to experience heavy rainfall today. The Met Department said that Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura, South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are also likely to witness similar conditions. Meanwhile, the Weather Department forecast a heat wave to severe heat wave conditions over West Uttar Pradesh today. Heat wave conditions are very likely at isolated places over East Uttar Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, Madhya Pradesh, Marathwada, Punjab, Rajasthan, Telangana and Vidarbha today. According to IMD, a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius is expected over many parts of Northwest India during the next 3 to 4 days. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: In our bilingual live phone-in program Public Speak today, we will bring you an insightful discussion on the ongoing Phase 1 of Census 2027, the House Listing and Housing Census. Office of the Registrar General and Census Commissioner of India, Ministry of Home Affairs, will be in our studio to answer listeners' queries. To participate, simply dial 011-233-1444 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can send your queries via WhatsApp to 9289094044 or post your questions on X using the hashtag AskAIR. On to sports, in IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi last night. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals scored 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc took 4 wickets, which was later adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Neera Arakul.
4: Thank you, Shagun. Sweden confers its highest honour on PM Narendra Modi. The Royal Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross is Prime Minister Modi's 31st international award, is a top headline in the Pioneer, while the Asian Age headlines trade to chips. India inks 14 Netherlands pacts, lifts ties, Modi jettin, hold talks, adopt strategic partnership roadmap. The statesman mentions metro to run extra train trips to encourage use of public transport. This capacity expansion aims to ensure uninterrupted service and efficient passenger management. UAE nuclear plant attacked by drone, testing Iran truce, writes the Hindustan Times. While the Times of India states drone attack sparks fire at UAE nuclear plant. In an editorial titled Diversification Gains, the Hindu commends India's export performance in April 2026, underscoring the attempts by the government and industry to diversify in terms of crisis. And finally, the Indian Express writes HPV vaccination sees uptake, 1,100 girls receiving the shot. The figure reflects a slow but steadily accelerating start to one of the country's most important public health drives in recent years in preventing cervical cancer. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Neera. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission Initiative. Congress leader V.D. Satheesan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
5: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन कोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपनी दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीडन की कंपनियों को मदद किया है कि वो मेक इन इंडिया माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात गोटनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो इस मुल्क के 2 रोजा दौरे पर कल गोटनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें ये एजाज दोतरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली तआवुन और उनकी दूरंदेश क़यादत को तस्लीम करते हुए दिया गया है। ये अवार्ड आला तरीन इम्तियाज है जो किसी सरबराहे हुकूमत को दिया जाता है। ये वजीर आजम मोदी का 31वां बैनुल अक़वामी एजाज है। वफ़द की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया और दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकतदारी तक ले जाने से इत्तेफाक किया, जो इन ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त है। उन्होंने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, माहौल के लिए साजगार राहदारी खला उभरती हुई टेक्नोलॉजी दिफा और सलामती एसएमईज रसाई और अवाम से अवाम के रिश्तों के मैदानों में गहरे तआवुन के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
6: इस दौरे का असल मकसद 2026 से 2030 तक के लिए एक मुश्तरका एक्शन प्लान इख्तियार करना है ताकि दो तरफा इक्तसादी तबादलों को अगले 5 साल में दोगुना किया जा सके। भारत स्वीडन मजबूत तर अंदाज में यकजा 2047 की जानिब मौजू के तहत दोनों मुल्कों ने 2027 में दो तरफा तजारत और सरमायाकारी समिट मुनाकिद करने का आजम किया। स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान वजीर आजम ने मेक इन इंडिया और मेड विथ स्वीडन खासतौर पर माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अहम मादनियात के मिशनों में मजीद सरमायाकारी को मदऊ किया। अब इस शराकतदारी को सेमी कंडक्टर्स जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तहकम सप्लाई चेन तक तोसी दी जाएगी। वजीर आजम ने पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के बाद भारत को स्वीडन की तरफ से हिमायत दिए जाने पर खासतौर पर शुक्रिया अदा किया जो आलमी इस्तेहकाम के तई एक मुश्तरका अजम का यादा है। गोटेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
5: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मदद किया है कि वो मेक इन इंडिया माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन जैसी पहल के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। गोटेनबर्ग में स्वीडन के सीईओ के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने स्वीडन की कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मिशन साफ सुथरी तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत और स्वीडन के दरमियान जमहूरियत शफाफियत इख्तिरा और पायदारी की मुश्तरका अकदार मौजूद हैं, जनाब मोदी ने स्वीडन की ताकत को इख्तिरा और पायदारी के मैदान में भारत की तरक्की सलाहियत और नशोनुमा की रफ्तार के मुताबिक बनाने को कहा।
7: वोडाफोन एरिक्सन नोकिया ओरेंज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव है। भारत 5G से 6G ट्रांजेक्शन AI एनेबल्ड नेटवर्क्स सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
5: वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने भारत में काफी दिलचस्पी जाहिर की है और पिछले कुछ बरसों में पायदार इक्तसादी इस्लाहात के जरिए मुल्क में यकसर तब्दीली की सताइश की है। यूरोपी गोल में सनती मीटिंग के बाद नामा निगारों से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि सीईओज और कारोबारी रहनुमाओं ने हालिया बरसों के दौरान भारत में देखी गई काबिल जिक्र तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी और स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टरसन ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मुश्तरका सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर खसूसी तोहफों का तबादला किया। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दोतरफा सरगर्मियों के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वजीर आजम मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब किंग हेराल्ड फाइव और जनाब मोदी किंग हेराल्ड फाइव और क्वीन सोंजा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम जोनास गहर स्टोर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वजीर आजम के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत और तहकीक की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा VD सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उन्हें तिरुवनंतपुरम में एक तकरीब में आज सुबह 10 बजे ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। नामजद वजीर आला ने कल शाम UDF की 21 रुकनी काबीना का ऐलान किया था। तफसील हमारे नमा निगार से।
8: कांग्रेस की क्यादत वाली UDF वजारती काबीना को आज केरलम में 10 साल के वक्फे के बाद हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला और 20 वजीर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मुनद एक तकरीब में हलफ लेंगे। वजीर आला VD सतीशन समेत नई वजारती काबीना के 16 अरकान पहली बार वजीर का अहदा संभालेंगे। UDF कारकुन हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में कल दोपहर से ही रियासत की राजधानी पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के वज़ीरे आला, सुबुकदोश वजीर आला पिनराई विजयन और BJP के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
5: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दो रोजा दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। रियासत के अपने दौरे में जनाब शाह रायपुर और बस्तर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
9: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन आज सुबह रायपुर में हंगामी खिदमात डायल 112 के तहत नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां जिले के नेतानार गांव में अवामी सहूलत मरकज के इफ्तिताह करेंगे। इस मरकज का मकसद दूर दराज के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की हुकूमत और डिजिटल खिदमात तक रसाई को आसान बनाना है। इसके बाद जनाब शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और अमर वाटिका पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह का जगदलपुर की बादल एकेडमी में दोपहर में शहीदों के अफराद खानदान, हिफाजती अहलकारों, माओनवाजों के तशद्दुद से मुतासर अफराद और मुख्तलिफ मकामी बिरादरियों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। वजीर दाखला शाम को लोक सकाफती प्रोग्राम बस्तर के संघ में मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर दाखला कल 19 मई को जगदलपुर में वस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज्रायाला शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ को माओवादियों से पाक करार दिए जाने के बाद जनाब शाह का रियासत का यह पहला दौरा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
5: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड अदा करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़द होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड अदा करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं आलमी सेहत असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये 6 रोजा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि यह असेंबली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मुअज्जज अफराद और अवामी सेहत माहिरीन को यकजा करेगी, जहां मुस्तहकम ज्यादा शमूलियाती और लचकदार सेहत देखभाल निजाम के तहत मुश्तरका आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। मगरिब वस्ती रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल आग लगने के वाकये की जांच के लिए आला इंतजामी ग्रेड सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। आग लगने का वाकया ट्रेन के एक मुसाफिर कोच और एक लगेज ब्रेक और जनरेटर कार में उस वक्त पेश आया जब ट्रेन मध्य प्रदेश के लूनी, रिचा और विक्रमगढ़ अलौत स्टेशनों के दरमियान थी। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बारख न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं और कशीदगी के खतरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र तहमुल की अपील करते हुए बातचीत और सिफारतकारी की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। इससे पहले कल मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़दफरा के बारख न्यूक्लियाई मरकज के अहाते में ड्रोन हमला किया गया, जिससे मरकज की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के 1 जून की मुकर्रर तारीख से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम पे आ जाने का इम्कान है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि जुनूब मगरबी मानसून की अगले 2 से 3 दिन के दौरान जुनूब मशरकी बहरे अरब, खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और अंडमान समंदर के हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। एक रिपोर्ट।
8: भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे में आज शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गर्मी की शदीद लू चलने की पेशगोई की है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
5: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 19 ओवर और 2 गेंदों में 197 रन बनाए। इस जीत

0: के साथ दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 8वें मकाम से 7वें मकाम पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। एक दीगर मैच में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 222 रन बनाए। जवाब में 223 रन के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा ओवर्स में 8 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के नीदरलैंड्स दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान दो तरफा तालुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वीडन पहुंचने पर उन्हें आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। रोजनामा प्रताप ने जजों की तादाद बढ़ाने की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने की मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है, अमित शाह ने कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मुल्क की क्यादत करेगा। अखबारात की कुछ अहम खबरें, बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू होगी, अश्विनी वैष्णव का बयान। अमेरिका से चीन 200 से ज्यादा तैयारी खरीदेगा, मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। ईरान ने अब नए हुरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए टोल लगाने का मंसूबा बनाया।
0: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टरसन गोटेनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वजीर आजम ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: मिडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद
0: छाया गीत।

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश से आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण की होगी शुरुआत। राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से समाचारों का होगा प्रसारण। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर शुरू होगा राज्यव्यापी सहयोग शिविर। राज्य में नई खनिज संशोधन नियमावली लागू हुई, बालू पत्थर की ओवरलोडिंग पर 5 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, मौसम विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर रहा है। भोजपुरी समाचार आकाशवाणी पटना समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से प्रसारित किए जाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत के अवसर पर वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा ये समाचार प्रादेशिक समाचार एकांश के YouTube चैनल AIR News_Patna पर भी उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषाओं में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण कर रहा है। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: सहयोग शिविरों में जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौजूद रहकर स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से राशन, पेंशन, आवास, मनरेगा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, सीमांकन, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से भी इन शिकायतों की सीधी निगरानी की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीख।
0: राज्य में बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2026 प्रभावी हो गई है। इसके तहत बालू पत्थर के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: नियमावली के तहत पट्टाधारी द्वारा वाहन पर वैध चालान से अधिक मात्रा में बालू या पत्थर लादने की स्थिति में अब पहली बार ऐसे प्रत्येक वाहन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 महीने में जुर्माना का भुगतान नहीं करने या 1 से अधिक बार उल्लंघन होने पर खनन पट्टा को 3 माह तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन बरकरार रहने पर जिलाधिकारी

0: दौरान वाहन में लगे जीपीएस डिवाइस से छेड़छाड़ करने या उसे बंद करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। आशीष रंजन, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम से 80 अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जलाशयों के आसपास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इको टूरिज्म की सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पटना में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। श्री चौधरी ने पर्यटन के विकास के अन्य संभावित क्षेत्रों पर भी अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। पटना के लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गोवा, महाराष्ट्र और सिक्किम का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए तीनों राज्यों के निवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को प्रत्येक राज्य के विशेषताओं को जानना जरूरी है, इससे हम अपने देश को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। प्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान शराब पीने के मामलों में 1,28,470 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें पटना जिले में सबसे अधिक 15,675 जबकि शिवहर में सबसे कम 1,078 लोग गिरफ्तार हुए। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने बताया कि शराब बिक्री और सेवन के मामले में 9,41,857 छापेमारी हुई, वहीं 1,07,851 केस दर्ज हुए। बीते वर्ष 47,06,391 लीटर शराब जब्त हुई। श्री सहनी ने बताया कि अवैध शराब कारोबार से जुड़े 10,428 वाहन जब्त किए गए। प्रदेश में गुमशुदा या लापता बच्चों का पूरा विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के प्रावधानों को थाना स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इससे संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके तहत अगर कोई बच्चा मिल जाता है तो इसकी जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज कराते हुए डाटाबेस को अपडेट रखना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की है।
3: दिनांक 18 मई राज्य के बक्सर, पूर्वी चंपारण एवं शेखपुरा जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का टेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बक्सर का अधिकतम तापमान 42.8, कैमूर का 42.6 और शेखपुरा का 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 41.7 तथा गया, पटना, जीरादेई और जहानाबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 8वीं तक की कक्षाओं को दिन के 11 बजे तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। जिले के सभी सरकारी निजी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र इसके दायरे में आएंगे। यह आदेश 21

0: समय तक लागू रहेगा। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि जल्द ही चौकबनी से देवघर के लिए नई रेल सेवा की शुरुआत होगी। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके साथ ही चौकबनी कटिहार मेमो सेवा की भी शुरुआत होगी। ई शिक्षा कोष ऐप पर अब शिक्षकों को स्कूल परिसर से 34 मीटर के दायरे में ही रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। पहले यह दायरा 500 मीटर निर्धारित था। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले मनिहारी साहेबगंज गंगा नदी सेतु निर्माण कार्य इस वर्ष दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है।
1: मनिहारी साहबगंज जो पुल बन रहा है वो दोनों राज्यों के बीच की कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है और इसका हम लोग रेगुलर रिव्यू भी करते रहते हैं। पीडी साहबगंज के द्वारा इसमें बताया भी गया है रिव्यू में कि इस साल के अंत तक दिसंबर 2026 तक ये पुल का उनका पूरा करने का प्लान है और उसी हिसाब से कार्य योजना बना करके वो लोग काम कर रहे हैं। इसकी हम लोग समीक्षा साप्ताहिक रूप से पीएमजी की बैठक में करते रहते हैं और उम्मीद है कि ये पुल दिसंबर तक बन जाएगा तो लोगों को कनेक्टिविटी में आसानी होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका सत्यापन शुल्क में कमी की है। सीबीएसई ने शुल्क को 700 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन में यदि किसी छात्र के अंक बढ़ते हैं तो उसे शुल्क वापस कर दिया जाएगा। बकरीद का त्यौहार 28 मई को मनाया जाएगा। पटना स्थित इमारत शरिया और मरकजी मजलिस रुयते हिलाल खान का मुजीबिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल बकरीद का चांद नजर नहीं आया, इसके चलते 19 मई को जिलहिज्जा की पहली तारीख होगी। सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी भभुआ सासाराम पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में आज सुबह आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों के बीच भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जनरल बोगी D3 में चलने की गंध महसूस हुई, इसके बाद बोगी के भीतर धुआं पड़ने लगा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के गंभीरा गांव के पास 12 चट्टी विधायक ज्योति देवी के साथ असामाजिक तत्वों ने दुर्व्यवहार किया, साथ ही उनके सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई भी की गई। विधायक की शिकायत पर मोहनपुर थाने में 7 नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के चमनपुर गांव में कनकई नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं सहरसा जिले के नवहट्टा में कोसी नदी में नहाने के दौरान 2 किशोरियों की डूबने से मौत की खबर है। सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के मोहनी महुआ गाछी में अपराधियों ने एक CSP संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से 1,32,00,000 रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राजगीर में 1 माह तक चलने वाले मेले का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, मलमास मेले में श्रद्धालुओं को सुरक्षा सुविधा मिलेगी। दैनिक जागरण लिखता है, अदानी समूह बिहार में अगले 2 से 3 साल में 50 से 60 हजार करोड़ का निवेश करेगा। प्रभात खबर ने लिखा है, बेगूसराय में देशव्यापी साइबर ठगी का खुलासा, एक अकेले खाते के खिलाफ 205 शिकायतें। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, रेडीमेड गारमेंट ठप बना पूर्वी चंपारण, कपड़ों की 493 फैक्ट्रियों ने बदली चंपारण की तस्वीर। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, देश के 8 राज्य भीषण गर्मी की चपेट में, पारा 40 डिग्री के पार। आज अखबार लिखता है, सूबे के सभी 534 मॉडल स्कूल 20 मई से चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश से आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण की होगी शुरुआत। राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से समाचारों का होगा प्रसारण। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल

0: से पंचायत स्तर पर शुरू होगा राज्य व्यापी सहयोग शिविर। राज्य में नई खनिज संशोधन नियमावली लागू हुई, बालू पत्थर की ओवरलोडिंग पर 5 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, मौसम विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
2: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म आपसा से। इस गीत को आवाज़ दिया है शान एवं सुनिधि चौहान ने। गीतकार हैं समीर और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: AIR at 90. आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म एजेंट विनोद से। इस गीत को आवाज दिया है नीरज श्रीधर एवं साथी ने। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का।
4: From the old school to the new school.

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म बिल्लू से। इस गीत को आवाज दिया है नीरज श्रीधर एवं तुलसी कुमार ने। गीतकार हैं आशीष पंडित एवं मयूर पुरी। संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म फिर हेरा फेरी से। इस गीत को आवाज दिया है हिमेश रेशमिया ने। गीतकार हैं समीर और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं डॉक्टर स्मिता सिन्हा।

0: हम यानी क्रेश
1: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय
2: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
3: वाइल सम जस्ट गो थ्रू द डे यू कुड लिव द ग्रैंड लाइफ विद द ग्रैंड विटारा एज यू मूव फ्रॉम सिटी स्ट्रीट्स टू ओपन एस्केप्स द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कीप्स अप सीमलेसली No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with Auto Purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

AIR at 90. आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, माफ कीजिएगा, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं डॉक्टर स्मिता सिन्हा। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं डॉक्टर स्मिता सिन्हा। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं स्मिता सिन्हा। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं डॉक्टर स्मिता सिन्हा। अब आइए इनके सुर में सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार थी डॉक्टर स्मिता सिन्हा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म आंखें से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत है रवि का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म लेकिन से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का। इस गीत से पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो है फिल्म हीर रांझा से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं कैफी आजमी का और संगीत है मदन मोहन का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म हीरा पन्ना से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर ने। गीतकार एवं संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत। गायक कलाकार हैं गोल्डी कुमारी एवं साथी। आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये देवी गीत। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।
1: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
2: सुबह की सुहानी धूप में ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
3: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
2: रूबरू होंगे आप खबरों से,
3: देश दुनिया की ताजा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
2: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
3: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
2: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
3: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
2: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
3: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
2: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
3: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
2: तो जरूर सुनिए
1: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: रानी बक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
7: तिलका मांझी तो बहुत।
6: बक्शी जगबंधु का नाम सुना है?
8: बक्शी जगबंधु तो
7: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
9: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, आप सभी सुन रहे हैं लोकगीत। गायक कलाकार हैं अरविंद कुमार यादव।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। गायक कलाकार थे अरविंद कुमार यादव। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 11 बजने ही वाले हैं। अगला कार्यक्रम आप कुछ ही देर में सुनेंगे। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म ओ रोमियो से।

अरिजीत सिंह के सर में आप सुन रहे थे फिल्म ओ रोमियो का गीत। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार विशाल भारद्वाज। और अब आपको हम सुनवाते हैं बॉर्डर 2 फिल्म का एक गीत जिसे गाया है सोनू निगम और पलक मुचल ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर एवं मनोज मुंतशिर और संगीतकार अनु मलिक एवं मिथुन। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर। कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
2: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दे दे प्यार दे टू से। गीतकार, संगीतकार एवं गायक कलाकार हैं सागर भाटिया।

0: गई बल्ले बल्ले।
1: और अब आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म भूल भुलैया 3 का एक गीत जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। गीत रचना समीर की है और संगीतकार हैं अमाल मलिक।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता।

नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के गुलदस्ता कार्यक्रम में। दोस्तों आज जैसा कि हम जानते हैं कि 18 मई है और आज का दिन बॉलीवुड जगत के लिए है बेहद ख़ास। आज हम बातें करेंगे बहुत सारी आपसे और बॉलीवुड से जुड़ी कुछ यादें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के गुलदस्ता कार्यक्रम की। 18 मई, यह दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक खास महत्व रखता है। दोस्तों कहा जाता है कि इसी दिन भारतीय सिनेमा की शुरुआती फिल्मों में शामिल श्री पुंडरीक का प्रदर्शन हुआ था। वहीं आज के दिन हम उस कलाकार को भी याद करेंगे जिन्हें पर्दे पर माँ के किरदार के रूप में उन्हें एक नई ऊंचाई मिली। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, आज हम याद करेंगे रीमा लागू जी को, क्योंकि आज उनका पुण्यतिथि है। 2018 में आज ही के दिन इन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया था। तो दोस्तों आज का दिन है बेहद ख़ास। तो हम शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। दोस्तों आज जिस बॉलीवुड की चमक भरी दुनिया हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। शुरुआती दौर में ना आवाज़ थी ना रंग, लेकिन कहानी कहने का जज्बा बेहद अलग और ख़ास था। भारतीय सिनेमा ने मूक फिल्मों से लेकर डिजिटल युग तक का लंबा सफ़र तय किया। इस सफ़र में कई कलाकारों, निर्देशकों और संगीतकारों ने अपना योगदान दिया और सुरीली आवाज़ों की जो खनक है, जिसके बिना कि हम कह सकते हैं कि जब आवाज़ ही नहीं हो तो फिर कोई भी चीज़ अच्छी लग ही नहीं सकती है। मतलब हर चीज़ जो हमारे सृष्टि को सुंदर बनाती है उसमें देखना और सुनना और बोलना, ये तीनों होना बेहद आवश्यक है मित्रों। तो आप सोच सकते हैं कि किस कैसा लगता होगा वो उस दौर में जब बस हम कोई भी चीज़ बस देख पाते थे, ना उसमें कोई रंग था ना आवाज़ थी, लेकिन फिर भी वो दौर था बेहद ख़ास। और उनके जो भी कलाकार होते थे उनके जो वो जो कला अपनी बिखेरते थे, तो उनके उनके कला में वो जादू था कि दर्शकों को बिना बोले और बस अपने अभिनय के जरिए अपनी तरफ आकर्षित करते थे। दोस्तों अगर फिल्मों से संगीत को अलग कर दिया जाए दोस्तों, तो शायद बॉलीवुड की पहचान अधूरी रह जाएगी। एक फिल्म की सफलता में कहानी के साथ साथ गीत संगीत की बड़ी भूमिका होती है। चाहे वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ हो, किशोर दा की आवाज़ के साथ जो उनका अंदाज था, लता मंगेशकर जी की मधुरता हो या आशा भोसले जी की ऊर्जा से भरे गीत, इन स्वरों ने फिल्म को अमर बना दिया। आज भी पुराने गीत हमें कई सारे ऐसे सुनहरे नगमे हैं जो हमें हमेशा याद आते हैं। हम कई सारे नगमे गुनगुनाते हैं और हम जब सिनेमा जगत की बात करते हैं दोस्तों, तो 90s के जो फिल्म है वे भी हमें बेहद आकर्षित करते हैं। कई सारे ऐसे फिल्म आए जो कि आज भी हमारे मन मस्तिष्क पर उसका छाप है। उसी क्रम में हमें एक फिल्म याद आ रही है, 1942 अ लव स्टोरी, जिसकी कहानी में बेहद संजीदगी से और बहुत ही खूबसूरती से कई एक कहानी को दिखाया गया, जिसे कि अनिल कपूर ने बखूबी निभाया। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों आज 18 मई है और आज का दिन जैसा कि हम आपसे बातें कर रहे थे कि बेहद खास है बॉलीवुड के लिए। 18 मई सन 1912 को फिल्म श्री पुंडलिक प्रदर्शित हुई थी। यह भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक गिनी जाती है। यहीं से शुरू हुआ वह सफ़र जिसने आगे चलकर बॉलीवुड को नई पहचान दी। सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं होता है मित्रों, बल्कि सिनेमा को हम समाज का आईना भी कहते हैं। जो भी समाज में बातें होती हैं, घटती हैं, या फिर जो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे जो व्यवहार होते हैं, वे सिनेमा में हमें देखने को मिलते हैं। और यही कारण होता है मित्रों कि सिनेमा हमें बेहद आकर्षित करता है। इस दौर में फिल्मों ने हमें हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर भी किया। और दोस्तों 18 मई 2017 को हिंदी सिनेमा ने एक ऐसी कलाकार को खो दिया जिन्होंने माँ के किरदार को नहीं पहचान दी थी, जो कि हम पहले भी बातें कर चुके हैं इस बारे में कि रीमा लागू जी की आज पुण्यतिथि है। उनकी मुस्कान, सादगी और अभिनय आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित है। कई सारे जो हिट फिल्म थी वो उन्होंने उसमें उन्होंने अभिनय किया। उसमें जो फिल्म हमें याद आ रहा है उसमें मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, साजन जैसी मुख्य फिल्में थी जिसमें इन्होंने अपनी अभिनय से अलग सा जान डाल दिया था।

दोस्तों आप तो जानते ही होंगे, फिर भी हम आपको बता दें कि रीमा लागू जी ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी धारावाहिकों में भी अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनकी सहज अभिनय शैली उन्हें सबसे अलग बनाती थी। दोस्तों उनकी जो अभिनय उनके अभिनय में

एक अलग सा जीवंतता हमें नज़र आता था। और उन्हें जब हम पर्दे पर देखते थे तो उन्हें देखकर हमें अपने ही कुछ कोई रिश्ते दिखते थे, जैसे हमें लगता था कि ये उनकी माँ जैसी लग रही हैं, या फिर ऐसे ही हमें अपने रिश्तेदारों में ही उनकी छवि नज़र आती थी। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में जब भी माँ के किरदार की बात होती है या होती थी, तो रीमा लागू जी का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता था। उन्होंने माँ के किरदार को केवल निभाया नहीं, बल्कि उसमें भावनाएं भर दी। उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और उनका अपनापन दर्शकों को अपने घर जैसा एहसास दिलाता था। इन्होंने मराठी रंगमंच से अपने अभिनय की शुरुआत करी थी। फिल्मों और टीवी दोनों माध्यमों से उन्होंने अपनी अलग अलग पहचान बनाई। वहीं बॉलीवुड में माँ के किरदार की परंपरा में निरुपमा रॉय, रीमा लागू, फरीदा जलाल जैसे नाम हमेशा याद किए जाएंगे। तो आइए हम सुनते हैं फिल्म साजन का ये गीत, क्योंकि इसमें भी उन्होंने, रीमा लागू जी ने इसमें भी अभिनय किया था।

तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम के जरिए हम हमने याद किया रीमा लागू जी को, और हम अर्पित करते हैं अपने पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, अब आपसे विदा होने का भी वक्त हो गया है। तो आज हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपसे कुछ खास जो यादें थी, जो जानकारियां थी हमारे पास, उसे हमने आपसे साझा किया। तो दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज की जो बातें थी वो आपको कैसी लगी ये हमें जानना भी ज़रूरी है, तभी तो हम अपने आप को किस तरह से आपके लिए कोई कार्यक्रम लेकर आए ये समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सिनेमा की जो शुरुआत थी भारतीय जगत में, भारतीय सिनेमा की शुरुआत, वो शुरुआत की कहानी, बॉलीवुड संगीत की खूबसूरती, और याद किया हमने अभिनेत्री रीमा लागू जी को। उम्मीद है यह संगीतमय सफ़र आपको पसंद आया होगा। तो आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कार्यक्रम से दीजिए हमें अनुमति, आपको हम सुनवाते हैं ये गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud

0: owners across India. Frogs is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Frogs right now.
1: Nexa.
2: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है नारीलोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री पार्वती के।

बहनों सिरिना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों कहते हैं ना, हर दिन का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही महत्व होता है, लेकिन कुछ दिन विशेषकर खास होते हैं, या तो त्योहारों के कारण या फिर कुछ खास दिवस होते हैं। वैसे ही आज का दिन भी बेहद खास है, क्योंकि आज हम दो दिवस एक साथ मना रहे हैं। पहला है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, तो दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। पर पहले बात करते हैं बहनों विश्व एड्स टीकाकरण दिवस की। यह दिवस हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में HIV एड्स जैसे गंभीर बीमारी के खिलाफ टीका विकसित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बहनों लोगों में जागरूकता फैलाना, वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और साथ ही समाज को इस बीमारी से बचाव के लिए प्रेरित करना है। बहनों आपको बताते चले कि आज विज्ञान ने कई बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन HIV एड्स अभी भी विश्व स्वास्थ्य के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसलिए इस बीमारी के लिए प्रभावी टीके की खोज अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। बहनों विश्व एड्स टीकाकरण दिवस की शुरुआत बहनों आपको बताते चले कि 1957 में हुई थी। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने महसूस किया कि एड्स से बचाव का सबसे सुरक्षित और स्थायी उपाय टीकाकरण ही हो सकता है। इस सोच के साथ इस दिन को वैश्विक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया, ताकि लोग HIV वैक्सीन अनुसंधान के महत्व को समझ सके। बहनों HIV एक वायरस है जो मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देते हैं। जब शरीर संक्रमणों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है, तब यह स्थिति एड्स का कारण बन जाती है, या यूं कह ले बहनों कि एड्स का रूप ले लेती है। संक्रमण के मुख्य कारणों की अगर हम बात करें तो असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त चढ़ाने, संक्रमित सुई या इंजेक्शन के उपयोग से गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान मां से बच्चों में होता है। इसलिए जागरूकता और रोकथाम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ ही बहनों टीकाकरण किसी भी बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, और यदि HIV के खिलाफ सफल वैक्सीन विकसित हो जाती है तो नए संक्रमणों को रोका जा सकता है और इससे मृत्यु दर में कमी आएगी, समाज और अर्थव्यवस्था पर बीमारी का बोझ कम होगा और बहनों आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा। वैसे बहनों दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर और शोध संसाधन HIV वैक्सीन बनाने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। कई देशों में वैक्सीन ट्रायल चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, शोध संस्थान और स्वयंसेवी संगठन मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक नई तकनीकों, जैविक अनुसंधान और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करके सुरक्षित और प्रभावी टीका विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और बहनों इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले युवा वर्ग को जागरूक होने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें सुरक्षित जीवन शैली अपनाने की ज़रूरत है, सही जानकारी की ज़रूरत है, साथ ही शिक्षा और जागरूकता से ही इस संक्रमण को रोका जा सकता है। मैंने विश्व एड्स टीकाकरण दिवस हमें यह संदेश देता है कि बीमारी से लड़ाई केवल दवाओं से ही नहीं, बल्कि जागरूकता, अनुसंधान और सामूहिक प्रयास से जीती जाती है। जब तक प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक सुरक्षित व्यवहार, नियमित जांच और सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। हमें मिलकर ऐसा

0: समाज बनाना होगा जहां एड्स के प्रति डर नहीं बल्कि समझ, संवेदनशीलता और जागरूकता हो, यही इस दिवस का वास्तविक उद्देश्य है। तो बहनों, इसी के साथ अपनी इस चर्चा को देती हूँ विराम और सुनती हूँ कुछ और भी जरूरी बातें।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो बहने बातें आगे भी जारी रहेगी, फिलहाल चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बहनों, गर्मी तेजी से बढ़ रही है। सूरज की तेज किरणें मानो हर किसी को बेचैन कर रही है, और ऐसे में बच्चों की स्कूल की गर्मी की छुट्टी हो चुकी है। घर में बच्चे हों तो कुछ समय उनके लिए निकालना ज़रूरी होता है, और उनके लिए यही समय होता है बहनों, जब माता पिता कुछ अलग सी ट्रेनिंग देते हैं, चाहे पेंटिंग हो, कुकिंग हो, और भी बहुत कुछ। तो इसी विषय पर सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है बच्चों की छुट्टियां और घर की व्यवस्था। वार्ताकार है बेबी कुमारी।
1: बच्चों की छुट्टी और घर की व्यस्तता, किसी ने सत्य ही कहा है कि परिवर्तन में ही वास्तविक आनंद छुपा रहता है। जब बच्चे एक ही तरह के कार्य करते रहते हैं तो ऐसे में उनकी ऊर्जा का कहीं ना कहीं ह्रास होना प्रारंभ होने लगता है। कार्य की एक रास्ता की वजह से बच्चे में निरस्ता भरने लगती है, इसलिए उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी का आनंद मिलना बेहद ज़रूरी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छुट्टी का दिन खुशियों का दिन माना जाता है, या हम यूँ कहें कि खुशी का सही आनंद छुट्टी के दिनों में ही आता है। जब पूरा परिवार हमारे साथ हो और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब हमारे सभी बच्चे भी हमारे साथ होते हैं। हमारे बच्चे हमारी अमानत होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनकी भविष्य संवारने की जिम्मेदारी हमारी होती है। आम तौर पर 15 मई से 15 जून तक, जब तक एक माह की छुट्टी बच्चों को स्कूल से दी जाती है, तो इस समय काफ़ी गर्मी रहती है। फिर भी बच्चों की तो खुशियां का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वे तो इन छुट्टियों का मज़ा कैसे लिया जाए, इनकी लिस्ट पहले से ही तैयार कर लेते हैं। ऐसे में हम बड़ों का ही फर्ज बनता है कि बच्चे की छुट्टी के साथ साथ उनकी पढ़ाई लिखाई और खेलकूद तथा कई तरह के एक नए प्रशिक्षण से भी उन्हें जोड़े रखें, जिनसे कि उनका मनोरंजन भी बना रहे और उनकी पढ़ाई से भी संपर्क बना रहे। छुट्टी में जब बच्चे सारा दिन घर पर ही रहते हैं तो घर में व्यस्तता का माहौल होना लाजमी है। सुबह होते ही हम महिलाएं लग जाते हैं उनकी फरमाइश को पूरा करने में। कभी तरह तरह के पकवान तो कभी नए नए अंग्रेजी और चाइनीस डिश को बनाते बनाते मानो हमारा आधा दिन तो रसोई में ही खत्म हो जाता है। ऐसे में वे बच्चे जो हॉस्टल से घर आते हैं, उनकी तो खाने पीने और पोशाक की और ही ध्यान देते देते हैं।

0: हम परेशान हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बचपन में बच्चे उन गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिसे हम जैसे चाहें वैसे सांचे में ढाल कर मन चाही आकृति बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों के भविष्य निखारने, संवारने तथा उनको समझने और समझाने का सही मौका यही होता है। हम सब सारा समय उनके साथ बिताते हैं तो हम उन्हें काफ़ी कुछ एक नई चीज़ों से जोड़कर उन्हें काफ़ी एक नए प्रशिक्षण दे सकते हैं, जैसे डांस, पेंटिंग, गायन, तैरारी, खेल कूद या और भी कई प्रतियोगिता में भाग दिलवाना जैसे कार्यों का प्रशिक्षण दे उन्हें कुछ नई आदतों से जोड़ सकते हैं। हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि हमारे बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में ज़्यादा है और अपनी रूटीन को ऐसे तैयार करें जिससे आप घर की व्यस्तता की ओर होते हुए भी बच्चों को विकास की बातों को शामिल कर सकें। आमतौर पर हम छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं और ज़्यादातर बच्चे नानी या दादी घर जाना जरूर जाते हैं। भाग दौड़ भरे इस समय में जो व्यस्तता हम महिलाओं की होती है, उन्हें हम घर पर ही रहें या घर से बाहर हर जगह ही उठानी पड़ती है। घर पर बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई से लेकर उनके मनोरंजन तक का ख्याल रखना भी ज़्यादातर हम महिलाओं को ही पड़ता है। बच्चे का होमवर्क कराना और छुट्टी के तुरंत बाद होने वाली परीक्षा की तैयारी भी बच्चों को बखूबी करानी पड़ती है। ऐसे में कभी कभी तो हम काम के साथ साथ सभी बच्चों की देख रेख में यूं व्यस्त हो जाते हैं कि मानो हम बाहरी कार्यों के तो भूल ही जाते हैं। इन सब कार्यों के साथ हमें अपने घर की साफ सफाई का भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। छुट्टी के दिनों तो मेहमान की जरूर आने जाने की प्रक्रिया लगी रहती है, इसलिए घर की व्यस्तता और भी बढ़ जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम किस कदर व्यस्त हो जाते हैं। बच्चे का मन तो मक्खन की तरह निर्मल होता है। हम जैसे चाहें वैसे उन्हें सही मार्ग और सही दिशा दिखा सकते हैं, इसलिए हमें कई तरह की बातें एक नए नए माध्यमों से उन तक पहुंचाना होता है। उन्हें कई तरह तरह की कहानियां के माध्यम से भी हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करके उन्हें चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। बहनों, ये जिम्मेदारी हमारी ही बनती है कि हम अपनी व्यस्तता भरी जिंदगी में भी अपने बच्चों की सिर्फ शिक्षा ही ना दें, बल्कि उन्हें आज के जीवन की सच्चाई भी उन्हें रूबरू कराएं। लड़का हो या लड़की, सभी के सही माहौल की जानकारी देना भी बेहद जरूरी है। छुट्टी के साथ साथ हमारे घर की व्यस्तता का कोई मार्गदंड ही समझ नहीं आता। सारा दिन घर का काम, फिर बच्चों की देखभाल या उन्हें बाहर लेकर जाना या उन्हें कुछ यूं ही दिनचर्या के साथ बीत जाता है ये छुट्टी का दिन। और हमें यह बात का ध्यान रखना भी चाहिए कि जब हम कहीं बाहर जाने की तैयारी करते हैं तो ज़्यादातर हम उस पर्यटन स्थल का चयन करें जो हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर होती है, जिससे हमारे बच्चे को कुछ ऐतिहासिक जानकारियां भी मिल सके। बहनों, हम जहां भी जाएं उनकी रूपरेखा पहले से ही तैयार कर लें और समय का सही सदुपयोग करें। हर पहलू को ध्यान से पूरा करें। हमें चाहिए कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो स्कूल खुलने के 10 या 15 दिन पूर्व ही घर लौट जाएं, क्योंकि तुरंत वापस आने के बाद बच्चों को पुनः पहले के माहौल में रूमने में थोड़ा समय तो ज़रूर लग जाता है। इसलिए हमें अपनी कार्यशैली सारी बातों को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए।
1: बहनों, हम सुन रहे थे पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय था बच्चों की छुट्टियां और घर की व्यवस्था। वार्ताकार थी बेबी कुमारी। और बहनों, बच्चे आने वाले कल का भविष्य है। उन्हें माता पिता हर वो चीज़ें सिखाते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है, चाहे वो घर की साज सज्जा हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, दीन दुनिया की बातें हो, या अपने पूर्वजों से जुड़ी या फिर संग्रहालय से जुड़ी। ताकि आगे चलकर वो अपने धरोहर को जाने पहचाने, उन्हें सहेज कर रखने की कोशिश करें। और इसीलिए बहनों, विश्व संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को संग्रहालयों के महत्व के बारे में जागरूक करना और इतिहास, संस्कृति और विरासत के संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित करना। बहनों, संग्रहालय किसी देश की पहचान, सभ्यता और परंपराओं का जीवंत परिणाम होते हैं। ये केवल पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के केंद्र होते हैं। और बहनों, इसकी शुरुआत 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा की गई थी। और बहनों, इसका उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और समाज के प्रति जागरूक बनाना। तब से हर वर्ष अलग अलग विषयों के साथ यह दिवस मनाया जाता है बहनों। और संग्रहालय बहनों वह स्थान होता है जहां ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और कलात्मक वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सकता हो, और जहां प्राचीन मूर्तियां, चित्रकला, हथियार, सिक्के, कपड़े, जीवाश्म और पुरातात्विक वस्तुओं संरक्षित रहती है। संग्रहालय हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं और यह बताते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनकी कला, संस्कृति, जीवन शैली कैसी थी। संग्रहालय हमारी ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखते हैं। अगर ये ना हो बहनों, तो कई महत्वपूर्ण वस्तुएं समय के साथ नष्ट हो सकती है। वहीं विद्यार्थियों के लिए संग्रहालय जीवित पुस्तक की तरह होते हैं। यहाँ देखकर सीखने का अनुभव मिलता है, जिससे ज्ञान अधिक प्रभावी बनते हैं। देश विदेश से पर्यटक संग्रहालय देखने आते हैं, जिसे पर्यटन उद्योग और अर्थव्यवस्था को लाभ भी मिलता है। और बहनों, इतिहासकार, वैज्ञानिक और शोधकर्ता संग्रहालयों में सुरक्षित वस्तुओं के आधार पर शोध भी करते हैं। और बहनों, युवा कल के भविष्य है, इसलिए युवाओं को संग्रहालयों का भ्रमण करना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए और संस्कृति विरासत के संरक्षण में भाग भी लेना चाहिए। और बहनों, नई पीढ़ी यह दिवस हमें नई पीढ़ी ही भविष्य में इन धरोहर को सुरक्षित रख सकते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। और बहनों, यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि अपनी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को सुरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम संग्रहालयों को समझते हैं और सुरक्षित रखते हैं, तब हम अपनी पहचान और विरासत को सुरक्षित रखते हैं बहनों। और सचमुच हमारी ये विरासत सुरक्षित है और काफ़ी खूबसूरत भी है।

बहनों, सचमुच ही बहुत सुंदर गीत थे, पर इससे हमारा मन नहीं भरा। शायद आपका भी मन नहीं भरा हो, तो क्यों ना चलते चलते एक और गीत का आनंद उठा जाए। तो सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

नारिलो कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है, इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिस

0: इसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
0: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
3: वी आर फाइन सर।
4: आई एम फाइन।
5: आई एम गुड सर।
2: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट?
6: आई लाइक प्लेइंग सर।
7: आई लाइक पेंटिंग सर।
2: वेरी गुड। एनीवन एल्स?
8: सर, आई लाइक सिंगिंग।
9: आई लाइक प्लेइंग विद माय पेट्स।
2: ओह, दैट्स ग्रेट। नाउ टेल मी, Do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
7: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir. We like it.
2: That's very nice, children.
10: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it? The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Yes, sir.
7: We love to listen the story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir.
7: We love to recite it.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see a big white bear. Looking down at me.
3: Looking down at me.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see a ship sailing.
3: I see a ship sailing.
2: On a white sea.
3: On a white sea.
2: As I lie on my back. Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see an elephant.
3: I see an elephant.
2: Waving its trunk at me.
3: Waving its trunk at me.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: Oh, it's fun. It's fun to me. To see whatever I want to see.
3: To see whatever I want to see.
2: So children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more, notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir!
3: I have seen rainbow.
4: It has seven colors.
0: So children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Lang Lingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, 72-year-old tribal woman from Karnataka.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: Encyclopedia of the forest she is called in Karnataka, तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है.

0: प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
0: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
2: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियाँ जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या

0: त्रिवृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
1: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों

0: वृक्ष से भोजन लेते हैं।
1: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही सुना है आपने, मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
1: अच्छा।
0: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
0: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजा है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आज की गायिका हैं आशा देवी। इनसे आपको हम सुनवा रहे हैं इनका गाया मनोन गीत।

लोकरंग कार्यक्रम को हम देते हैं थोड़ी देर के लिए विराम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

इसमें बैंक एक आवेदन जिलाधिकारी को दे संपत्ति का फिजिकल पोजीशन लेने का आग्रह करता है। जिलाधिकारी सब बिंदुओं पर जांच करके एक मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है जो पुलिस बल के साथ

0: पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए गिद्धौर थाना क्षेत्र से एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी अनिमेश नथानी ने बताया कि उसके पास से करीब 4 किलो अफीम बरामद हुई।
1: सत्यापन में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से दो थैला में सेमी लिक्विड पदार्थ अफीम जैसा बरामद हुआ, जिसकी हम लोगों द्वारा टेस्टिंग की गई तो पाया गया कि 3 किलो 972 ग्राम अफीम उसमें बरामद हुआ है। साथ ही 2 किलो गुड़ भी अलग से थैली में बरामद हुआ है, जिसको जब्त किया गया।
0: साहिबगंज जिले में 300 चोरी या गुम मोबाइल को उनके मालिकों को सौंपा गया। सिद्धू कानू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को पौधा देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने कहा कि मोबाइल चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के साथ साथ इस तरह की घटनाओं में शामिल युवाओं को रोजगार से जोड़ने की भी पहल की जाएगी।
2: पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने समेकित एक कार्य योजना बनाकर उस पर काम कर रहे हैं। एक पक्ष है उसको कि ऐसे सब लोग भी इस में शामिल है तो रोजगार के अन्य अवसरों मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि वो इस तरह के कार्यों में सम्मिलित न हो। दूसरा पहलू है कि जो लोग इसके बाद भी जो हम लोग मौका दे रहे हैं उसके बाद भी इस कार्य में लिप्त है, इस गलत कार्य में, उसको पकड़ा जाए, परेश किया जाए। इसी अभियान के तहत हम लोगों ने 300 मोबाइल रिकवर किया है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,86,000 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,74,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 3 घंटे में गुमला और लोहरदगा जिलों के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का बताया प्रतीक, कहा देशवासियों के लिए गर्व का विषय। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने

0: के साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोक रंग कार्यक्रम से पहले आप प्रादेशिक समाचार से पहले आप सुन रहे थे लोकरंग कार्यक्रम। लोकरंग कार्यक्रम को अब हम बढ़ाते हैं आगे और आशा देवी के स्वर में आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: आप सुन रहे हैं लोकरंग कार्यक्रम। आज लोकरंग की गायिका है आशा देवी। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं इनसे ये लोकगीत।

आशा देवी के गाए इस झूमर के साथ ही संपन्न होता है लोकरंग कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है घर आंगन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनय वाली सभ्य बहिन का राधा के नमस्कार। बहिन, उम्मीद करे छे कि तो सब कुशल मंगल होवो और सब काम काज बढ़िया से होए रहलो होते। बहिन, 3-4 दिन से अचानक से गर्मी बहुत बढ़ी गेलो छे, तो अखनी खान पान के विशेष ध्यान रखे के जरूरत छे। जेना कि कम तेल मसाला वाला खाना खाना छे आरो पानी युक्त फल सब्जी के सेवन ज्यादा से ज्यादा करना छे। जेना कि और साथों में बहिन, पानी, सत्तू, आम पन्ना, नींबू पानी सब कुछ खूब पीना छे। और बहिन, जब बहुत जरूरी काम रहा तभी घरों से बाहर जाना छे, और धूपों में तो बिल्कुल भी नहीं निकलना छे। और साथों में जब भी बाहर जा तो एक बोतल पानी और छाता जरूर रखी लेना चाहिए। बहिन, अखनी खास करी का बच्चा बुतरू और बूढ़ा बुजुर्गों के सेहत के ध्यान रखना छे और साथों में अपनों भी। कहना कि बहिन, जब शरीर स्वस्थ रहते तब मन भी स्वस्थ रहते, और जब मन स्वस्थ रहते तब काम काज में भी मन लगते। बहिन, है तो रहे रोजमर्रा के जीवन से जुड़लो बात, तो अब कुछ जरूरी बातों पर हम अपना सनी से चर्चा करवे। आखना पूरे दुनिया में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाए रहलो छे। बहिन, हर साल 18 मई का दुनिया भर में ई दिवस मनैलो जाए छे। हेकरो मकसद छे HIV एड्स के वैक्सीन बनावे के लिए करलो गेलो प्रयासों का सलाम करना, वैज्ञानिकों के हौसला बढ़ाना आरो आम लोगों का जागरूक करना। 18 मई 1997 ईस्वी का अमेरिका के राष्ट्रपति विल क्लिंटन ने कहना रहे कि हमरा HIV के वैक्सीन बनावे लिली दिन रात काम करना छे। वही भाषण का याद में 1998 से ई दिन मनावा जावा लगले। बहिन, आई भी दुनिया में 3.9 करोड़ से ज़्यादा लोग HIV के साथ जीवी रहलो छे। हेकरो इलाज तो छे पर बीमारी का पूरी तरह खत्म करे वाला वैक्सीन अभी तक नहीं बनलो छे। यही लिली ई दिन हमरा सनी का याद दिलावे छे कि जंग अभी बाकी छे। HIV और एड्स में अंतर समझना बहुत जरूरी छे। बहिन, बहुत लोग HIV और एड्स का एक ही समझे छे, पर यह में अंतर छे। HIV एगो वायरस छिके जे हमरा सनी के शरीर के रोगों से लड़े वाला ताकत यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करे छे। एड्स, जब HIV के कारण इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाए छे और शरीर छोटा बीमारी से भी नहीं लड़ा पा रहे छे, तो उ स्थिति का एड्स कहे छे। यानी कि हर HIV पॉजिटिव व्यक्ति का एड्स नहीं हो छे अगर हेकरो सही समय पर इलाज हो जाए छे। वहीं वैक्सीन कहना जरूरी छे। आय ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से HIV का रोका पारे छो। दवा रोज लेला से व्यक्ति सामान्य जीवन जिया पारे छे। दवा जिंदगी भर खायल होते, एक दिन भी अगर छुटी जाते तो वायरस बढ़ा पारे छो। हेकरो दवा बहुत महंगा होय छे आरो हर गरीब देश तक नहीं पहुंचा पारे छे। दवा से बीमारी रुकी जाए छे लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होय छे। यही लिली बहिन, वैक्सीन एक एहनो कवच होते जे शरीर में पहने से ही HIV से लड़े के ताकत पैदा करी देते, आरो नए ऐसा बीमारी होते नए जीवन भर दवा के जरूरत होते। यही लिली बहिन, वैज्ञानिक 40 साल से वैक्सीन पर काम करी रहलो छे। बहिन, भेदभाव ई बीमारी का सबसे बड़ो वायरस छिके। HIV पॉजिटिव व्यक्ति से नफरत करना वायरस से भी खतरनाक छे। स्कूल से निकालना, नौकरी से हटाना, दोस्ती तोड़ना,

0: ई सब गलत छे। दवा से एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के उम्र सामान्य लोगों जैसनो ही होय छे। ऊ पढ़ा पारे छ, नौकरी करा पारे छ, शादी करा पारे छ, माय बाप बना पारे छ, हुनका खाली हमरासनी के प्यार और साथ के जरूरत छे। बहिन, आय विज्ञान बहुत आगू बढ़ी गेल छे। 1980 ईस्वी में एचआईवी के मतलब मौत रहे, लेकिन आय एचआईवी के मतलब छे बस रोज एगो गोली। आरो बहिन, कल एचआईवी के मतलब होता है बचपन में एगो टीका और जिंदगी भर सुरक्षा। बहन, विश्व एड्स दिवस हमरा सनी का 3 चीज याद दिलावे छे, विज्ञान, संवेदना और संकल्प। बहन, विज्ञान कहे छे हमें वैक्सीन बनाए लेवे, और संवेदना कहे छे कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक कोई एचआईवी पॉजिटिव से भेदभाव नहीं करना छे। आरो बहन, संकल्प कहे छे कि हम सनी खुद जागरूक होवे और समाज का भी जागरूक करवे। तो बहन, आए हम सनी इस शपथ ले छे कि नहीं हम सनी डरबे आरो नहीं डरेबे, हेकरो जानकारी फैलेबे, भ्रम का मिटेबे। कहना कि जब तक दुनिया में एचआईवी खत्म नहीं होते तब तक हमरा सनी के जिम्मेदारी खत्म नहीं होते। तब बहिन, कार्यक्रम में आरु आगू बातचीत करवे, लेकिन ई अंतराल के बाद।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: एक बार फेनु से सभ्य बहन के स्वागत छे उनको मनपसंद कार्यक्रम में। बहन, आज सोमवार दिन छिके और ई दिन के विशेष महत्व होय छे। ई दिन भोले बाबा के विशेष रूप से पूजा पाठ करलो जाय छे। त बहन, आबो हमहू सनी एकटा शिव भजन सुनै छिए और भोले बाबा के स्तुति करै छिए। कलाकार छिके सोनी कुमारी।

0: वाह बहन, बड़ी बढ़िया सी भजन सुन लिए, मन एकदम भक्तिमय हो गए। बहन, बालिका शिक्षा आय के समय के सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता छिके, जे महिलाओं का सशक्त बनाए का गरीबी और सामाजिक असमानता का दूर करे छे। शिक्षित बेटियां न खाली बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता और परिवार में निर्णय लेके क्षमता प्राप्त करे छे, बल्कि संपूर्ण समाज और देश के उज्जवल भविष्य के आधार बने छे। तब बहन, यही से जुड़लो एगो पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से जानकारी लेवे। वार्ता के विषय छिके बालिका शिक्षा आज की आवश्यकता और वार्ताकार छिके कविता जायसवाल।
1: वर्तमान परिपेक्ष को करने का महत्वपूर्ण अर्थ है नई पीढ़ी में नई सामाजिक चेतना जागृत करके उसे भविष्य की जिम्मेवारियों को वहन करने की बौद्धिक क्षमता प्रदान करना। इसके साथ ही साथ उसे सुसंस्कृत और आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक सहयोग करना। समाज का रथ पुरुष और स्त्री इन दोनों पहियों पर गतिमान रहता है। यदि एक पहिया दुर्बल हुआ तो रथ का चलना ही रुक जाएगा। ये पहिए ठीक से चले इसके लिए शिक्षा बालिकाओं और बालकों दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षा की ज्योति से चित पर छाए हुए कुसंस्कारों का कुहासा छटता है। उससे जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की शक्ति मिलती है। संस्कार और सुरुचि का अंकुर पनपता है। परंतु जहाँ तक बालिकाओं की शिक्षा या उसे शिक्षित करने का प्रश्न है, तो इस संदर्भ में हम आज भी बालिकाओं और बालकों में भेदभाव करते हैं। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को शिक्षित करने या उसे सफलता के शिखर तक पहुंचाने, आत्मनिर्भर बनाने में माता पिता अधिक रुचि लेते हैं। लड़की को पराया धन मानते हुए भविष्य में उन्हें दहेज देना पड़ेगा, इससे अभी से ही भयभीत होकर लड़की को पराया उपेक्षित करते रहते हैं, जो माँ बाप के लिए जाने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध है और समाज तथा देश के सुनहरे भविष्य पर कुठाराघात है। जब तक समाज बालकों और बालिकाओं को समान रूप से समझते हुए उसे शिक्षित करने में अर्थात उसे आत्मनिर्भर बनाने में दोनों को समानता से अवसर नहीं देते, तब तक हम अपने परिवार, समाज और देश के सुनहरे भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। समाज में नारी की महत्ता पर महात्मा गांधी ने कहा है कि नारी त्याग की मूर्ति है। जब वह कोई काम शुद्ध और सही भावना से करती है, तब पहाड़ों को भी हिला देती है। मैंने स्त्री को त्याग और बलिदान की भावना का अवतार मानकर उसकी पूजा की है। किसी ने ठीक ही कहा है कि पढ़ी लिखी माँ घर की रहनुमा, अर्थात अगर हम अपने अपने घर में बालिकाओं को लिखाते पढ़ाते या उसे शिक्षित करते हैं, तो भविष्य की किसी घर की माँ को शिक्षित करते हैं, जो अपनी संतानों को अपनी शिक्षा के बल पर उसमें सेवा सत्कार, पारिवारिक एकता को मजबूत करने की क्षमता तथा संस्कारों की मजबूत नींव रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बड़ी कुशलता से निभा पाती है। एक शिक्षित बालिका भविष्य के गृह आश्रम में धर्म के पालन में नारी के रूप में पूर्ण सहयोग करके परिवार को आनंद और सुख शांति बड़ी कुशलता से दे पाती है। माँ का घर और ससुराल की उसकी जिंदगी त्याग और सेवा की यात्रा है। इस कार्य के लिए वह बचपन से ही अपने को तैयार कर लेती है। परिवार की आधारशिला स्त्री के त्याग पर ही टिकी होती है। इन्हीं सभी कारणों से बालिकाओं की शिक्षा परिवार, समाज और देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही एक शिक्षित बालिका अर्थात वह बालिका भविष्य की एक शिक्षित नारी अपनी शिक्षा के बल पर आत्मनिर्भर होकर बहुत हद तक दहेज की प्रताड़ना से स्वयं को और अपने माँ बाप को बचा सकती है। बावजूद इसके

0: आधुनिक भारत में बालिका वर्ग में अनेकों ने शिक्षित होकर अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पल्लवित पुष्पित नारी के रूप में कामयाबी की शिखर पर पहुंची है, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है, जिनमें प्रमुख हैं टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, तीरंदाज दीपिका कुमारी, हरियाणा पुलिस की अनीता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह की, राही सनोवल ने कोरिया में पिस्टल प्रतियोगिता में 25 मीटर के विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनी। प्रसिद्ध आईपीएस किरण वेदी को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। राजनीति क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आदि शिक्षित बालिका वर्ग ने पल्लवित पुष्पित नारी के रूप में परिवार, समाज और देश का मान चोटी पर पहुंचाया है। आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र हो, देश की सुरक्षा के लिए जल थल वायु सैनिकों अधिकारियों का क्षेत्र हो या देश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों का क्षेत्र हो, आदि देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों में शिक्षित बालिका वर्ग ने नारी के रूप में पल्लवित पुष्पित होकर परिवार, समाज और देश का मान बढ़ाया है और बढ़ा रही है। आवश्यकता है इसे और भी गति प्रदान करने की, क्योंकि आज भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्री की शिक्षा, उसकी आत्मनिर्भरता की प्रतिशत बहुत कम है, जबकि भारत में महिला की आबादी पुरुष की आबादी से आधी है। यद्यपि बिहार सरकार बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हुए कई योजनाओं को चला रही है, जैसे बालिका पोशाक योजना, बालिका साइकिल योजना, बालकों और बालिकाओं के लिए मिड डे मील भोजन योजना तथा बालिकाओं को प्रथम श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा पास होने पर 25,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में देने की योजना आदि। भारत सरकार ने अभी हाल में 10 जुलाई 2014 को 2014-15 के आम बजट में बालिका वर्ग की सुरक्षा और सफलता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए पर्याप्त बजट लाया है, जो अत्यंत खुशी की बात है। आवश्यकता है कि सरकार को इसे सही रूप से चलवाने की, जिसमें विशेषकर बालिका वर्ग के माता पिता और हम नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि इसमें उचित सहयोग करेंगे। इस तरह बालिकाओं को बालकों से समानता के आधार पर शिक्षा देने की आवश्यकता है, जिससे परिवार, समाज, देश और भी अधिक खुशहाल हो सकेगा।
1: बहन, बहुत अच्छा जानकारी मिलले हमरा सनी का ई वार्ता के माध्यम से। तब बहन आब एकटा झूमर सुनै छी हमरा सनी बहन इंद्राणी सिन्हा से।

बहन अपना से सब बातचीत और गीत भजन सुने में समय के पता ही नहीं चले छे और विदा लय के समय हो जाए छे। तो अगला दिन फेनू से कुछ नया बातों पर हम चर्चा करबे अपना से। तब तक हमरा विदा दिए। सभ्य का राधा के नमस्कार।

घर आंगन कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक संरचना का विकास हो रहा है और अब लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पटना के गांधी मैदान में अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण एवं उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नए उद्योगों के लिए वातावरण तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के बाद अब उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है और नए नए औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बिहारवासियों से बिहार की समृद्धि में

0: योगदान देने के लिए लौटने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में सचेत किया। उन्होंने कहा कि निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट समय अवधि के भीतर नहीं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज रोहतास, भभुआ और बक्सर जिले में कई स्थानों पर लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना, नालंदा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। इन भागों में अधिकतम तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर आज बारिश की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर रहा है। भोजपुरी समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से प्रसारित किए जाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत के अवसर पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा ये प्रादेशिक समाचार एकांश के यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज _ पटना पर भी उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना से पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषाओं में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण हो रहा है। रोहतास जिले के सासाराम रेलवे स्टेशन पर आज सुबह पटना सासाराम पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि फायर ब्रिगेड और रेल कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। श्री चंद्र ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। केंद्रीय खनन एवं कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने आज नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से दरभंगा जाने वाली मेमू सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नरकटियागंज दरभंगा मेमू ट्रेन सेवा शुरू होने से चंपारण और मिथिलांचल की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने समाहरणालय सभागार में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में आभूषण दुकान में लूटकांड का मुख्य आरोपी अंकित कुमार सिंह घायल हो गया। उसे दोनों पैर में गोली लगी है। पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। रोहतास के जिलाधिकारी उदिता सिंह ने आज जनजातीय गरिमा उत्सव का उद्घाटन किया। कल से 25 मई तक जिले के 5 प्रखंडों के 19 जनजातीय बहुल गांवों में उत्सव के तहत शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ लाभार्थियों की पहचान कर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 2:15 होने वाले हैं। आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: वडशेरी दामोदर मेनोन സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും.
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं. इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं. नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं. शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी. इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी. राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है. राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे. एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है. ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है. ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है. ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी. मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है. केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती.
4: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी.
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
5: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
1: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हेमलता एवं जसपाल सिंह की आवाज़ में। गीतकार एवं संगीतकार हैं रविंद्र जैन और फिल्म है नदिया के पार।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत अब आपको हम सुनवाते हैं लता मंगेशकर एवं साथियों के स्वर में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: आप सुन रहे हैं चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
3: करो,
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: आप सुन रहे हैं चित्रपट से कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हेमलता की आवाज में। गीतकार एवं संगीतकार हैं रविंद्र जैन। फिल्म है अखियों के झरोके से।

कार्यक्रम के अगले गीत के रूप में हम आपको सुनवा रहे हैं साधना सरगम का गाया ये गीत, फिल्म है विश्वात्मा।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: चित्रपट से कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे है। प्रस्तुत है बंगला गान कार्यक्रम। आज बंगला गान कार्यक्रम के कलाकार हैं जावेद अली, सपना मुखर्जी एवं कुमार सानू। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जावेद अली एवं सपना मुखर्जी के गाए इस बंगला गान से।

0: आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आप सुन रहे हैं बंगला गान कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत सपना मुखर्जी के स्वर में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी।

आप सुन रहे हैं बंगला गान कार्यक्रम जावेद अली एवं सपना मुखर्जी के स्वर में आपको सुनवाते हैं एक और बंगला गान।

0: AIR at 90.
1: आप सुन रहे थे बंगला गान कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:20 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब से संध्या 5 बजे तक मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। संध्या 5 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम।
1: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
2: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। एक हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी। यहां तक कि एक महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में एक बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
3: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
2: हाँ, बहुत खूबसूरत।
3: जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
2: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
3: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
2: चोकर खत्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
1: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
2: देवी जी ने कहा,
3: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
2: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काची जयंत पात्रिकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गडरिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
5: मंजरी देखिए, एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए, कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
6: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए हम
1: फिर से स्वागत है
0: जी, और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है
0: जी। और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है एचआईवी, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
0: है। बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर एचआईवी की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही एचआईवी एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले इस बात की कोशिश करता है, और स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके एचआईवी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी बल देता है
0: जी। और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है, और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं, और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा, स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं, तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें थी जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारियां।
0: हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र, पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किमखाप कैसा चलता था, मलमल कैसा होता था, तो ये सब देखने को मिलता है। बड़ा अच्छा लगता है,
1: बहुत अच्छा लगता है। वजनदार चीजें जो दिखती हैं, ढाल, तलवार, ये सब वजन वाली, कैसे वो लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं, वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको संरक्षित करने के उपाय करें और जागरूक भी रहें, और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो है वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो, देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार बार हाथ लगाते हैं,
1: सब नहीं करना चाहिए।
0: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
1: डोरी लगी
0: जिससे कि बाधक बाधा रहे, ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब पुराने अच्छा बहुत समय से संजो कर रखा गया है, इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
1: सही बात है, और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी, उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स।
0: कई संग्रहालयों में शोज भी होते हैं
1: जी,
0: कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा।
1: करीब पहुंच जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते
0: हैं,
1: है ना।
0: तो चलिए, हम करीब पहुंच रहे हैं
1: गीत के।
0: गीत के

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं। पहले स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं। हाँ, बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देशी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मछली, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी, थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन, सेव, पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे, और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं। और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो ये हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है।
0: तो बस आप,
1: तो ये मिठाई है नमकीन,
0: ये आप पढ़ेंगे सामग्री भी
1: पता लग जाएगा। तो भाई, छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताजा छेना या पनीर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, 2 कप ताजा दही हो, उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकालकर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो वो फट जाएंगे। और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और खास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की ये बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपने बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: मोबाइल शरारते
1: कर देता है। तो बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक आपसी तनाव होता है,
0: झुंझलाहट
1: होती है कि अरे खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने का।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसर्जन।
1: और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है। साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी, अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। धीरे धीरे संवाद कम होने लगता और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना, फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
1: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहां तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती है। इसे हम नजरअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़कर रखता था,
0: एक डोर में बांधे रहता था।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहां डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे, टाइम नहीं लगा रहेगा।
0: ये समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही है और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन लेते हैं।

0: जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल।
1: बिल्कुल।
0: एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष तो पुरुष, बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ, ये बात तो होती है ना कि सोते समय भी कोई देख रहा है,
1: जबकि
0: सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूरी बरतना अच्छा रहता है।
1: हाँ, बेड से आप दूर ही रखिए, मोबाइल मेज पर रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहू और बेटों की तू तू मैं कभी ना कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा की मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे जरूरी है कि आप मोबाइल को दूर ही रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफी चीजों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं, आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है, लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल। और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूँगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले

0: तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है. ये चीज अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं. हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं. एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे. और रही बात विटामिंस की, विटामिंस को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स. ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको. लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है. इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है.
1: बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद. तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में. सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं.
0: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं. सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी. प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है. और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है.
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं. तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते हैं, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी. कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है. उसमें कोई चीज छूटी नहीं है. तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है. कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ.
1: जी.
0: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं.
0: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं. और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है. तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं. जो इनकम्प्लीट प्रोटीन में बता रही थी, ये वो चीजें है जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है. और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है. दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
1: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं. ये जो प्रोटीन है, इस ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन. इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं. लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में, जैसे बताए, दो चीजें साथ में ले ले तो ये कंप्लीट हो जाता है. और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी खिचड़ी.
1: अच्छा.
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं. तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए. जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है.
1: अच्छा.
0: तो पहला अगर मैं देखूं तो दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है. दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है. और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है
1: अनाज के साथ.
0: बिल्कुल
1: जी जी.
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे. जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है. ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं. भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है,
0: हाँ, जो प्रॉपर्टीज है, ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है,
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है.
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा. हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर. फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए. कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो ज़रूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीज़ें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदें मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज़ घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कच्चे हैं तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज़ है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है कई बार, ये मिथ है या सच है, कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
0: वो कौन सी है?
1: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
0: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
1: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज़ परहेज नहीं करनी है।
0: प्रोटीन ले सकते हैं,
1: बिल्कुल ले सकते हैं, और ज़रूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना ज़रूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा।
0: जी जी
1: उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं कि बीज वाले
0: बंद कर दीजिए, टमाटर बंद कर दीजिए,
1: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
0: जी जी व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
1: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
0: जी बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
1: ये वादा रहा इस मूवी से, ये वादा रहा
0: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपको।
1: जी बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था। हम सुनवा रहे हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो।
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि इतना सारा पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के अब्सॉर्ब भी हो गया तो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
0: ओहो, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल, वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा। शरीर को बचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी जी जी तो इसका मतलब ये प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके, विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें, और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें, और शाम को जो मिला खा लें, तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
1: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना।
0: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में है, इसका डिटेल बताइए आप।
1: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाए और जितनी जरूरत है उतनी खाए, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
0: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
1: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की जरूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है। तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है जैसे मैंने बताया किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेस जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
0: सीरम क्रिएटिनिन,
1: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
0: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है,
0: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से।
1: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से, आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
0: जी जी जी भाई, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
1: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
0: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व, और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन्स है वो है फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है, लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए, और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो, अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वॉक में रहते हैं पैटर्न में, एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
1: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है,
0: जैसे
1: फल हो गए जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, जब तक वो कॉम्बिनेशन

0: नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीज़न है प्रोटीन खाने का वो रीज़न नहीं हो पाता है कंप्लीट क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पोर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता
1: जैसे
0: है।
1: ऑरेंज है,
0: जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है। मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियां लूँ तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज़्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज़्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज़्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये ना पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सब सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स आप
1: ग्रहण
0: कर
1: करना
0: रहे
1: है। बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहत नाम कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल
1: फिल्म
0: मूवी
1: से
0: से।
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: है अब

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या धुंधलापन
1: वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेज है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी जी।
1: दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
0: इसका और क्या काम होता है?
1: ये ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे
0: जी।
1: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है
0: जी।
1: ये मेजर सोर्सेस है, इसके अलावा भी काफी सारे हैं बट ये तो ज्यादा जरूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इंप्रूव करता है,
0: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है
1: जी। और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है
0: जी।
1: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
0: है,
1: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची, मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। तो ये चीजें है हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
0: जी जी। और देखिए, आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियाँ होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
1: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्युबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं होता है। और रही बात फैट सोल्युबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे हैं या हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीजन से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं। वो मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं या फिर वैसी कोई चीज़ नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए। हर चीज़ रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्जी रोटेशन पे रखो। जितना आप उसे अलग अलग चीज़ें खाएंगे अलग अलग समय पे, उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
0: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
1: इश्क भुलावा हंसी तो फंसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज़ की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे
1: जी। संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज, तो आप चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो, ठीक है। कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है,
0: कठोर,
1: तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तीसरा है आपकी सब्जियाँ,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है,
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, बट ये जरूरी है, इसमें विटामिन भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ, और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पानी, जिसे हम ज्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीजें, पांचों चीजें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न जमाना है, पास्ताज एंड पिज्जाज का जमाना है, तो वो पास्ताज एंड पिज्जाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे
0: कितनी हमें आवश्यकता है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं जो हमारे खाने के लिए बहुत जरूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे, तो ये हमें ज्यादा खाने से भी रोकता है, और ये ज्यादा जरूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज, उनके लिए ये चीज बहुत काम करती है, उनके लिए भी ये चीज बहुत काम की है जिनको वजन कम करना है
0: जी,
1: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत जरूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी जरूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है, तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीजें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई, डिसॉल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए, तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, मेरा पेट भर देगा तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
1: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं हैं। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की ज़रूरत है,

0: अगर आप ठीक हो
1: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है
0: तो मिलना जरूरी है, एक बार मिलना जरूरी है। आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफी बार हम चीजें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फायदा कर रहा है, या ये चीजें हम अवॉइड कर दे रहे। जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। और
1: या फिर वो बिना मलाई का दूध
0: एग्जैक्टली अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीजें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना जरूरी है क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है। वो इंटरनेट से पड़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज का नॉलेज है, उस चीज की इंफॉर्मेशन रहती है।
1: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
0: बिल्कुल
1: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
1: उसकी प्रकृति अलग होती है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीजें चेंज हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी जरूरतें अलग है, वो एक चीज पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीजें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीजें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें क्योंकि हर फल का अपना इंपॉर्टेंस होता
1: जैसे
0: है।
1: जैसे गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
0: आम, गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डायटिशियन की सलाह लगेगी ही, बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीजन है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीजन छोड़ के अगर ठंडी की सीजन में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज करूंगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज तो कम से कम रखनी है। एक से ज्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी जरूरत पूरी होगी, तब तक हमारी जरूरत नहीं पूरी होने वाली है।
1: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की जरूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीजों में एक चीज रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीजें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले ये भी जरूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो, बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीजें विटामिन प्रोटीन मिनरल्स जितनी भी चीजें चाहिए वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट

0: के साथ खत्म कर ली जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया आज के इस कार्यक्रम में।

योगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हम हाजिर हैं लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी में सुन युववाणी सुनने वाले सभी नए एवं पुराने दोस्तों को आपके मित्र समर दुबे का प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सब पहले की तरह मस्त और व्यस्त होंगे। तो साथियों, युववाणी तो आप सुनते ही होंगे, और अगर नहीं सुनते तो सुनने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में लाते हैं आपके पसंद की सारी विषयों से जुड़ी रोचक और लोकप्रिय तथ्यों को, वो भी बिल्कुल अनोखे अंदाज में। तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा को। आज के युववाणी में हम चर्चा करेंगे विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पर, और साथ ही हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस पर। इसके बाद हर दिन की तरह डेली ट्रिविया होगा, जहां हम आपसे पूछेंगे रेडियो से जुड़े प्रश्न, जिसका जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। इसके आगे आज का विशेष स्तंभ सृजन में हम आपको एक कविता सुनाएंगे, जिसके कवित्री हैं सोनी खानम। इसके आगे रोजगार से जुड़ी कुछ सूचनाएँ होंगी, और इन सब के बीच गीत संगीत भी जारी रहेगा, और अंत में हमेशा की तरह हाल फिलहाल की घटनाओं से रूबरू भी कराएंगे। प्यारे श्रोताओं, आशा है कि आप सब मुझसे जुड़ चुके होंगे। आइए अब चलते हैं आज के चर्चा की ओर। साथियों, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, जिसे एचआईवी टीकाकरण जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 18 मई यानी आज मनाया जाता है। यह दिन एचआईवी एड्स के खिलाफ चल रही लड़ाई और टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। यह टीकाकरण के विकास के लिए समर्पित शोधकर्ताओं, स्वयंसेवकों और स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मानित करता है। यह दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा 1997 में दिए गए उस भाषण की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने एचआईवी टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डाला था। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और CD4 कोशिकाओं को निशाना बनाता है, जो संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति में CD4 कोशिकाओं की संख्या कम होने से उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है, तब एड्स का निदान किया जाता है। इलाज ना कराने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। साथियों, विश्व एड्स वैक्सीनेशन दिवस, जिसकी शुरुआत 1998 में राष्ट्रीय एलर्जी और संक्रामक रोग संस्थान द्वारा की गई

0: थी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा एचआईवी वैक्सीन के लिए कार्रवाई के आह्वान की याद में भी मनाया जाता है। 1997 में मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में दिए गए उनके भाषण में एड्स के लिए वैक्सीन विकसित करने की तत्कालिकता पर प्रकाश डाला गया है। साथियों, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान की अत्यधिक आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक मंच है। इस दिन दुनिया भर के लोग एड्स से अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वैश्विक स्तर पर इस बीमारी के प्रतिकूल प्रभाव को उजागर करते हैं। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस एचआईवी एड्स से जुड़े मिथकों को दूर करने और शिक्षा प्रदान करने का भी एक अवसर है। मित्रों, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस हमें यह याद दिलाता है कि चिकित्सा विज्ञान ने भले ही एचआईवी के इलाज में बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन इस बीमारी या कहीं महामारी को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक प्रतिभा टीका ही एकमात्र अंतिम समाधान है। यह दिन वैज्ञानिकों के निरंतर संघर्ष को सलाम करने, समाज से एड्स से जुड़े कलंक को मिटाने और सुरक्षित स्वास्थ्य आदतों को अपनाने का संदेश भी देता है। मित्रों, अपने इस महत्वपूर्ण चर्चा को करते हैं समाप्त और अब हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस पर। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई यानी आज समाज में संग्रहालयों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद 1977 से हर साल इस दिवस का आयोजन कर रही है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज के विकास में संग्रहालयों के महत्व को रेखांकित करना है। 40 साल पहले पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 में अधिक से अधिक संग्रहालय भाग ले रहे हैं। पिछले वर्ष लगभग 37,000 संग्रहालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस में भाग लिया था। मित्रों, संग्रहालय के लिए एक दिवस अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने रूस के मॉस्को में एक आम सभा आयोजित की थी। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय सर्वप्रथम 1992 में स्थापित किया गया था। कई संग्रहालय इस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस में भाग लेते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी संग्रहालयों को इस विशेष दिवस में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया जाता है। साथियों, संग्रहालय के महत्व और सम्मान को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संगठन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इसलिए भी मनाया जाता है ताकि यह संदेश दिया जा सके कि संग्रहालय संस्कृति, विरासत, शांति और सकारात्मक प्रभाव का मुख्य स्रोत है। संग्रहालय दिवस के अवसर पर संग्रहालयों के महत्व को जानने और मनाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर कई संग्रहालय लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए भी भाग ले रहे हैं। साथियों, कला से परिचित होने का सबसे अच्छा तरीका है किसी संग्रहालय में घूमना। आप जितनी अधिक कलाकृतियां देखेंगे उतनी ही आप अपनी कला की समझ को विकसित कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ अपने इन रोचक चर्चाओं की कड़ी को करते हैं समाप्त और अब बारी है डेली ट्रिविया की, जिसमें हम आपसे पूछेंगे रेडियो से जुड़े प्रश्न जिसका जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तो आज का हमारा सवाल है, विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसी के साथ अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी।

0: साथियों, और अब बारी है आज के विशेष स्तंभ सृजन सृजन का, जिसमें हम आपको एक काव्य पाठ सुनाएंगे जिसके कवि हैं आनंद कुमार।
1: तो तुम अपनी कुछ कविताओं के साथ, पहली कविता जिसका शीर्षक है सबसे अधिक। सबसे अधिक रात में सबसे अधिक दिखता है चांद, सबसे अधिक बेचैनी में सबसे अधिक आती है नींद, सबसे अधिक अपराध में सबसे अधिक कांपता है कलेजा, सबसे अधिक दूरी में सबसे अधिक याद आता है घर, सबसे अधिक दुखों में सबसे अधिक तलाशे जाते हैं कंधे, और सबसे अधिक उदास दिनों में सबसे अधिक मुस्कुराता है फूल। मसलन, जब कोई चीज़ अधिकता से मुक्त होती है तब वह सबसे पहले अपनी लघुता से ऊपर उठ जाती है। मसलन, जब कोई चीज़ अधिकता से मुक्त होती है तब वह सबसे पहले अपनी लघुता से ऊपर उठ जाती है। दरअसल सबसे अधिक होने पर सबसे कम होने की स्वीकार्यता का होना ही सबसे अधिक होना है। दूसरी कविता जो एक खत के रूप में है, हर एक युवा वर्ग जो अपने अपने हिस्से का संघर्ष झेल रहा है वो अपने पिता से कुछ ना कुछ कहना चाहता है इस संघर्ष के दौर में। उस संघर्ष के नाम, उस खत के नाम एक कविता है। कविता यूं है कि वो जिनके हिस्से का हर दुख बांटना था मुझे, वो जिनके हिस्से का हर दुख बांटना था मुझे, वो जिनके सारे उलझनों को छांटना था मुझे, जिनके कंधों से कंधा मिलाकर चलना था हमें, उन्हीं कंधों का भार तो नहीं हो जाऊंगा पापा, हार तो नहीं जाऊंगा पापा, हार तो नहीं जाऊंगा पापा। बहे मेरे आंसू जब भी मुझको देते धीर रहना, बहे मेरे आंसू जब भी मुझको देते धीर रहना, व्यथित हो मन चाहे पर तुम ही मेरे पीर रहना। बहे मेरे आंसू जब भी मुझको देते धीर रहना, व्यथित हो मन चाहे पर तुम ही मेरे पीर रहना। डुबो दे किसी को जो अपने बहाव के आगोश में, डुबो दे किसी को जो अपने बहाव के आगोश में, मैं ऐसी नदी की धार तो नहीं हो जाऊंगा पापा, हार तो नहीं जाऊंगा पापा, हार तो नहीं जाऊंगा पापा। आखिरी बंद है, खत्म होती दाशता ऐसे मेरे, सपने थे वो पंख पाते, खत्म होती दाशता ऐसे मेरे, सपने थे वो पंख पाते, कामयाबी की अनुगूंज हेतु अंजुरी को शंख भाते, खत्म होती दाशता ऐसे मेरे, सपने थे वो पंख पाते, कामयाबी की अनुगूंज हेतु अंजुरी को शंख भाते, एक कहानी ऐसी जिनमें केवल शोक हताशा है, एक कहानी ऐसी जिनमें केवल शोक हताशा है, इन्हीं कहानियों का एक दिन सार तो नहीं हो जाऊंगा पापा, हार तो नहीं जाऊंगा पापा, हार तो नहीं जाऊंगा पापा। एक कविता जिसका शीर्षक है संसार का सेतु। सेतु अर्थात पुल, वो एक चीज जिससे हर इंसान एक दूसरे को जुड़ा हुआ महसूस करता है। कविता है कि जब नहीं था कोई जरिया, नहीं था कोई पुकारने का कारण, समझ आता था छलका आंसू तब भी। जब नहीं था कोई जरिया, नहीं था कोई पुकारने का कारण, समझ आता था छलका आंसू तब भी। जब नहीं थी कोई भाषा, नहीं था कोई एकाध शब्द, समझ आता था पूरा पूरा दुख तब भी। और जब नहीं था कोई जुराव, नहीं थी कोई मिलती जुलती आवाज़, समझ आता था समूचा संगीत तब भी। आदमी भाषा से अलग हुआ तो आंसुओं से जुड़ा, ध्वनियों से अलग हुआ तो संगीत से जुड़ा, और जब दुख से अलग हुआ तो अंततः दुख से ही जुड़ा। वास्तव में दुख संसार का सेतु था जिसने अपने नींव के तले बसाया उदास लोगों का एक अलग गांव, जिसमें एक अलग भाषा, एक अलग संगीत और एक अलग पुकार के लोग अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ रहा करते थे। एक गीत है जो हमारे देश के उन नौजवान साथियों के नाम है जो एक प्रहरी के रूप में रात के सन्नाटे में हम सबों की ओर एक आवाज़ प्रदर्शित कर रहे हैं, एक आवाज़ के ज़रिए पुकार रहे हैं, उस पुकार के नाम एक गीत है। गीत का अनुवाद देखें। आधी रात्रि के उस क्षण में हम आंसू

भर भर कर रोए। आधी रात्रि के उस क्षण में हम आंसू भर भर कर रोए। जाने कैसी आहट थी सो कोने में डर डर कर सोए। आधी रात्रि के उस क्षण में हम आंसू भर भर कर रोए। जाने कैसी आहट थी सो कोने में डर डर कर सोए।

आ रहा है, पर हिमालय की चोटी से हमको कोई बुला रहा है, पर हिमालय की चोटी से हमको कोई बुला रहा है। पहला बंद। रणभूमि में गर हम होते, संभव था कुछ कर ही जाते। रणभूमि में गर हम होते, संभव था कुछ कर ही जाते। इस मिट्टी की खातिर केवल जीते या कि मर ही जाते। इस मिट्टी की खातिर केवल जीते या कि मर ही जाते। आक्षेपों से घुट कर ये मन, आक्षेपों से घुट कर ये मन खुद ही खुद को रुला रहा है, पर हिमालय की चोटी से हमको कोई बुला रहा है, पर हिमालय की चोटी से हमको कोई बुला रहा है। आखिरी बंद। रत्ती भर के जीवन में ही जिसने अपना शब खोया है, रत्ती भर के जीवन में ही जिसने अपना शब खोया है। जिस वनवासी का घर छूटा, पूछो उससे कब रोया है। उब

0: है, हमको कोई बुला रहा है, हमको कोई बुला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: साथियों, और अब हम आपको आज के साप्ताहिक स्तंभ में रोजगार से जुड़ी कुछ सूचनाएं सुनाएंगे। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की ओर से नॉन एग्जीक्यूटिव के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 11,127 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसके लिए आवेदन 15 मई से लेकर 14 जून 2026 तक लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट रेलवे बोर्ड पर जाकर देख सकते हैं। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है रोजगार से जुड़ी इन सूचनाओं से आपको बहुत जानकारी मिलता होगा। साथियों, आइए अब समसामयिक में रूबरू होते हैं बीते कुछ दिनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा, रक्षा, समुद्री अवसंरचना एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने हेतु कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में वैज्ञानिक ने एक नए क्वांटम परिघटना की खोज की है, जो यह दर्शाती है कि विपरीत क्वांटम अवस्थाओं में तैयार किए गए कण कभी कभी समान अवस्थाओं वाले कणों की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान

कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व भर की सरकारों से निकोटीन पाउच को नियमित विनियमित करने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि युवाओं को लक्षित आक्रमण विपणन रणनीतियां नशे की प्रकृति को बढ़ा रही हैं। WHO ने फ्लेवर विज्ञापन, निकोटीन मात्रा तथा सोशल मीडिया प्रचार पर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता बताई है। भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में हुई संपन्न ब्रिक्स विदेश मंत्रियों को दो दिवसीय बैठक किसी संयुक्त वक्तव्य के बिना समाप्त हो गई। इसका कारण पश्चिम एशिया की स्थिति पर कुछ सदस्य देशों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण रहे, जिसने साझा भाषा और सहमति को असंभव बना दिया। साथियों, आज के समसामयिकी में अब बस इतना ही। उम्मीद है यह आपके प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाओं के लिए लाभप्रद होता होगा। दोस्तों, और अब समय हो चला है आज के डेली ट्रिविया में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। हमारा सवाल था, विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है, जिसका जवाब है 13 फरवरी। साथियों, और अब बारी है फन फैक्ट का, जिसमें हम आपको बताते हैं रेडियो से जुड़े कुछ मजेदार तथ्य। क्या आप जानते हैं इतिहास का पहला रेडियो जिंगल विटीज के विज्ञापन के लिए बनाया गया था? जनरल मिल्स के अनुसार दुनिया का पहला गायन विज्ञापन 1926 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रसारित किया गया था। रेडियो पर चार पुरुषों गायकों ने बड़ी खूबसूरती से गाया। क्या आपने विटीज ट्राई किया है? ये पूरी तरह से पौष्टिक है और इसमें भरपूर चोकर है। तो दोस्तों, फन फैक्ट के इस मजेदार स्तंभ में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्यारे श्रोताओं, आज का युवानी कार्यक्रम आपको कैसा लगा? ईमेल या पत्र द्वारा हमें जरूर सूचित करें, क्योंकि आपके प्रतिक्रिया से हम आगे का कार्यक्रम और बेहतर प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करेंगे। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड 812001। हमारा ईमेल एड्रेस है phairbhagalpur@gmail.com। दोस्तों, हमारा साथ अब बस यहीं तक। स्टूडियो की घड़ी में अब हमारे जाने का वक्त हो चला है। उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। साथ ही दीजिए अपने दोस्त समर को इजाजत। नमस्कार।

युववाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। पहला गाना हमने फिल्म खुददार से लिया है। कुमार शानू एवं अलका याज्ञिक ने इसे गाया है। गीत के बोल देव कोहली के हैं और संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90. अनुराधा पौडवाल एवं उदित नारायण को अब आइए सुनते हैं फिल्म लकी में.

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

AIR at 90. कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म करण अर्जुन का ये गीत। गीत के बोल इंदिवर के हैं और संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने।

AIR at 90. आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण, आइए डालते हैं एक नज़र हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कार्यक्रमों के कुछ संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों पर।

अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में आज गायक कलाकार होंगे कपिल देव ठाकुर। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज आप सुनेंगे शालिनी को। 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 8:15 पर साप्ताहिक खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आप सुनेंगे खेल खिलाड़ी, प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहम्मद सरशार अहमद। 9:30 कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का अनुप्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से करेंगे। 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद विलायत हुसैन खां का गायन राग जोग में। और 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कुछ जानकारियां कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनते हैं सामयिक कृषि वार्ता। 6:05 का समय होता है दैनिक चिंतन मनन के लिए। 6:10 पर आप सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर कल स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर चंद्रमौली उपाध्याय से की गई भेंट वार्ता, विषय होगा मेलिना। आपसे बातचीत करेंगे कुसुमाकर दुबे। 6:40 पर रामचरित मानस गान की क्रमिक कड़ी सुनवाई जाएगी। 7:00 से 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसमें 7:00 सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में कल गायक कलाकार होंगे शैलेश कुमार। 7:20 पर स्मृति संवाद कार्यक्रम में आप सुनेंगे सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी राम प्रसाद पंडित से की गई भेंटवार्ता। आपसे बातचीत करेंगे कुसुमाकर दुबे। 7:30 पर होगा फिल्म संगीत। 9:06 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नगमे नए पुराने। 9:30 पर हमारा साप्ताहिक उर्दू कार्यक्रम होगा बज़्म-ए- उर्दू। 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम में गायक कलाकार होंगे विवेकानंद ठाकुर। 11:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा नई फिल्मों से। 11:30 पर कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का

करता होंगी नाओमी शांति हेम्ब्रम। 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 3:00 तरंग कार्यक्रम में फनकार होंगे जसवंत सिंह। 3:20 पर आप हर रोज सुनते हैं देशभक्ति गीत और 3:25 से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में एक बार फिर उपस्थित होंगे लेकर युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:30 पर होता है फिल्म संगीत। शाम 6 बजे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सुनते हैं ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद राय की वार्ता, विषय होगा पर्यावरण का अलंकार। शाम 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार होंगे नरेंद्र सिंह। रात्रि 9:30 आप सुनेंगे नाटक ये हवा आंधी तो नहीं। रात्रि 9:30 क्षेत्रीय लोकगीतों पर आधारित आप हमारा कार्यक्रम सुनेंगे गूंजे बिहार, एवं रात 10:30 हम आपके लिए लेकर आएंगे भावों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज की शेष तथा कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उनके प्रसारण समयों की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: स्वागत है आप सबों का आपके लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। सबको पन्नू का नमस्कार
1: और सभ्य श्रोता भाई बहन के राधा के भी नमस्कार। पन्नू भाई अपनों का नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार राधा बहन, और सुनाइए क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है राधा बहन?
1: सब हाल चाल तो ठीक छे पन्नू भाई, लेकिन दो चार दिनों से गर्मी जी अचानक ही बढ़ा दिल छो।
0: गर्मी तो बढ़ेगी ही ना, अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगेगी ही।
1: हाँ।
0: लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिए। हर काम के लिए आपको घर से बाहर निकलना है, आपके बाल बच्चे भी बाहर निकलते हैं, आपको खेती की बारी का भी काम करना पड़ता है, अपने बारी झारी में भी जाते हैं। तो देखिए, जब भी आप घर से बाहर निकलिए तो पानी पी के निकलिए, छाता साथ में रखिए, हो सके तो एक बोतल पानी भी साथ में रखिए। काहे कि पानी और छाता ये दोनों रहेगा तो लू लगने की संभावना कम रहेगी।
1: खान पान के भी विशेष ध्यान रखने के जरूरत से पन्नू भाई, हमेशा ताजा खाना ही खाना चाहिए, कम तेल मसाला वाला, और जितना हुआ पारा पानी पियो, नींबू पानी, सत्तू, बेल के शरबत, आम पन्ना, जितना हुआ पा रहा हो, मतलब पानी शरीर में कम नहीं होना चाहिए।
0: जी जी जी, देखिए क्या है कि गर्मी का मौसम है, आपके बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, वहाँ जो है अपना रोजगार भी ढूंढेंगे, तो उनको तो और ज्यादा मेहनत करना होता है। ऐसे में क्या है कि उनके शिक्षा दीक्षा पर भी आपको ध्यान देना होता है, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा दीक्षा पर ध्यान होता है, और उनको अपना जो इतिहास है उससे भी हम लोगों को मतलब जानकारी देनी होती है, कि अपना इतिहास भी जानिए और उससे कुछ सीखते रहिए। तो जानते हैं ना राधा भन, आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है?
1: हाँ, आए पन्नू भाई, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनावे छे।
0: जी जी,
1: ये दिवस मनावे के ई मकसद छे कि लोगों का संग्रहालय के महत्व के बारे में बताना।
0: जी जी,
1: संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, एक ऐनो जगह जहाँ पुरानो और ऐतिहासिक चीजों का संभाली कर रखलो जाए छे।
0: जी जी जी,
1: वहाँ राजा महाराजा के हथियार, पुराना सिक्का, मूर्ति, कपड़ा, पंडुलिपिया आरो बहुत तरह के दुर्लभ चीज देखेले मिले छे।
0: जी जी जी,
1: पन्नू भाई संग्रहालय अपना सनी के सभ्यता के आईना होई छे। ओकरा देखी के हम सनी जाना पारे छिए कि हमरा सनी के पूर्वज केना रहे छले, की खाए पिए रहे, की रंग कला बनावे रहे। लेकिन आय के समय में बच्चा मोबाइल और टीवी देखे में रहे छे पन्नू भाई,

0: संग्रहालय दिवस हमरा सनी के ई याद दिलावे छे कि किताबों से ज्यादा चीज हम सनी आँखों से देखी के सीखे छे। जना कि भागलपुर के विक्रमशिला पुरात संग्रहालय एक अच्छा उदाहरण छे, जहाँ पाल काल के मूर्तियां रखलो छे। और दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय दुनिया भर में मशहूर छे।
1: जी जी, संग्रहालय तो वही ना हुआ जिसमें हमारे पूर्वजों की अनमोल यादों को संजोकर रखा जाता है।
0: जी,
1: यह दिवस जो है आज का दिन विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। लोग तो हमारे चले जाते हैं,
0: हाँ।
1: लेकिन उनकी यादें हमेशा बनी रहती हैं। उन यादों को समेटने के लिए, उस यादों को संजोकर रखने के लिए ही संग्रहालय बनाया गया है।
0: जी,
1: और हमारे पूर्वजों को अपनी यादों को सुंदर तरीके से सजोकर हमारे पूर्वजों ने रखा, जिससे कि हम भी उनके बारे में जान सके।
0: हाँ।
1: ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे पूर्वज तो हमारे लिए रख कर गए
0: जी।
1: और उसे नुकसान न पहुंचे इसके लिए संग्रहालय उन्होंने बना दिए। हमें उनको याद रखने में हम मतलब मदद होती है
0: जी।
1: और संग्रहालय में ऐसी चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं जो मानव सभ्यता की याद दिलाती हैं। संग्रहालय में रखी गई वस्तुएं प्रकृति और सांस्कृतिक धरोहरों को प्रस्तुत करती हैं। इस दिवस का उद्देश्य विकासशील समाज में संग्रहालयों की भूमिका के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है। किताबें, पांडुलिपियां, रत्न, चित्र, शिलाचित्र और अन्य सामानों के रूप में तमाम तरह की वस्तुएं संग्रहालयों में हमारे पूर्वजों की यादों को जिंदा रखे हुई है। हमारे देश की संस्कृति को समझने में कई वस्तुएं विशेष योगदान निभाती हैं, जिनमें संग्रहालय जिन्हें संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता है।
0: हाँ।
1: और आज के दिन आम जनता, छात्रों और शोधार्थियों को संग्रहालय में उपलब्ध समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी भी दी जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से भी आज के दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का उद्देश्य आम जनता के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी समझ, शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जागरूक करना भी है
0: जी।
1: और इस वर्ष 2026 में इस दिवस मनाने का जो थीम है वह है एक विभाजित दुनिया को एकजुट करने वाले संग्रहालय, अपनी माटी और अपने देश से लगाव को जोड़े रखता है। तो जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक विभाजनों को पाटने तथा संवाद, समझ और समावेश को बढ़ावा देने में संग्रहालयों की क्षमता को प्रदर्शित करना है। तो ये इस वर्ष का थीम था। और राधा बहन, संग्रहालय दिवस पर हमने जो है भागलपुर के संग्रहालय अध्यक्ष और जिला के कला एवं संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन से हमने बातचीत की है। आइए उनके बातचीत को हम लोग सुनते हैं।
0: ठीक।

0: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। पूरे दुनिया में पुरानी यादों को संजो कर रखने के लिए और लोगों के बीच जागरूक करने के लिए यह संग्रहालय क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, आइए हम लोग इस संबंध में बातचीत करते हैं भागलपुर के संग्रहालयाध्यक्ष और जिला के कला एवं संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन सर से। सर बताइए, ये क्या दिवस है और इसको आप किस प्रकार मना रहे हैं?
1: आज 18 मई है और आज के दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं प्रत्येक संग्रहालय में। इसी क्रम में आज भागलपुर संग्रहालय में भी भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि कला संस्कृति साहित्य से संबंधित शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से भागलपुर संग्रहालय में पहली बार टेराकोटा गैलरी का उद्घाटन भी किया जा रहा है, जहां पर सुल्तानगंज, चंपानगर और बीरपुर के ग्वारीडीह के पुरातत्विक स्थलों के पुरावशेष यहां पे प्रदर्शित किए गए हैं। और इसी क्रम में कुछ कलात्मक गतिविधियां हैं, जहां एसएम कॉलेज, किलकारी और अन्य विद्यालय विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएँ कुछ कलाकृतियों का निर्माण करेंगे, जिसमें कुछ गांधी जी से संबंधित होंगे, कुछ मंजूषा से संबंधित कलाकृतियां हैं, कुछ शिल्प हैं, उसका भी कार्यशाला किया जा रहा है। कुछ विद्वानों को भी हम लोग एक संगोष्ठी में आमंत्रित किए हैं, जो संग्रहालय कैसे अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ता है उस विषय पर एक विचार गोष्ठी भी है, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और एसएम कॉलेज के इतिहास विभाग के प्राध्यापक शामिल हो रहे हैं। हम लोगों ने कला संस्कृति के क्षेत्र में जो व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जो अपना योगदान दे रहे हैं स्वैच्छिक रूप से, उन लोगों को भी सम्मानित करने का कार्य आज संग्रहालय दिवस के अवसर पर करेंगे।
0: जी, ये संग्रहालय क्यों जरूरी है सर हमारे जीवन में?
1: संग्रहालय अगर किसी भी शहर के, अपने शहर के, अपने क्षेत्र के इतिहास और अपने समाज की संस्कृति को जानना हो तो आपको संग्रहालय जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वैसी वस्तुएं संग्रहित की जाती हैं जो उस क्षेत्र में, जो उस स्थानीय संस्कृति, स्थानीय विरासत की घटनाओं को कभी न कभी प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित किया गया था, और उन सारी खुदाई या अनायास मिले हुए वस्तुओं को संग्रहालय में संरक्षित किया जाता है। उन कलाकृतियों, उन पुरावशेषों का अवलोकन करके आप अपने क्षेत्र की संस्कृति को, अपने इतिहास को किताब से निकल करके सामने से उसको प्रत्यक्ष रूप में देख करके समझ सकते हैं।
0: जी, आधुनिक युग में युवाओं को और विशेषकर छात्रों को क्या करना चाहिए?
1: आजकल के युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। आज वो सारे व्यक्ति जीवित हैं जो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़े हुए हैं, जिनमें संवेदना है, जिसमें कुछ नवाचार करने की प्रेरणा है। वैसे लोग संग्रहालय से जुड़ करके, वैसे युवा अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को जान करके अपना भविष्य और उज्जवल बना सकते हैं।
0: संदेश सर कुछ दिया जाए हमारी युवा पीढ़ी को और छात्रों को?
1: आज के युवा पीढ़ी बहुत तकनीक से जुड़ने में बहुत उत्सुकता दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए। उसी के साथ साथ हम लोगों को अपनी इतिहास, अपनी जड़ों से भी जुड़ना चाहिए, यही मेरा संदेश है।
0: जी, और कुछ नए शोध सब बताया जाए कि दुनिया में नए नए तकनीक किस प्रकार जुड़ रहे हैं इसमें?
1: पहले जो पारंपरिक उत्खनन का कार्य होता था, पहले जो पारंपरिक शोध की जो प्रक्रिया थी, उसमें और अभी में बहुत बदलाव आया है। नए नए तकनीक, नए नए यंत्र ने इन सारे शोधों को अलग रूप दिया है। जैसे आज AI की मदद से कई जटिल प्रक्रियाओं को बहुत

पहले जो पारंपरिक शोध की जो प्रक्रिया थी उसमें और अभी में बहुत बदलाव आया है। नए नए तकनीक, नए नए यंत्र ने इन सारे शोधों को अलग रूप दिया है। जैसे आज एआई की मदद से कई जटिल प्रक्रियाओं को बहुत

0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001-4242।
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। भारत

0: AIR at 90.
1: जी एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। राधावन, पुरातात्विक अवशेष हमें पुरानी यादें और हमारे इतिहास को सामने रखता है
2: जी।
1: पुरातात्विक अवशेष का संरक्षण किस प्रकार करें, आइए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से।

भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पुरातत्व और पुरातत्विक अवशेषों का संरक्षण आज अत्यंत प्रासंगिक विषय है। विदेशों में सरकारी तंत्र पुरातत्व और पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयत्नशील हो रहा है। भारत सहित विभिन्न देशों के छात्र छात्राओं के बीच पुरातत्व की पढ़ाई काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। पुरातत्व किसी भी क्षेत्र के समग्र इतिहास को जानने तथा समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। भारत के शिक्षाविद सह प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने प्रसिद्ध लेख में लिखे थे कि भारतीय पुरातात्विक स्रोतों के प्रकाश में आने के बाद स्वाभाविक रूप से अतीत के भारत को गौरव हमें गर्व प्रदान करता है। पुरातत्व ये भी बताता है कि विभिन्नता में एकता का स्वरूप है भारतीय संस्कृति। ये एक मूल्यवान साधन है जो वर्तमान भारत के भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करता है। जैसे समय के साथ सभी कुछ परिवर्तनशील है और मनुष्य जैसे मृत्यु को प्राप्त करता है, वैसे ही इनके द्वारा बनाए गए सारे रचनाएं अजर अमर नहीं हो सकती है। आज जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द है ये कल नष्ट भी हो सकता है, पर इसके नष्ट होने के बावजूद इनके अवशेषों में से आने वाले समय में बहुत कुछ मिल सकता है। मिसाल के तौर पे भागलपुर में आज से तकरीबन 50 साल पहले भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कहलगांव के अंतिचक में शुरू किया गया उत्खनन से प्राचीन विक्रमशिला बौद्ध महाविहार के खंडहरों का अवशेषों को ढूंढ निकाला गया था। विक्रमशिला बौद्ध महाविहार जो पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा 770 ईस्वी से 810 ईस्वी के बीच स्थापना किया गया था, जवनों के आक्रमण से ध्वंस होकर जमींदोज हो गया था। बौद्ध धर्मग्रंथ तथा किताबों में इसका वर्णन था, पर इस उत्खनन होने के बाद उक्त प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे उन अवशेषों के आधार पर बहुत सारी नई तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई। विक्रमशिला के अलावा उत्खनन से पहले अन्य खुदाई से दुनिया के सामने प्राचीन सभ्यता जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तथा प्राचीन बौद्ध विहार जैसे तक्षशिला, सोमपुरा, नालंदा आदि फिर से दुनिया के सामने प्रकट होने का मौका मिला था। खुदाई के पहले इन जगहों के बारे में किताबों या ग्रंथ आदि में से मिला तथ्यों के सहारे इन स्थलों के बारे हम ज्ञान प्राप्त किए। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से हमें उन

0: जगहों के बारे कोई नई रोचक जानकारी भी प्राप्त हुआ। इतिहासकार और पुराविदों के गहन अध्ययन से उक्त पुरातात्विक अवशेषों से इसके जीवनकाल का सटीक वर्णन मिलना शुरू हुआ। हम उक्त अवशेषों के सहारे उस समय के उक्त चीज़ों की सही सही मूल्यांकन कर उसका अतीत को सही रूप से अवलोकन कर पाए। अब यक्ष प्रश्न है कि इन पुरातात्विक अवशेषों का संरक्षण का जरूरत क्या है। खुदाई से निकाला गया जैसे पुरातात्विक अवशेषों पुराविदों तथा इतिहासकारों के अध्ययन का एक गुरुत्वपूर्ण सामग्री होता है। जैसे कि पहले कहा गया है, किसी भी इतिहास के समय काल तथा उसका वर्णन किताबों से मिलता है, पर अगर उस इतिहास का यदि कुछ पुरातात्विक अवशेष मौजूद है तब ये प्रत्यक्ष साबूत के तौर पर माना जाएगा। इन अवशेषों में से सीधे रूप से इन्हें अतीत के बारे बोलने की क्षमता भी होती है। विक्रमशिला के ऊपर रिसर्च कर रहे एक अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व विशेषज्ञों का टीम, जो संप्रति विक्रमशिला के अवशेषों को अवलोकन करने हेतु भागलपुर आया था, कुछ ऐसे नए तत्वों के बारे पता लगाने की कोशिश कर रहा है जिससे दुनिया के सामने कुछ नई बात की खुलासा होने की अनुमान है। उक्त टीम में एक वरीय पुराविद जो बांग्लादेश के थे के अनुसार हर रोज हो रहे विज्ञान के नई खोज की तरह पुरातात्विक विषयों की भी नई नई अनुसंधान हो रहा है। इनके चलते हम पहले की तुलना में ज़्यादा कारगर रूप से इन अवशेषों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। बहरहाल भागलपुर सहित पूरे पुराने अंग्य प्रदेश के इलाके, जिसमें झारखंड के संथाल परगना के जिले भी शामिल था, ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे इलाके में बहुत सारे प्राचीन अवशेष प्राप्त हो चुका है और तथा आए दिन जमीन के अंदर ऐसे अवशेषों का मिलना यहाँ आम बात है। पुरविदों के अनुसार अंग के गोद में आज भी ऐसा बहुत सारे अवशेष छिपे हुए हैं जिसका उत्खनन अभी होना बाकी है। निर्देशक पुरातत्व विभाग बिहार सरकार की एक टीम जो इन दिनों यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों और सभ्यता की खोज में जुटी है, आशंका व्यक्त किया है कि यहाँ के जमीन के नीचे कुछ अभी भी दबी हुई है जो कि पूरे दुनिया के सामने कुछ नया चौंकाने वाले तथ्य पेश कर सकता है। ज्ञात हो कि विक्रमशिला की उत्खनन अभी भी अधूरा रह गया है। पुराविद तथा इतिहासकारों के अनुसार विक्रमशिला बौद्ध महाविहार का एक बड़ा हिस्सा आज भी जमींदोज है। इसका नए सिरे से उत्खनन होने से विक्रमशिला से जुड़ी हुई बहुत सारी नई बात दुनिया के सामने आ सकती है। इस प्रकार पुराने अंग प्रदेश के बहुत से स्थान जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा विशेष प्रयास चलाना चाहिए। इतिहासकारों को मानो तो अगर नई सिरे से खोज हो तो इस अंग क्षेत्र के गोद में छिपा हुआ अतीत का बहुत बड़ा खजाना निकल सकता है। ये हमारे लिए विड़म्बना है कि हम अपने इस विरासत को ना तो संवर सके और ना ही पुरातात्विक अवशेषों को उचित रूप से देख रेख करते हैं। यहाँ आए अंतर्राष्ट्रीय पुराविदों की टीम संप्रति विक्रमशिला भ्रमण के दरमियान वहाँ हो रहे संरक्षणों को कार्य को देख कर चकित हो गया। उन विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षण में मापदंडों का पालन सही रूप से होना चाहिए। मूल बात यह है कि इन अवशेषों को बिना किसी क्षति पहुंचाए इनकी मरम्मत हो सकता है, पर इन पुरातात्विक संरक्षण के क्रम में यह ध्यान में रखना चाहिए कि अतीत के किसी भी आकृति का मूल भाव नष्ट ना हो तथा इसमें कोई बाहरी परिवर्तन ना जोड़ा जाए। हमारे लिए ज़्यादा दुर्भाग्य यह है कि पूरे अंग प्रदेश क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्करों की गिरह सक्रिय है, जो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले दुर्लभ प्राचीन मूर्तियों की तस्करी करता है। कोई 2 साल पहले जमुई के लछिवार से भगवान महावीर का दुर्लभ मूर्ति चोरी हो गया, पर लाख शुक्र है कि पुलिस की सही तफ्तीश के चलते मूर्ति मिल गया था। संप्रति भगवान बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति जोलपुरा मंदिर में स्थापित था रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ऐसे दुर्लभ मूर्तियों की चोरी की घटना अनगिनत है इस इलाके के लिए, जिसका सही हिसाब किसी के पास नहीं है। इसके अलावा इस इलाके में दुर्लभ प्राचीन कलाकृतियाँ जिसे पहाड़ आदि पर अति प्राचीन काल में उकारा गया था, देखरेख के अभाव में नष्ट होने के कगार पर है। पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये हमारी विरासत खासकर आने वाले नई पीढ़ी के लिए इन अवशेषों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। विदेशों में जैसा कि चीन आदि जगह पर पुरातात्विक अवशेषों पर वहाँ के सरकार विशेष ध्यान देना शुरू किया है, जर्मनी आदि जगह में सरकार द्वारा इन अवशेषों के लिए विशेष संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इससे दो सुविधा मिल रही है, एक वैसे धरोहरों को उचित संरक्षण मिल रहा है, साथ ही साथ पर्यटकों की भीड़ वैसा संग्रहालय में उमड़ने से सरकार को काफ़ी राजस्व का लाभ भी मिल रहा है। वहाँ के नागरिकों को में भी गजब का उमंग और उत्साह रहता है इन सारे चीज़ों को देखने के लिए। वे एक छोटे से छोटे पुरातात्विक अवशेष को देखने के लिए इन संग्रहालयों में लंबी लाइन में खड़े होने के साथ साथ प्रवेश शुल्क की मोटी रकम चुकाने में हिचकते नहीं है। और हम अपने दुर्लभ पुरातात्विक अवशेषों को, जो दुनिया के सबसे पुराना है, का सही मूल्यांकन नहीं कर पाने के कारण उसे नष्ट करने या नष्ट होते देख चुपचाप रह जाते हैं। हमारे देश में वैसा पुरातात्विक अवशेषों जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है कुछ हद तक ठीक है। बिहार में नालंदा जैसे पुरातात्विक अवशेषों इसका उदाहरण है, जहां काफ़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ भी लगी रहती है। पर ठीक इसका विपरीत विक्रमशिला जैसे धरोहरों का समुचित देखरेख न होने से वहाँ के प्राचीन खंडहरों का विनष्ट होने के कगार पर है। वैसा ना हो कि कल हमारे पास इन अतीत के धरोहरों को दुनिया के सामने पेश करने के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं रह जाए। हमारी इन धरोहरों को बचाने के लिए हमें आम जनों को जागरूक करना होगा। चूँकि इलाके से आए दिन कुछ न कुछ ऐसे प्राचीन अवशेष मिलता रहता है, अतः इसके संरक्षण के लिए लोगों को सहभागिता की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों के बीच ऐसे चीज़ों का संरक्षण की जिम्मेदारी का एहसास भी करवाना होगा। इसके साथ साथ संबंधित सरकारी विभागों को भी ऐसे अवशेषों के प्रति सचेत रहने का जरूरत है।
1: हाँ पन्नू भाई, हमरा सबके बहुत अच्छा अच्छा जानकारी मिलले ईपुर प्रसारित वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार छले गौतम सरकार। तब कार्यक्रम तारू बातचीत हमसनी करबे करबे, तब तक एकटा झूमर सुनै छी।
2: जी जी जी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है और राधावन, थोड़ी सी चर्चा हम लोग विभाग से मिली जानकारी, मौसम की जानकारी पर हम लोग कर लेते हैं।
2: जी
1: जी, आगामी 3 दिनों में जिले में मौसम जो है एक दो स्थानों पर चमक के साथ आंधी और हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है।
2: जी।
1: इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान इस दौरान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। इस अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। और सामान्य सलाह जो किसान भाइयों को दी गई है उसमें आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें, खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित कर दें एवं खाद कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। और गर्मा मूंग एवं उड़द की फसल से रस चूसक कीट माहू हरा फुदका सफ़ेद मक्खी या थ्रिप्स कीट की निगरानी करते रहें। बचाव हेतु मेलाथियान 50 cc या डायमेथोएट 30 cc का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव वर्षा न होने की स्थिति में करें। और सब्जियों के बारे में जो सलाह दी गई उसमें फल मक्खी लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ करेला लौकी और खीरा फसल को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छुआ 2 किलोग्राम मेलाथियान 50 cc को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव वर्षा न होने की स्थिति में करें। और भिंडी की फसल को लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रीड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखाई देने पर इथियान 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे कि भिंडी नेनुआ करेला लौकी और खीरा की फसल में निकाय गुड़ाई करें। तो किसान भाइयों के लिए प्रमुख सलाह थी और अब समय हो चुका है प्रायोजित कार्यक्रम का।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। जैसा कि जानते हैं आप कि आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर आते हैं पूरे बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में युवा साथियों के लिए बुनियाद। हम चाहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई से उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए जीवन की ऊंचाइयों को वो आसानी से छू सकें। भैया, आज तो टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अपनी मर्जी का क्षेत्र चुनने का समय है, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। ओ माय गॉड, कितने रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावे टेक्निकल पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, हमने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, जी हाँ, ये विश्वविद्यालय है जहाँ टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि तीन नए कोर्स आए हैं, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है, उसमें पहला कोर्स है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हमने कहा बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। लगातार आने वाले एपिसोड्स में इसकी जानकारी देंगे और सीट बहुत कम है। आपको अगर इसमें दाखिला लेना है तो तेजी दिखानी होगी। अपना नंबर यानी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं, हाँ, आप जो है चाहे तो इस पर बातचीत कर सकते हैं। नोट कीजिए, नंबर है

0: 9431899002 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121051 1800121051 ये नंबर है। इन दोनों नंबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ हाँ बैठे हैं इस विभाग बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब क्या हैं यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में क्या जानकारियाँ देंगे। आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार है। मैं नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का डायरेक्टर हूँ।
0: सर जी सबसे पहले आप इसके विषय में बताइए, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी ये बीएससी इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये एक अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का एक कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने कुछ सारे बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक हमारा यह कोर्स भी है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। यह एक 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद वो जैसे आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हार्ट की समस्या हो रही है, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इससे रिलेटेड सर्जरीज भी बढ़ रहे हैं। तो उन सारे सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान उनको असिस्ट करना सर्जन को, ये इनका रोल है। और साथ ही साथ उनको उसकी टेस्टिंग करनी, काइंड ऑफ हार्ट में या लंग ब्लड वेसल्स में कोई अगर परेशानी है उसको जांच करना, यह भी इनका पार्ट आ जाता है।
0: नीरज जी मुझे जहां तक समझ में आया तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट के साथ होते हैं, तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी किए हुए जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ऑप्थल्मोलॉजी में आई सर्जन को जो लोग असिस्ट करते हैं तो वो पढ़ाई किए हुए होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा और लोगों को समझ में आएगा, क्या यही सच है?
1: ये बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और आप हर गली नुक्कड़ पे देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं। कार्डियक नर्सिंग होम्स भी खुले हुए हैं जहाँ कार्डियक सर्जरी हो रही है। तो ऐसे केसेस में इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हुई है, ताकि उनको ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट्स दे कैन असिस्ट द सर्जन।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, जी हाँ बुनियाद कार्यक्रम है। युवा साथियों टेक्निकल पढ़ाई के विषय में जानकारी इस कार्यक्रम में हम देते हैं और आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है उनके लिए जानकारियां हैं बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ नंबर नोट करें, अगर कार्यक्रम के बाद आपको ऐसा लगे कि हमें जानकारी लेनी चाहिए तो आप ये नंबर डायल करें 9431899002 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121001 ये नंबर है। अच्छा नीरज जी एक बात बताइए, ये जो है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसको कर लेने के बाद रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी या रोजगार है, ऐसा आपका मानना है? आप बताइए पहले, क्योंकि रोजगार मिलना पढ़ाई के लिए पहला ऑप्शन होता है। एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला ये जरूर हम देखते हैं।
1: जी क्योंकि जैसे पहले बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी डिमांड तो है ही, साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद अगर विदेश में अपना करियर का ऑप्शन ढूंढ रहा है उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड।
0: बहुत खूब। एंड ऑफ द डे रोजगार है कि नहीं यही जानना चाहते हैं लोग। हाँ लोग में माता पिता, छोटे भाई बहन और युवा जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो जानना ही है। कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और इस वक्त बातचीत चल रही है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। कार्डियक सर्जन के साथ इनकी बहुत आवश्यकता होती है और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आए

0: है ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं 9431899002 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121001। नीरज जी एक सवाल सहज, ये लोग भी पूछते रहे हैं कि क्या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के कोर्स को इनोवेट किया जाता है, जैसे अभी बीएड स्पेशल एडुकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है और बहुत ही उम्दा कोर्स है वो भी, और अब तीन तरीके के ये जो कोर्स हैं आज चर्चा हो रही है, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर दूसरा कोर्स है हमारा यहाँ जो अभी आया है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी पर, और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गोपाल नारायण सिंह लगातार ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के बिहाफ में, स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ करते रहती है?
1: सर बात यह है कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे भी हैं जो रोजगार वाले रोजगार परक कोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, और उस वैसे वैसे कोर्सेस को हमारे मैनेजमेंट वो हमारे को वैसे वैसे कोर्सेस लाकर हमारे को बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ कोर्सेस वी कैन स्टार्ट विच अदर पीपल्स डू नॉट नो, और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि हमें अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि उनको पता है ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है हमारे यहाँ।
0: ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और ख़ास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या या अपॉर्चुनिटी मिलती है?
1: हमारे पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड अलाइड हैं वो सब अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उनको सीखने को सब कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल, और करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी डबल हो जाएगी,
0: करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह की तुलना में दुगनी हो जाएगी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बात चल रही है टेक्निकल पढ़ाई की इस कार्यक्रम बुनियाद में, और हमेशा से सालों से बुनियाद कार्यक्रम आ रहा है, और इसे सुनकर न जाने कितने युवाओं ने टेक्निकल पढ़ाई चुना है, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में या बाहर। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में ये है ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं, आपको कहते हैं कि ये नंबर है जो हमारा 9431899002 और 1800121001 डायल करें, या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो है जमुहार सासाराम रोहतास बिहार में है वहाँ आएं, देखें पढ़ें समझें और फिर दाखिला लें, हम ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम डंके की चोट पर कहता है राजेश, और आज नहीं वर्षों से कहता रहा है, बीसियों साल से, हाँ, कि युवा साथियों मेरे प्यारे भाई बहनों आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, जिंदगी आराम से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे आगे बातचीत का सिलसिला नीरज जी से जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम लोग युवाओं को कहते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं कि कहीं भी अगर जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। तो इसका जवाब तो मिल गया कि अपना गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय खुद का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाँ, जहाँ पढ़ाई होगी, और तीसरा कि टीचर्स यानी प्रोफेसर शिक्षक गण के विषय में जानकारी ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्या कहेंगे आप?
1: सर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड है, और फैकल्टी जो हमारे हैं अपने जो प्रोफेशनल है कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रोफेशनल फिजिशियन हैं वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इसलिए हमारे को अपने फैकल्टी के साथ साथ एडवांटेज है मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी का भी जो हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगे।
0: नीरज जी समय भागता चला जा रहा है और मेरी निगाहें स्टूडियो के घड़ी पर हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है। एक नया कोर्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी की, इसके विषय में अभी जानकारी आज हमने विस्तार से आपके साथ दी है। अगला एपिसोड भी आप ही के साथ बातचीत होगी जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सवाल

0: एक बार फिर बताया जाए कि कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये सारी चीजें, तमाम चीजें हमारे युवा साथी उनके गार्जियन जरूर पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं, हालांकि आपने अभी जवाब दिया है बीते मिनट्स के अंदर, लेकिन हम एक बार चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, जवाब दे दें, क्योंकि लोग इसके विषय में ज्यादा चिंतित होते हैं।
1: जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी में भी इसकी वैकेंसी निकल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो चाहिए ही चाहिए इनको, बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम भी हैं जो कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और कई दफ़ा तो ये लोग अब इस कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को ऑन कॉल भी बुलाते हैं, लाइक दे कैन अटैच विद मोर देन 10 or 20 हॉस्पिटल्स एंड ऑन कॉल दे कैन गो देयर एंड डू देयर ड्यूटीज़। और इसके अलावा बाहर भी विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और अगर ये अकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो दे हैव द स्कोप टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन MSc करके फिर दे कैन कम इनटू अकेडमिक्स।
0: थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी BSc इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अगले एपिसोड में भी आपसे ही बात होगी क्योंकि सवाल आएंगे, मुझे पता है। चलने से पहले हम नंबर बता दें, 9431899002 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121051। टेक्निकल पढ़ाई को चुनिए। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने को राजेश को मौका दिया, तो राजेश को दें इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: एक बार फिर सबों का स्वागत है। कृषि कार्य में राधावन कीटनाशक का महत्वपूर्ण स्थान है। किसान भाई घर में भी कीटनाशक तैयार कर लेते हैं, तो घर में कीटनाशक कैसे तैयार करें, आइए इस संबंध में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से।
4: भाइयों, खेती में लगातार रसायनों के प्रयोगों से जमीन जहरीली हो चुकी है, पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जहरीले व महंगे रासायनिक कीटनाशकों व रोग नियंत्रकों के कारण किसान कर्जे के बोझ में दबकर आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। इस दुष्चक्र से किसानों को बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि हम जैविक कीटनाशक को रोग एवं कीट नियंत्रण के लिए प्रयोग करें। यह हमारे आसपास के प्राकृतिक संसाधनों द्वारा अपने हाथों से तैयार होते हैं, इनसे किसानों की बाजार पर निर्भरता भी खत्म होती है। विभिन्न रोगों और कीटों के नियंत्रण हेतु उपयोगी घरेलू जैविक कीटनाशी बनाने के सरल तरीके हैं, जैसे पहला है पंचगव्य। प्राचीन काल से ही भारत जैविक आधारित कृषि प्रधान देश रहा है, हमारे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी के मिश्रण से बनाए जाने वाले पदार्थ को पंचगव्य कहते हैं। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है गौमूत्र 1.5 लीटर, गोबर 2.5 किलोग्राम, दही 1 किलोग्राम, दूध 1 लीटर, देसी घी 250 ग्राम, गुड़ 500 ग्राम, सिरका 1 लीटर, केला 6, कच्चा नारियल 2, पानी 10 लीटर और प्लास्टिक का या मटका। पंचगव्य बनाने की विधि है, प्रथम दिन 2.5 किलो गोबर व 1.5 लीटर गौमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटके में डाल देते हैं। ढक्कन अच्छी तरह से बंद करने के बाद अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाते रहते हैं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में मिलाकर मटके में डाल दें, फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इसे लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो समझ लेना चाहिए कि हिलाने की प्रक्रिया और बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। इसे खा

बाद बीमारियों से रोकथाम कीटनाशक के रूप में व वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 महीने तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने में मात्र 70 रुपये प्रति लीटर की लागत आती है। इसके अलावा दूसरा जैव कीटनाशी है नीमास्त्रम। इसके बनाने के लिए हमें 200 लीटर पानी, 10 से 20 लीटर देसी गाय से प्राप्त गौमूत्र, 2 किलो देसी गाय से प्राप्त गोबर, 10 किलो छोटी डलिया नीम की, अब इन सभी मिश्रण को मिलाकर बोरी से ढककर 48 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। दिन में 2-3 मिनट तक इसे घोलते हैं। 48 घंटे बाद इसको अच्छी तरह से छानकर स्टोर कर लेते हैं। इसे 6 माह तक प्रयोग कर सकते हैं। यह एकमात्र ऐसा जैव कीटनाशी है जो सभी प्रकार के कीटों में प्रभावी सिद्ध हुआ है। 200 लीटर नीमास्त्र 1 एकड़ में छिड़काव करने के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा तीसरा जैव कीटनाशी है ब्रह्मास्त्र। इसे बनाने के लिए 20 लीटर गौमूत्र, 5 किलोग्राम नीम के पत्ते की चटनी, 0.5 किलोग्राम तंबाकू का पाउडर, 0.5 किलोग्राम हरी तीखी मिर्च, 500 ग्राम देसी लहसुन की चटनी। तो बताई गई सभी सामग्री को एक मिट्टी के बर्तन में डालें और आग से 4 बार उबाल आने तक इसे गर्म करते रहें। फिर 48 घंटे तक इसे छाये में रखकर ठंडा होने देते हैं। पुनः इसे 48 घंटे में 4 बार डंडे से हिलाते रहते हैं। अग्नि अस्त्र का प्रयोग केवल 3 माह तक ही प्रयोग आ सकता है। इसके लिए मिट्टी के बर्तन में ही सामग्री को उबाल आने दें, अन्यथा अन्य पात्र में इससे विषाक्तता बढ़ जाती है। 5 लीटर अग्नि अस्त्र को छानकर 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे मशीन या नीम के लेपचा से इसका छिड़काव करते हैं। इस दवा से स्टेम बोरर, लीफ रोलर, फ्रूट बोरर, पोड बोरर आदि कीट बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों बहुत से वनस्पतियों का जैविक कीटनाशी के रूप में सीधे ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नीम की पत्तियां 1 एकड़ जमीन में छिड़काव के लिए 10 से 12 किलो पत्तियों का प्रयोग करें। इसका प्रयोग कवक जनित रोगों, सुंडी, माहू इत्यादि हेतु अत्यंत लाभकारी होता है। 10 लीटर घोल बनाने के लिए 1 किलो पत्तियों को रात भर पानी में भिगो दें। अगले दिन सुबह पत्तियों को अच्छी तरह कूट कर या पीस कर पानी में पतले कपड़े से छान कर मिला लेते हैं। शाम को छिड़काव से पहले इस रस में 10 ग्राम देसी साबुन अवश्य मिला लें, क्योंकि देसी साबुन मिलाने से ये पौधों पर आसानी से फैलता है। दूसरी है नीम की गिरी। नीम की गिरी का 20 लीटर घोल तैयार करने के लिए 1 किलो नीम के बीजों के छिलके उतार कर गिरी को अच्छी प्रकार से कूट लें। ध्यान रहे कि कूटने में इसका तेल ना निकले। कूटी हुई गिरी को एक पतले कपड़े में बांधकर 20 लीटर पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन इस पोटली को मसल मसल कर निचोड़ लेते हैं व इसके पानी को छान लेते हैं। इस पानी में 20 ग्राम देसी साबुन या 50 ग्राम रीठे का घोल मिला देते हैं। यह घोल बिल्कुल दूध के समान दिखने लगता है। इस घोल को कीट व फफूंद नाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नीम का तेल। नीम के तेल का 1 लीटर घोल बनाने के लिए 15 से 30 मिलीलीटर तेल को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल कर इसमें 1 ग्राम देसी साबुन या रीठे का घोल मिला लेते हैं। 1 एकड़ की फसल में 1 से 3 लीटर तेल की आवश्यकता होती है। इस घोल का प्रयोग बनाने के तुरंत बाद करें, वरना तेल अलग होकर सतह पर फैलने लगता है, जिससे यह घोल प्रभावी नहीं रह पाता है। नीम के तेल की छिड़काव से गन्ने की फसल में तनाव वेदक व शीर्ष वेदक कीटों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नीम के तेल कवक जनित रोगों में भी उतना ही प्रभावी है। नीम की खली। नीम की खली फफूंद जनित व मिट्टी जनित रोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। 1 एकड़ खेत में 40 किलो नीम की खली को पानी व गौमूत्र में मिलाकर खेत की जुताई करने से पहले पूरे खेत

0: में बखेर कर मिला देते हैं ताकि यह अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। इससे मृदा जनित सभी प्रकार के रोगों की रोकथाम करने में मदद मिलती है। खासकर यह दलहनी फसलों के लिए वरदान सिद्ध होता है। नीम की खली का घोल। 1 एकड़ की खड़ी फसल में 50 लीटर नीम की खली का घोल का छिड़काव करें। 150 लीटर घोल बनाने के लिए 1 किलोग्राम नीम की खली को 50 लीटर पानी में एक पतले कपड़े की पोटली बनाकर रात भर के लिए भिंगो देते हैं।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara with its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilowatt.

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: तरों से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 316 नव नियुक्त सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, दो चार महीनों में होंगी हजारों बहालियां। जेटेट भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रांची में पहली बैठक संपन्न। शिक्षा विभाग से मांगा गया क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तृत डेटा। उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। सेवानिवृत्त कर्मियों को 22 जून तक बकाया भुगतान न होने पर निदेशक का वेतन रोकने का आदेश। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में दोपहर बाद हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी रांची की राशि सिन्हा। कोलंबो में आयोजित एशिया केक ऑस्कर 2026 में जीता प्रतिष्ठित पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 316 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राज्य के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समारोह में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय यादव भी मौजूद रहे।
1: अभी और भी तैयारी हो रही है, लगता है कि 2-3-4 महीने में और भी हजारों लोगों की नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां सिर्फ हम तनख्वाह पाए इसके लिए नहीं है, हम नियुक्ति इसके लिए भी कर रहे हैं, इस अपेक्षा के साथ भी कर रहे हैं कि राज्य का समग्र विकास हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ओस्लो में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाला 32वां अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक सम्मान है, जो विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद का अंत होने के बाद भी हमें चैन से नहीं बैठना है। छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह का हवाला देते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों के भीतर सभी प्रभावित गांवों को जीवंत आदिवासी समुदायों में बदला जाएगा, ताकि नक्सलवाद के कारण हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जा सके।
2: सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आग्रह रखा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया ऐसा मानकर चैन की नींद नहीं सोना। नक्सलवाद तभी समाप्त माना जाएगा जब नक्सलवाद ने जो नुकसान किया है वो हम 5 साल के अंदर भरपाई कर इस सभी गांवों को हमारे ऊर्जावान आदिवासी गांवों में बदले।
0: जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की आज रांची में पहली बैठक संपन्न हुई। मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग से नई नियमावली में सुधार के लिए विस्तृत रिपोर्ट तथा तथ्य तलब किए गए हैं।
3: कई तथ्यों कई साक्ष्यों के आधार पर आगे निर्णय लेना है। अभी संबंधित पदाधिकारी

0: को निर्देश दिया गया है कि तथ्यों और साक्ष्यों को जुटान करें, तत्पश्चात उस पर निर्णय किया जाएगा। समिति अधिकृत किया है आदरणीय चेयरमैन साहब को। इसके जल्द ही हमको लगता है कि फिर फ्राइडे या सैटरडे को बैठक होगा, तो उसका फिर आगे की रिपोर्ट।
1: भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने से उपजे इस विवाद पर अगली बैठक अब 22 मई को होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कल भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय भाषा कृषि सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय मजबूत करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और बकाया वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने निर्देश दिया है कि आगामी 22 जून तक पेंशन और 5वें से 7वें वेतनमान का बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न होने पर उच्च शिक्षा विभाग निदेशक का वेतन रोक दिया जाएगा। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आगामी 30 जून से 29 जुलाई तक BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 73% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष मतदाताओं की सूची 23 मई से सभी मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी, जहाँ लोग BLO से संपर्क कर मैपिंग करा सकेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में कच्चे तेल और LPG के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश की रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं है।
2: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज है, पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
1: गुड्डा जिले को आज स्वच्छ ईंधन की बड़ी सौगात मिली है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गुड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर CNG PNG स्टेशन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का लाइव संदेश भी सुनाया गया। सांसद ने कहा कि CNG से प्रदूषण घटेगा और स्थानीय वाहन चालकों को किफायती ईंधन का विकल्प मिलेगा। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में महिला कैदी के साथ यौन शोषण मामले पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि जेल में बंद एक महिला कैदी का कथित यौन शोषण के बाद गुप्त रूप से गर्भपात कराया गया और सबूत मिटाने की कोशिश की गई।
3: रांची के बिरसा मुंडा जेल में एक महिला कैदी, उसके साथ कई महीनों पहले यौन शोषण हुआ। यौन शोषण के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई, केवल जेल सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्र से सुना हुआ नहीं है बल्कि जेल IG सुदर्शन मंडल, जिनकी जानकारी में आने के बाद कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, फाइलों को रफा दफा किया, सबूत को मिटाया।
1: रांची जेल यौन शोषण मामले में कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महिला कैदी की मेडिकल जांच में गर्भावस्था की रिपोर्ट नकारात्मक आई है।
4: बिना कोई जानकारी बाबूलाल जी पत्र लिख देते हैं, पोस्ट कर देते हैं एक्स पे। जानकारी रखा कीजिए, आप इस राज्य

0: प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप जो बोलते हैं वो राज्य की जनता सुनती है। इस मामले में निगेटिव रिपोर्ट आई है और जब मामले में निगेटिव रिपोर्ट आई है तो उसके बाद आप हाथी पीट रहे हैं।
1: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पलमा गुमला खंड के आंजनधाम टोल प्लाजा परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। क्षेत्रीय अधिकारी MT अतरदे ने कल्पतरु का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया। NHAI ने कहा कि ग्रीन हाईवे अवधारणा के तहत राजमार्गों के किनारे हरित आवरण बढ़ाने के लिए निरंतर वृक्षारोपण किया जा रहा है। और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज रांची, खूंटी और गुमला सहित दक्षिणी व मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक राज्य के अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। रांची की राशि सिन्हा ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित 4th एशिया केक ऑस्कर वर्ल्ड एडिशन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर देश का मान बढ़ाया है। उन्हें व्हिप्ड क्रीम वेडिंग केक श्रेणी में उत्कृष्ट कला और क्रिएटिविटी के लिए ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे वाली कस्टमाइज केक बनाने के बाद वे देश विदेश में सुर्खियों में आई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 316 नवनियुक्त सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, 2-4 महीनों में होंगी हजारों बहालियां। JTET भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रांची में पहली बैठक संपन्न। शिक्षा विभाग से मांगा गया क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तृत डेटा। उच्च शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। सेवानिवृत्त कर्मियों को 22 जून तक बकाया भुगतान न होने पर निदेशक का वेतन रोकने का आदेश। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में दोपहर बाद हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने आगामी 21 मई तक जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकी रांची की राशि सिन्हा। कोलंबो में आयोजित एशिया केक ऑस्कर 2026 में जीता प्रतिष्ठित पुरस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:11 हो चुके हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज गायक कलाकार हैं कपिल देव ठाकुर। आरंभ में इनके स्वर में आपको सुनवाते हैं एक लोक भजन।

लोक गीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज गायक कलाकार थे कपिल देव ठाकुर। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: लोकगीत सुनी और लोकगीत हली जत सार। तो हवलदार बलराम लाल इतना बढ़िया बढ़िया गीत सुनल थी और इनका धन्यवाद जरूर मिले के चाहिए। और अब समय संपन्न होते हैं तो हम सब फिर मिल गई अपने सबसे भी, तो तब तक लगी उदय भाई बहुत बहुत नमस्कार अपने के।
1: नमस्ते।

0: सुन रहे थे आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां सुनते आए, देखते आए, अब वही बहती ही कहा।

0: कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बन रहा है वातावरण, प्रवासियों से प्रदेश की समृद्धि में योगदान की अपील की। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय गांवों में गरिमा उत्सव की शुरुआत, सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। और आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश ने शुरू किया भोजपुरी बुलेटिन, प्रत्येक दिन शाम 6:05 पर होगा प्रसारण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक संरचना का विकास हो रहा है और अब लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पटना के गांधी मैदान में अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण एवं उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नए उद्योगों के लिए वातावरण तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं
1: और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब एक साल का कार्यकाल एनडीए सरकार 20 नवंबर 2026 को पूरा करे तो लगभग 5,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर इन्वेस्ट कराने का काम की शुरुआत करने का काम किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने प्रवासी बिहारवासियों से बिहार लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन की सरकार है।
1: बिहार के लोग जो बाहर में हैं, उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि ये बिहार आपका है, अब बिहार लौटने का समय है। बिहार लौट कर आइए और बिहार, क्योंकि जन्मभूमि, इस जन्मभूमि को समृद्ध बनाना है और ये तभी बन पाएगा जब बिहार के लोग बिहार में वापस लौट कर आकर यहाँ उद्योग धंधे को स्थापित करना शुरू कर देंगे।
0: प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित की जाएगी। जन शिकायत संबंधी आवेदन देने की प्रक्रिया शिविर के 30 दिन पहले शुरू करने की व्यवस्था की गई है। वहीं शिविर के दिन भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य सरकार ने कल से आयोजित होने वाले सहयोग शिविर को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को पत्र लिखकर शिविर के प्रथम दिन सहभागिता देने का अनुरोध किया है। प्रभारी मंत्री और सचिव कम से कम 3 प्रखंडों के सहयोग शिविरों में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाना अनिवार्य है।

0: मंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में सचेत किया। उन्होंने कहा कि निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट समय अवधि के भीतर नहीं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
1: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
0: भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आज पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखुभाई दलसानिया, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी और एनडीए की रणनीति तथा कोर समिति के विस्तार पर विचार किया गया। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में आज से प्रदेश भर में जनजातीय गरिमा उत्सव की शुरुआत हो गई है। जन भागीदारी राष्ट्रव्यापी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत विभिन्न जिलों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत 25 मई तक विभिन्न चयनित प्रखंडों में शिविर लगाकर जनजातीय समुदाय के लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शिविर में पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाता जैसी योजनाओं से वंचित परिवारों को चिन्हित कर सहायता दी जाएगी। इस कड़ी में रोहतास जिले के 5 प्रखंडों के 19 गाँवों में शिविर की आज से शुरुआत हुई। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने उत्सव का उद्घाटन किया।
3: पहले दिन हम लोग के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया जाएगा और फिर 19 तारीख से 25 तारीख हम लोग डोर टू डोर विजिट करेंगे जनजातीय बहुल्य गांव में, और हर एक घर में जो भी सरकार की योजनाओं से जो भी वंचित हैं या बैंक अकाउंट उनका नहीं है तो वो सैचुरेशन मोड में उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हम लोग का 18 से लेकर 25 तक ये चलेगा। जो जनजातीय बहुल्य गाँव है उनके हर एक घर में हम लोग के कर्मी जाएंगे और हर प्रकार का जो सरकारी सहायता मिल रहा है, सरकारी योजना चल रही, हर योजना का लाभ हर परिवार को मिले, यही हमारा उद्देश्य।
2: सिवान जिले के आंदर प्रखंड के 31 जनजातीय टोलों में राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत घर घर जाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। वहीं मुंगेर के हवेली खड़गपुर, बरियारपुर और धरहरा प्रखंड के 20 चयनित गांवों में विशेष शिविर के माध्यम से पात्र लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अन्य जिलों में भी इस उत्सव की शुरुआत हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जनजातीय गरिमा महोत्सव के तहत जन भागीदारी अभियान से आदिवासियों को काफी लाभ होगा। श्री मांझी ने गया के समाहरणालय सभागार में अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय समूहों के चयनित लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना और वनाधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा प्रदान किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
6: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में

0: जारी गतिरोध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि मुश्किलों के बावजूद देश में सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार हमारे पास मौजूद है।
1: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड और बाकी नेचुरल गैस एलपीजी के प्राइसेस में बहुत उछाल देखा जा रहा है, और इस सब के चलते हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड एलपीजी और नेचुरल गैस का वो भी अफेक्ट हुआ है। परंतु हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशियंट क्रूड इन्वेंट्रीज है। अगर प्रोडक्ट का सप्लाई देखें तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं।
0: एनटीपीसी की बाढ़ इकाई सौर ऊर्जा आधारित नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है। एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख सत्य रामकृष्ण ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि इसके तहत उपभोक्ताओं को 4 मेगावाट तक सोलर एनर्जी की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त बिजली को बैटरी में संग्रहित किया जाएगा और जरूरत के अनुसार उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर दिया गया है। आकाशवाणी के पटना केंद्र समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से आज शाम 6:05 पर प्रथम भोजपुरी बुलेटिन का प्रसारण किया गया। इस अवसर पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्री कुमार ने आंचलिक भाषा में समाचार प्रसारण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है।
2: बहुत दिन से मांग चलत रहा कि भोजपुरी भाषा में बुलेटिन शुरुआत हो को, जौना के शुरुआत आज भइल बा। ऐसे कि जन जन तक ये बात पहुंची और भोजपुरी बहुत लोग बोलेला, बिहार के साथ साथ विदेश में भी लोग बोलेला। ये जो काम भइल बा ये बड़ा बधाई के पात्र बा। भारत सरकार के हम बधाई देते बानी, बिहार सरकार के बधाई देते बानी, आ ये आकाशवाणी के जितना भी अधिकारी लोग बा सब लोग के जो सोच बा और के सैल्यूट कर देने कि इतना अच्छा काम के अच्छा से हम सुनने भी है। जन आज प्रसारण भइल 5 मिनट के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर पर आकाशवाणी पटना के केंद्राध्यक्ष एचडी सिडाम, उप निदेशक सह समाचार प्रमुख अजय कुमार, समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक और निधि श्री समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा यह प्रादेशिक समाचार एकांश के यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज _ पटना पर भी उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना से पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण किया जा रहा है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, भभुआ और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
3: दिनांक 19 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिलों में 1-2 स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना, नालंदा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा और अधिकतम तापमान में औसतन 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। श्री मान ने तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में मत्था टेका और देश प्रदेश में सुख शांति की प्रार्थना की। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से उन्हें सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। पटना स्थित नियोजन भवन में कल पूर्वाहन 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास के तत्वावधान में आयोजित मेले में 12वीं पास 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने योग्य अभ्यर्थियों से मेले में शामिल होकर लाभ उठाने की अपील की है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत लोदीपुर गांव में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की एक दर्जन से अधिक छात्राओं की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि गर्मी के कारण छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन पहले भी जिले के एक स्कूल में प्रार्थना सत्र के दौरान 27 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई थी। केंद्रीय खनन एवं कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने आज नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से दरभंगा जाने वाली नई

0: मेमू सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बन रहा है वातावरण। प्रवासियों से प्रदेश की समृद्धि में योगदान की अपील की। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय गांवों में गरिमा उत्सव की शुरुआत। सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। और आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश ने शुरू किया भोजपुरी बुलेटिन। प्रत्येक दिन शाम 6:05 पर होगा प्रसारण। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021।
0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
7: पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस विशाल समारोह में 30 से अधिक मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा जदयू प्रमुख नीतीश कुमार सहित NDA के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भी उपस्थिति देखने को मिली। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 19 मई से प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायतवार सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों की 40 पंचायतों में ये शिविर आयोजित होंगे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
8: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
7: जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत जिले में मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य तेजी से जारी है। यह अभियान 2 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा। जिलाधिकारी ने सभी वरीय नोडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के साथ नियमित समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया है। खराब प्रदर्शन करने वाले चार्ज अधिकारियों को

0: चेतावनी देते हुए कार्य में तत्काल सुधार लाने को कहा गया है। एम्स पटना के द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को डिग्री एवं मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि एम्स जैसे सम्मानजनक संस्थान से पास होकर स्वास्थ्य क्षेत्र में समाज सेवा करना ही सबसे बड़ी करियर ग्रोथ मानी जाती है।
1: एक तो होता है कि अपने प्रोफेशन में बढ़ोतरी करना, करियर ग्रोथ करना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली रिसर्च करें आप, एनालिसिस करें आप, बहुत कॉम्पिटेंस पाए, बट एज बिफोर जो इंपॉर्टेंस होती है समाज को वापस देना। नॉलेज, ज्ञान प्राप्त इंसान करता है टू गिव बैक टू सोसाइटी। जहां पर भी आपको वो चांस मिले उसको वापस देने का, उसको उससे मुकरिएगा मत।
0: पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन सभागार में एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री के द्वितीय चरण का शुभारंभ कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस दौरान जिले के सभी अंचल के किसानों के लिए फार्मर आईडी निर्माण की शुरुआत भी की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के तहत यह पहल किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपराध नियंत्रण को लेकर पटना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बेटा थाना क्षेत्र में एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस मुठभेड़ में दो वांछित अपराधी घायल हो गए, जबकि एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने एक पूर्व हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।
2: जब इनसे पूछताछ किया गया तो बताया कि ये एक बड़ी घटना वर्चक में करने जा रहे हैं, इसके लिए ये हथियार यहाँ पर बेटा थाना क्षेत्र के एरिया में रखे हुए हैं। हथियार की रिकवरी के लिए जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे दोनों के द्वारा अवधेश साहू उप विदेशिया और पप्पू राय, इनके द्वारा फायरिंग किया गया पुलिस के ऊपर। पुलिस के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया और आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग करते हुए इनको रुद्ध किया गया, जिसमें इन दोनों के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के तुरंत बाद इन लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहाँ ये उपचाररत है। जो तीसरा व्यक्ति है दीपक कुमार, उसे अंदर किया है और इन तीनों को अभी वहाँ पे इलाज करा के फिर आगे की कार्रवाई की।
0: जिले में हाल के दिनों में हुई तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का असर जनजीवन और कारोबार पर भी पड़ा है। बिजली बाधित रहने, जल जमाव और ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापार प्रभावित हुआ। ग्रामीण इलाकों में भी मौसम की मार देखने को मिली है। आम और मौसमी सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है। इसे देखते हुए उद्यान और कृषि विभाग ने सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को सर्वे कर वास्तविक क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया है।
3: अभी आप सुन रहे थे पटना जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
4: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 7:52 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज गायिका हैं शालिनी। आरंभ में इनके स्वर में सुनते हैं रैदास की ये भक्ति रचना।

आप सुन रहे थे हरिवंश राय बच्चन की गीत रचना, स्वर दे रही थी शालिनी। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजे हैं, पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। पहला गाना हमने फिल्म रफू चक्कर से लिया है। शैलेंद्र सिंह एवं कंचन की युगल आवाजें हैं। गीत के बोल गुलशन बाबरा के हैं और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
1: आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8:15 होने को हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। प्रस्तुत करता है मोहम्मद सरशार अहमद।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लोकप्रिय साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। और खेल खिलाड़ी के नए अंक के साथ एक बार फिर उपस्थित हूं मैं मिलिंद गुंजन। स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन। श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर कि क्या कुछ सहेजा है हमने आज के इस कार्यक्रम में खास आपके लिए। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे समसामयिक खेल गतिविधियां, खेल जगत की रोचक खबरें। स्पोर्ट्स कॉर्नर में आज हम आपको सुनाएंगे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता और कार्यक्रम के आखिरी स्तंभ यानी हमारे सवाल आपके जवाब में होगी आप सबों के खेल ज्ञान की परीक्षा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खेल जगत के ताजा तरीन हलचलों से हमारा नियमित स्तंभ खेल गतिविधियां में। और खेल गतिविधियों की शुरुआत करते हैं क्रिकेट की खबर से। क्रिकेट में खबर आईपीएल सीजन 19 की। सीजन 19 में बेंगलोर की टीम ने प्लेऑफ के लिए अपना टिकट कंफर्म कर लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को आईपीएल के प्लेऑफ में जगह बनाने वाली वो पहली टीम बन गई है। टीम ने शुरुआती चरण में अजय रहने वाली पंजाब किंग्स की टीम को 23 रनों से हराकर शाही अंदाज में 9वीं जीत दर्ज की। लगातार छठी हार के साथ पंजाब के अंतिम चार में जगह बनाने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। बेंगलुरु ने वेंकटेश 73 नाबाद और विराट कोहली 58 के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 और डेविड 28 के साथ चौथे विकेट के लिए 65 रन की साझेदारी से चार विकेट पर 222 रन बनाए। फिर भुवनेश्वर और रसिक की कहर बरपाती गेंदों से पंजाब को 8 विकेट पर 199 रन पर ही रोक दिया। बेंगलुरु की यह लगातार तीसरी जीत है। लक्ष्य का पीछा करने उतरे पंजाब की शुरुआत खराब रही। मात्र 19 रन पर उनके दोनों ओपनर और कप्तान श्रेयस पवेलियन में थे। इनमें से आर्य खाता भी नहीं खोल पाए। भुवनेश्वर ने आर्य को मिड विकेट पर शेफर्ड के हाथों कैच कराया। फिर उनके अगले ओवर में प्रभसिमरन भी स्लिप में पड्डिकल को कैच दे बैठे। रसिक ने अपनी पारी की दूसरी गेंद पर श्रेयस को जितेश के हाथों कैच करा दिया। अब कल के दूसरे मुकाबले की बात करें तो दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरकार घर में लगातार 5 हार का क्रम रविवार को तोड़ ही दिया। सीम और स्विंग के महारथी मिचेल स्टार्क के कमाल के बाद केएल राहुल और अभिषेक पोरेल के अर्धशतकों से दिल्ली ने राजस्थान रॉयल्स को 4 गेंद शेष रहते 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। छठी जीत के साथ दिल्ली ने प्लेऑफ की धुंधली उम्मीदें भी कायम रखी है। दिल्ली ने अरुण जेटली स्टेडियम में जीत के साथ शुरुआत की और अंत किया। उसे लीग का अपना अंतिम मुकाबला ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेलना है। स्टार्क ने 4 गेंद में 3 विकेट लेकर पहले राजस्थान को 8 विकेट पर 193 रन पर ही रोक दिया। फिर दिल्ली ने 19 ओवर 2 गेंद में 5 विकेट पर 197 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। अंतिम ओवर में से 7 रन चाहिए थे। आशुतोष नाबाद 18 ने मिलने की गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का जड़कर दिल्ली को जीत दिला दी। इधर बात कर लेते हैं थाईलैंड ओपन बैडमिंटन की, उसके बाद फिर से हम आईपीएल की खबरों की तरफ चलेंगे। थाईलैंड ओपन में भारत के लिए खबर अच्छी नहीं है क्योंकि सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी रविवार को थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन के तीसरे खिताब से चूक गई है। दुनिया के चौथे नंबर की जोड़ी ने फाइनल में 4 चैंपियनशिप पॉइंट बचाए पर उन्होंने इंडोनेशिया के लियो रॉली कर्नाडो और डेनियल मार्टिन से 53 मिनट में 12-21 23-25 से हार झेलनी पड़ी। सात्विक और चिराग ने 2019 और 2024 में यह खिताब जीता था। यह भारतीय जोड़ी पिछले साल चाइना मास्टर्स और हांगकांग ओपन में भी उपविजेता रही थी। यह सात्विक और चिराग के खिलाफ इंडोनेशियाई जोड़ी की पहली जीत भी है। इससे पहले दोनों जोड़ियों के बीच सभी 4 मैच भारतीय जोड़ी ने जीते थे। इस हार के बावजूद सात्विक ने कहा कि आज को छोड़कर मैं इस सप्ताह के हमारे खेल से बेहद खुश हूं। अब यह शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक है। हमें खुद पर भरोसा रखना और सकारात्मक होकर खेलने की आवश्यकता है। वहीं अब टेनिस की बात करें तो विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनेर ने रविवार को एक और उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। वह नोवाक जोकोविच के बाद करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अभी सभी से 9 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीत लिए हैं। सिनेर ने इटालियन ओपन के फाइनल में कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हरा कर लगातार छठा एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीता है। उन्होंने अपना 10वां मास्टर्स 1000 ताज और रोम में पहला खिताब हासिल किया। इससे पहले शनिवार की रात एलिना स्वीटोलिना ने महिला एकल फाइनल में चौथी वर्ता प्राप्त कोको गफ को 6-4, 6-7, 6-2 से हरा कर तीसरी बारी खिताब अपने नाम किया है। इधर पुरुषों के अंडर 23 वर्ग में सफेद गेंद के टूर्नामेंट को T20 प्रारूप में बदला जा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के हवाले से कहा जा रहा है कि टूर्नामेंट जो अभी 50 ओवर के प्रारूप में खेला जाता है अब T20 ओवर का टूर्नामेंट बनने वाला है। हालांकि राज्य संघों को भी अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक संदेश नहीं भेजा गया पर पता चला है कि प्रारूप में

बदलाव आने वाला है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो तैजुल इस्लाम और नाहिद राणा तीन विकेट की बेहतरीन गेंदबाजी से बांग्लादेश ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविवार को पाकिस्तान को पहली पारी में 232 रन के स्कोर पर समेट दिया। फ्रिसम्स के समय तक दूसरी पारी में तीन विकेट पर 110 रन बना लिए थे। पाकिस्तान के उस शहजाद खुर्रम ने दो विकेट लिए, मोहम्मद अब्बास को एक विकेट मिला। इस तरह बांग्लादेश की कुल बढ़त 156 रन की हो गई है। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक 68 रनों की पारी खेली। उनके अलावा साजिद खान 38, कप्तान शान मसूद 21 और सलमान आगा 21 ही कुछ देर तक ज्यादा टिक पाए। शतरंज की बात करते हैं। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर के साथ ड्रॉ खेलकर सुपर शतरंज क्लासिक के तीसरे दौर के बाद संयुक्त रूप से बढ़त बनाए रखी है। यह प्रतियोगिता ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट का हिस्सा है। पिछले दौर में उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिदारोव को हराने वाले प्रज्ञानंदा के दो अंक हो गए हैं। वह फ्रांस के मैक्सिम वाचियर, लाग्रेव नीदरलैंड्स के जॉर्डन वेन फॉरेस्ट, अनीस गिरी और कीमर के साथ संयुक्त बढ़त पर हैं। टूर्नामेंट में 10 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें से आधे संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। अमेरिकी फेबियानो कारवानो और वेनलिसो दोनों ने अपने सभी मैच ड्रॉ किए हैं, उनके 1.5 अंक हैं। और अब बात फिर से कर लेते हैं एक बार आईपीएल की ही। आईपीएल में जो फिलहाल मौजूदा अंक तालिका है, उस अंक तालिका के हिसाब से बेंगलुरु ने 13 मैच में 9 जीत हासिल किए, 18 अंक हैं और वो प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम हो गई। उनके पीछे बहुत शानदार कमबैक जिसने किया है वो गुजरात है, 13 मैच में 16 अंक और वो दूसरे नंबर पर है अंक तालिका में। गुजरात के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, 12 मैचों में इन्होंने 14 अंक अर्जित किए हैं 7 जीत के साथ, वो तीसरे नंबर पर है। पंजाब की टीम जो शुरुआत में अजय थी वो अब लगातार बहुत बुरे तरह से हारते हुए चौथे नंबर पर पहुंच गई है। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 मैचों में 12 अंक अर्जित किए हैं। आज चेन्नई का और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चल रहा है जो बेहद अहम है दोनों टीमों के लिए। राजस्थान की टीम के लिए भी सेटबैक है क्योंकि ये टीम बहुत अच्छा कर रही थी। पंजाब और राजस्थान टॉप 2-3 टीमों के में रही थी, लेकिन अब राजस्थान फिलहाल छठे नंबर पर आ गई है। 12 मैचों में 12 अंक उनके भी खाते में और अगले मैच बहुत अहम होने वाले हैं। दिल्ली भी 12 अंकों के साथ 7वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई 9वें नंबर पर है और 10वें नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मुंबई, लखनऊ और कोलकाता लगभग, और दिल्ली भी कह सकते हैं कि इस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। दिल्ली की उम्मीदें थोड़ी बहुत अभी हो सकती है बहुत धुंधली, लेकिन वो अगर मगर पर टिका हुआ है। बात ऑरेंज कैप की कर लेते हैं। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन गुजरात के 554 बनाकर अप्रत्याशित रूप से वो नंबर 1 पर आ गए हैं। नंबर 2 पर हैं शुभमन गिल गुजरात के ही, 552 रन उनके खाते में हैं, 2 पर हैं। और तीसरे नंबर पर हैं शुभमन गिल के बाद विराट कोहली, जिन्होंने 542 रन बनाए हैं। ये ऑरेंज कैप के टॉप 3 प्लेयर हैं। अब पर्पल कैप की बात करें, पर्पल कैप में भुवनेश्वर बेंगलुरु के 24 विकेट लेकर भुवनेश्वर के सर पर है। रबाडा गुजरात के 21 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर है और कंबोज चेन्नई के 19 विकेट लेकर वो तीसरे नंबर पर हैं। ये पर्पल कैप में भागीदारी है और ये इस तरह से चल रहे हैं। आज के मुकाबले की बात करें आईपीएल में, तो आज बेहद अहम मुकाबला हो रहा है जिन टीमों के बीच, उसमें चेन्नई और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला हो रहा है।

और चेन्नई सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले में अभी जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो सीएसके की टीम बल्लेबाजी कर रही है और शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए 90 रन बनाते हुए 2 विकेट उन्होंने गंवाए हैं। 9 ओवर की गेंदबाजी हुई है। संजू सैमसन ने 27 रन बनाए, 13 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्का शामिल है और ऋतुराज गायकवाड़ ने 15 रनों का योगदान दिया 19 गेंद पर। उर्विल पटेल भी 13 रन बनाकर चलते बने हैं साकिब हुसैन की गेंद पर और कार्तिक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं 32 रन पर 18 गेंदों में और उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ है। ये दोनों टीमों के लिए बहुत अहम मुकाबला है और देखना होगा कि आज जो टीम जीतेगी उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी और सनराइजर्स हैदराबाद कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, वहीं सीएसके भी अपनी तरफ से जी जान लगाएगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब आईपीएल के बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान के महिला क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने शुक्रवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया जो महिला टी20 इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है। फातिमा ने कुल 19 गेंद में 10 चौके और 2 छक्के से 326.31 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 62 रन बनाए। उनकी पारी और सायरा जाबिन नाबाद 50 के अर्धशतक से पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 223 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। फिर जिम्बाब्वे की टीम को 17 ओवर 1 गेंद में 90 रन पर ही समेट कर 133 रन से उन्हें करारी शिकस्त दे दी। इस तरह मेजबान टीम ने 3 मैचों की सीरीज भी 3-0 से अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान ने फातिमा सना की अगुवाई में इंग्लैंड एवं वेल्स में होने वाले महिला टी20 विश्व कप के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। पाकिस्तान अपना अभियान 14 जून को भारत के खिलाफ शुरू करेगा। फातिमा सना कप्तान बनाई गई हैं। आलिया रियाज, आयशा जफर, डायना बेग, पमान फातिमा, गुल फिरोजा, इरम जावेद, मुनीबा अली सिद्दीकी, नसरा संधू, नतालिया परवेज, रमी समीम, सादिया इकबाल, सायरा जमीन, तस्मिया रुआब और तुबा हसन ये टीम है और ये टीम अब विश्व कप के लिए एक दूसरे के विरुद्ध खेलेगी। अब बात भारतीय ए टीम की और भारतीय ए टीम में चुने गए जो खिलाड़ी हैं उसकी चर्चा जो बहुत दिन से हो रही थी उसकी कर लेते हैं। भारत की ए टीम में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है और तिलक वर्मा को कप्तानी सौंपी गई है। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के 9 जून से श्रीलंका में शुरू होने वाले 50 ओवर के त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। टूर्नामेंट में मेजबान श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें भी हिस्सा लेंगी। सभी मुकाबले दाम्बोला में खेले जाएंगे। चयनकर्ता सूर्यवंशी को आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे से पहले परखना चाहते हैं। टीम की कप्तानी तिलक वर्मा को सौंपी गई है। बल्लेबाजी से सभी का ध्यान वैभव सूर्यवंशी ने खींचा था। कम उम्र में बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ नीडर अंदाज में रन बनाने की उनकी क्षमता ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। अब वह भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेंगी। भारतीय टीम इस प्रकार है: प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, आयुष बडोने, निशान संधु, हर्ष दुबे, सुकेश हेगड़े, प्रभसिमरन सिंह, कुमार कुंतल और शिवराज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान को भी टीम में जगह मिली है। टीम श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए से 2-2 मैच खेलेगी। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। ये तो थी खेल जगत की ताजा तरीन खबरें। हमारे नियमित स्तंभ खेल गतिविधियां। हमारे श्रोताओं, अब आपको ले चलते अपने अगले स्तंभ खेल जगत के रोचक खबरों की तरफ।

0: खेल जगत के रोचक खबरों में श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दिलचस्प जंग हो गई है, 10 मैच हैं, 8 दावेदार हैं आईपीएल में। जी हम बात कर रहे हैं आईपीएल के ही। आईपीएल का लीग दौर सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट में 10 मैच बाकी हैं, पर अभी भी एक टीम के प्लेऑफ की आधिकारिक घोषणा हुई है और उसके बाद बाकी टीमें संघर्ष करती नजर आ रही हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, बेंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स, हैदराबाद, दिल्ली की टीमें शामिल हैं और पंजाब किंग्स की टीमें भी इस दौड़ में अभी भी शामिल हैं। बहरहाल देखना होगा कि कौन सी टीमें प्लेऑफ में, और तीन टीमें पहुँचती हैं, एक टीम आरसीबी तो पहुँच चुकी है। इधर पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का कहना है कि भारत T20 विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन 2-3 साल में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में राष्ट्रीय टीम की कप्तानी के दावेदार होंगे। भारत ने 2 महीने पहले विश्व कप का खिताब जीता था, जिसमें सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। ICC रिव्यू के अनुसार शास्त्री ने कहा कि जब 2028 में T20 विश्व कप खेला जाएगा, तब तक भारत शायद नए कप्तान की तलाश में हो सकता है। यह इस पर निर्भर करेगा कि अब सूर्य कुमार का प्रदर्शन कैसा रहता है, पर संजू ने खुद को कप्तानी के दावेदार के तौर पर जरूर पेश किया है। ये तो थी खेल जगत की रोचक खबरें, और श्रोताओं आपको ले चलते हैं अपने अगले स्तंभ स्पोर्ट्स कॉर्नर में। और स्पोर्ट्स कॉर्नर में आज हम आपको सुनाते हैं एक पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय भारोत्तोलन खेल में के विषय में है, जो उसकी राज्य स्तर की गोल्ड मेडलिस्ट हैं पंपा गुप्ता, उनसे बातचीत कर रहे हैं मिलिंद गुंजन। तो आइए ये पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार। खेल खिलाड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं 2012-13 में बिहार स्टेट वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक विजेता पंपा गुप्ता से, जो वर्तमान में वेटलिफ्टिंग की कोच भी हैं। पंपा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद और श्रोताओं को नमस्कार।
1: सबसे पहले पंपा जी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं 2012-13 में बिहार स्टेट लेवल पर, तो इस खेल के बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएं।
2: वेटलिफ्टिंग एक बहुत प्राचीन खेल में से एक खेल है, जो 1896 में ओलंपिक में की अंतर्भुक्त किया गया है। इसमें पहले जो 3 विभाग में होता था, लेकिन वर्तमान में आधुनिक ओलंपिक

0: में इसको मॉडिफाई किया गया और इसका जो है तीन से दो विभाग में बांटा गया, जिसमें एक स्नैच और क्लीन एंड जर्क है। स्नैच में आपको तीन मौका मिल जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आप बार उठा सकते हैं उसी को मान्यता दिया जाता है, और सेम वही प्रोसेस दोहराया जाता है क्लीन एंड जर्क में भी। उसमें भी आपको जो सबसे ज़्यादा आप अंक प्राप्त करते हैं उसी को आपका बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है, और अंत में स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों को मिला के आपका मेन जो है मेन लिफ्ट माना जाता है। जैसे कि स्नैच में अगर आप 100 किलो उठाए हैं
1: जी,
0: और क्लीन एंड जर्क में 150 kg उठाए हैं, तो आपका स्कोर 250 kg माना जाएगा, और इसी के बेस पे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड का निर्णय किया जाता है।
1: तो पंपा जी, आपने जैसे इस खेल के विषय में विस्तार से बताया है हमारे श्रोताओं को, हम ये जानना चाहते हैं कि आप बिहार में ही इसके कोच भी हैं, बिहार में वेटलिफ्टिंग की क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं, क्या संभावनाएं दिख रही हैं बिहार में वेटलिफ्टिंग की?
0: बिहार में वेटलिफ्टिंग के जो वर्तमान संभावना है वो बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि आरा, छपरा, कटिहार, यहाँ बहुत अच्छा खिलाड़ियों का
1: सामने आ रहे हैं सब।
0: सामने आ रही हैं,
1: जी,
0: और महिलाएं भी इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं। जैसे कि महिलाएं में आपका पायल सरकार हुआ, ज्ञानेश्वरी देवी हैं, और छपरा के भी बहुत रीमी हैं। छपरा की बहुत सारी खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा आजकल प्रदर्शन कर रहे हैं, और ख़ास करके भागलपुर, क्योंकि हम भागलपुर में से अभी कोचिंग करवा रहे हैं,
1: जी।
0: तो भागलपुर में बहुत जूनियर्स बॉयज़ जो हैं आजकल सीखने आ रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं इस खेल में, जबकि ये बहुत अच्छा संकेत में से एक संकेत है कि बिहार के लिए कि
1: जी
0: आगे ये लोग राष्ट्रीय स्तर पे अपना बिहार का नाम रोशन कर सके। इसमें आपका निर्मल कुमार हुआ, प्रिंस कुमार हुआ, वर्तमान में एक गर्ल्स आई हैं रिमी,
1: जी
0: वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और राज्य स्तरों में उन सबको गोल्ड मेडल मिला है।
1: जी पंपा जी, अभी जो आप जिन खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं और आपने बताया कि कई ऐसे जिले हैं जहां इसकी काफी अपार संभावनाएं दिख रही हैं आपको एक कोच के तौर पर, तो कहां से वेटलिफ्टिंग के खेल में अगर हम चाहें कि बिहार के जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर करें, तो कहाँ से उन्हें इस खेल को शुरू करना चाहिए, उसके लिए क्या एक तय समय होनी चाहिए, एक कोच की नज़र से आप क्या कहेंगी?
0: पहले तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का गेम है। स्ट्रेंथ के लिए आपको उसका आहार ले लेना सबसे ज़रूरी है।
1: जी, आप डाइट की बात कर रहे हैं
0: हाँ,
1: कि उन्हें खान पान में
0: बहुत
1: बहुत।
0: ज़्यादा ध्यान देना चाहिए
1: जी,
0: खान पान में, जैसे आपका रेड मीट, प्रोटीन सोर्सेज जो सब खाने में है वो बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। एग हो गया, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि पनीर हो गया, दूध या फिर छेना, ये सब कुछ आपको लेना चाहिए, और स्प्राउट, बीन्स, और हाँ, फ्रूट्स, दही, पनीर, और ख़ास करके ऐसा आहार जो बच्चे के जितना वो एनर्जी अपने ख़त्म करते हैं वो फिर वापस लौट के आए अपने आहार के माध्यम से।
1: तो भोजन पे मैंने काफी ध्यान देना होगा जो वेटलिफ्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या जिन्हें वेटलिफ्टिंग में आगे अपने आप को लेके जाना है, तो उन्हें अपने भोजन में पहले बहुत ये
0: हाँ,
1: करना होगा।
0: सबसे पहले उनको अपना आहार जो है वो एक बहुत ही पौष्टिक लेना चाहिए, वरना जितना उनको एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, और वो अपना उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा।
1: जी, और पंपा जी ये कह रहे थे कि जिस तरह से आपने बताया कि उनका जो आहार है, उनका जो भोजन है, वो बहुत मतलब ध्यान देने की बात है, ऐसे में जो युवा हैं, जो युवा वेटलिफ्टिंग में आना चाहते हैं, अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं और अपने जिले के साथ साथ अपने राज्य और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं इस गेम में, क्योंकि अब इस खेल की धमक भारत की तरफ से अगर आप कहें तो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई है और पदक भी जीते हैं कई अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्पर्धाओं में, तो ऐसे में जब युवाओं के लिए
0: अपने आगे पढ़ाई के लिए, फिर नौकरी में आप एक स्पोर्ट्स अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको जॉब पुलिस पुलिस में या फिर कोई अच्छा जिसमें खिलाड़ियों का नियोग होता है उसमें आपका भविष्य बन सकता है।
1: तो करियर की भी असीम संभावनाएं आप देखते हैं इस खेल के माध्यम से,
0: हाँ,
1: तो
0: जरूर।
1: और हम देखेंगे अभी अगर कि आप कोच हैं, खुद एक महिला खिलाड़ी हैं, और श्रोताओं हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो आज खेल खिलाड़ी के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं पंपा गुप्ता, ये अभी वेटलिफ्टिंग की कोच हैं और साथ ही साथ इन्होंने ऑल इंडिया फीमेल रेसलिंग चैंपियन भी ये रही हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 2001, 2002, 2003 में।

0: जूडो में भी ऑल इंडिया जूडो चैंपियनशिप में 1998 में ये थर्ड पोजीशन पर रही थी। तो ये बहुत सारे खेल से जुड़ी हुई हैं और वेटलिफ्टिंग में अभी फिलहाल कोच हैं। तो और जैसे खेल में आपने रेसलिंग में भी आप चैंपियन रही हैं, जूडो में भी आप चैंपियनशिप में थर्ड प्लेस पर आप रही हैं, तो ऐसे में इन सारे खेलों में पंपा जी आप कहाँ पाती हैं बिहार को और कितनी संभावनाएं दिखती हैं?
1: जबकि हम बंगाल से बिलोंग करते हैं तो हम वहाँ से ये फीमेल रेसलिंग और जूडो खेले हैं। फिर जब हम बिहार में आए तो ये दोनों खेल ही बिहार में नहीं था। तो हम जबकि खिलाड़ी हैं, हमको हमेशा खेल के प्रति अपना हम प्यार था, तो फिर हम कुछ करने के लिए फिर हम वेट लिफ्टिंग ज्वाइन किए और फिर वहाँ कड़ी मेहनत के बाद हमको सफलता मिला और फिर वहाँ राज्य स्तर में हमको स्वर्ण पदक मिला।
0: तो पापा जी, जब आपने सीधे रेसलिंग और जूडो के बाद आप वेटलिफ्टिंग में आई और आपने बताया कि कड़ी मेहनत आपने की है, इसके लिए तपस्या की है, तो कहा जाता है कि वेटलिफ्टिंग एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट और बहुत गहन तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी आप इस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके लिए क्या क्या परेशानी हुई जब आप इस खेल में आई, वेटलिफ्टिंग खेल को आपने शुरू किया?
1: शुरुआत में हमको बहुत परेशानी हुआ क्योंकि बिहार में प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। जितना सामान होना चाहिए एक वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी के लिए जो प्रैक्टिस करने से उसको बहुत ज़्यादा सुविधा मिले, लेकिन इस तरह से कोई सुविधा नहीं थे। हम खाली एक जिम में अपना वेट लेके प्रैक्टिस करते थे सुबह शाम, करीब काम के बाद सुबह फिर शाम, दोनों तरह से लगातार मेहनत के बाद हमको राज्य स्तर में सफलता मिला। लेकिन अब अगर राष्ट्रीय स्तर में सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग माहौल चाहिए, अलग इक्विपमेंट चाहिए, प्रैक्टिस का अलग सामान चाहिए, जो हमको नहीं लगता है फिलहाल हम जहाँ पे करवा रहे हैं वहाँ उपलब्ध है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि थोड़ा सा जो इक्विपमेंट है हमारे वेट लिफ्टिंग का सामान, जो अगर उन्होंने ध्यान दे तो आगे हमारे बच्चे भी, उनको बहुत सफलता इस चीज़ से मिलेगा।
0: तो आधारभूत संरचना की आप बता रहे हैं कि कमी है कहीं ना कहीं, जिससे कि थोड़ा सा ये खेल अगर पिछड़ता है तो इसकी वजह से। कितने घंटे की प्रैक्टिस अमूमन इस खेल में आप कर सकते हैं जिससे कि बेहतर खिलाड़ी निकल करके आ सकता है? तो ये क्या कोई टाइम बॉन्ड है कि आप इतने घंटे प्रैक्टिस सुबह शाम में, या कब इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मुफीद होती है?
1: देखिए, अगर आप में डिसिप्लिन है और लगन है तो आप कभी भी आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सुबह में आप 2 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए, शाम में भी प्रैक्टिस कीजिए। खाली कि आप जिम में अपना पावर बढ़ाने से नहीं होगा, इसमें आपको मानसिक भी शक्ति का भी बहुत ज़रूरत पड़ता है और स्टैमिना, लगन, ये सब का जरूरत। खाली कि आप वेट उठाएं और प्रैक्टिस किए, ये नहीं, आपको रनिंग भी करना चाहिए और डीप सीटअप, स्क्वाट, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। आपको मतलब एक वेटलिफ्टर को सर से लेके पाँव तक हर चीज में उनको पावर होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी
0: जी
1: बहुत जरूरत पड़ता है एक खिलाड़ियों के लिए।
0: और जो महिला खिलाड़ी हैं जो इस खेल में आना चाहती हैं, आपने कहा कि भी काफी असीम संभावनाएं हैं और आप चूंकि कोच हैं तो कोच की नजर से देख रही हैं आप, तो ऐसे में महिलाओं के लिए आप क्या देखती हैं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए? चूंकि लड़कियां ऐसे और सारे खेल थोड़ी सी आसानी हो सकती है, लेकिन वेटलिफ्टिंग जिसमें आपने बताया कि उनके लिए उनको बहुत स्टेमिना चाहिए और जो कंसंट्रेशन है वो भी उनका पूरा होना चाहिए, तो ऐसे में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: लड़कियों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो एक बार आके ये खेल सीखें, उसके बाद वो अपना देखें कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। हमको लगता है कि एक महिला अगर चाहती है तो वो सब कुछ कर सकती है। हमारे देश में कर्नल मलेश्वरी, वो 2000 में अपना देश के लिए रजत पदक जीत के जब दिखा सकते हैं तो दूसरे महिला क्यों नहीं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ, बच्ची, लड़कियाँ सब आए और देखें कि ये खेल कैसा है। ये नहीं कि ये खाली पुरुष सीखे या जेंट्स लोग सीखे, नहीं, महिलाओं के लिए हमको लगता है सबसे ज़्यादा महिलाओं की इसकी ज़रूरत है। अगर वो एक
0: जी
1: अगर वो ये चीज़ अगर सीख लेते हैं तो वो खाली राज्य स्तर में नहीं, हमको लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना बिहार का नाम रोशन कर सकती हैं
0: और काफी ढेर सारे पदक भी भारत की झोली में दिला सकते हैं।
1: हाँ, जरूर।
0: तो कितनी उम्र अमूमन कहाँ आप देखते हैं कि स्कूली लेवल से उनको तैयार किया जाना चाहिए, या फिर क्या कोई उम्र सीमा है जिससे कि बेहतर खिलाड़ी आप निकाल पाए, तो कब उनके लिए सीखने के लिए सबसे अच्छा जो टाइम होता है उनके लिए कौन सा मानती हैं आप?
1: हमको लगता

0: है कि 10 साल से अगर वो आना स्टार्ट कर दें तो एक छोटे बचपन का वो जो होता है ना, वो अपने अंदर ले सीख लेता है। वो फिर धीरे धीरे जब वो उसका मैच्योरिटी बढ़ता जाता है तो वो खेल को अपने अंदर वो खींच लेता है, वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करता जाता है।
1: जी पंपा जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है। और श्रोताओं, पंपा जी ने आपको मैंने बताया अपने इस कार्यक्रम के दौरान कि ये ऑल इंडिया फीमेल रेसलिंग चैंपियन भी रही हैं, नेशनल जूडो में भी ऑल इंडिया लेवल पर इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है, और वेटलिफ्टिंग में भी 2012-13 में बिहार की तरफ से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और अभी वेटलिफ्टिंग की कोच हैं। इन्होंने हमारे साथ आज ये बातचीत की है वेटलिफ्टिंग के बारे में, जो भारोत्तोलन भी हम इस खेल को कहते हैं, और इस पर इतनी अच्छी जानकारी आप श्रोताओं तक पहुँचाई है। पंपा जी, आपने हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स कॉर्नर अंतर्गत ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता भारोत्तोलन खेल के स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट पंपा गुप्ता से। हमें उम्मीद है आपको यह भेंट वार्ता अच्छी लगी होगी, इस पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार होगा। और अब आपको सीधे ले चलते वहां जहां तक की खेल ज्ञान की परीक्षा, हमारे सवाल आपके जवाब में।

हमारे सवाल आपके जवाब में श्रोताओं, आप तैयार बैठेंगे हमारे सप्ताह के दो प्रश्न नोट करने के लिए। तो नोट कीजिए, हमारे सप्ताह का पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक कितनी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। पहला प्रश्न एक बार फिर से, ओलंपिक खेलों में भारत ने अब तक कितनी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। हमारे सप्ताह का दूसरा प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न एक बार फिर से, उबेर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। इन दोनों प्रश्नों को आपने नोट कर लिया होगा। इसका सही हल 7 दिनों के अंदर अंदर हमें हमारे सप्ताह पर लेकर भेज दें। हमारा पता है, हमारे सवाल आपके जवाब, कार्यक्रम खेल खिलाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी भागलपुर, पिन कोड 8120001। और आप हमें मेल से भी अपने सही जवाब भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है phirbhagalpur@gmail.com। तो हमें इंतजार रहेगा आपके सही जवाब का। और बारी पिछले सप्ताह पूछे गए सवाल, सवाल के सही जवाब और सही जवाब भेजने श्रोताओं के नामों की। तो पिछले सप्ताह यानी 11 मई को हमने आपसे पूछा था, चक्कर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब है पोलो। हमारा दूसरा प्रश्न था, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक जीता। इसका सही जवाब है साइना नेहवाल, 2012 के लंदन ओलंपिक में। इन दोनों प्रश्नों के सही सही जवाब आप श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय आवासीय परिसर आशिया नदी घर रोड पटना से, अरशान अहमद, जारिस वसी अहमद, शाजली ममसी व शादाब अहमद, नजीर मोमिन लेन इस्लामपुर चंपानगर से, शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर व तारिक अनवर, भीकनपुर भट्टा रोड विसर स्थान भागलपुर से योगेंद्र प्रसाद राय, विभा राय, विप्लव वैभव, यामिनी व यशा, ग्राम पोस्ट गौरा से डॉक्टर हेमंत कुमार, जीवेश नंदन व नीलेश नंदन, कहलगांव पूरब टोला वार्ड नंबर 15 से पांडे गली से सुजीत राय, दीपंकर राय व इनके परिवार के सदस्य, मुजाहिदपुर पूरब टोला भागलपुर से मोहम्मद खालिद अंसारी, ताहिर अंसारी, कादिर नुरुल्ला, जिशान अकरम व एमके नाज, बड़ी खंजरपुर मस्जिद भागलपुर से भाई गुलफराज आलम, बेगम शमार, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली। आप सभी को सही जवाब भेजने के लिए खेल खिलाड़ी को से ढेर सारी सुख बधाइयां। और अब तो हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इवनिंग न्यूज़ और फिर उर्दू खबरें। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली केंद्र के प्रसारण में।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा

0: सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी।
2: इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पांच देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है, एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराडे जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112331444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफी राज्यों में स्वगणना का पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान की हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए, तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स

0: होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि
1: जी
0: उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है।
1: जी
0: बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगुणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स
1: जी
0: मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है, मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने
1: जी
0: पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हालांकि हो सकता है,
1: जी
0: लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते
1: ठीक
0: हैं।
1: है। और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं।
0: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
2: नमस्कार जी, जागृति जी को, विशेषज्ञ जी को नमस्कार। ये
1: नमस्कार, मैं फरहत
2: सारे
1: नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी। जी,
2: सॉरी जी,
1: लेकिन मैं
2: फरहत नाज जी।
1: आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुंचा दूंगी।
2: जी,
1: जी
2: और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उसपे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उसपे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ 2-3 ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स मैं कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे
0: जी
1: इस
0: जी
1: विकल्प में। जी
0: एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में।
1: जी
0: तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता है तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है।
1: जी
0: बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभवता नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर
1: जी
0: आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है,
1: जी
0: केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है SE.census.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे, किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि
1: जी
0: हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, जनगणना अधिनियम की सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति
1: जी
0: को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति

0: दूसरे मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
1: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी
0: जी
1: जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इंफॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहाँ पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
0: जी और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी
2: जी नमस्कार मैडम जी,
0: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
1: नमस्ते, प्रणाम।
2: जी ना मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
1: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सब सबसे अपील करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सही है वही इंफॉर्मेशन दे दे, और आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इंफॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
0: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही
1: बिल्कुल
0: सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी
3: जी नमस्कार
0: नमस्कार।
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
1: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
0: वैशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
1: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें
0: जी
1: कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहां पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
0: जी अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
1: ये प्रगणक देता है और
0: जी
1: नियम है कि

0: एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं, एनुमरेशन ब्लॉक
1: जी
0: हम जिसको कहते, छोटा सा एरिया होता है, 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर
1: जी
0: देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट
1: जी
0: उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है। और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी
2: जी नमस्कार
1: नमस्कार।
2: जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करवानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता। तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है। तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है, ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पर रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
2: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा भी ज्वालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार
2: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी। जी
0: नमस्ते।
2: मैम मैं जानना चाहता हूँ जी, जो जनगणना हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी
2: जी नमस्कार
1: नमस्कार।
2: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधू अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है, तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो, अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है, तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका
1: जी
0: उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा। और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
3: नमस्ते मैम,
1: जी नमस्कार।
3: और आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
3: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा? उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह स्वीकृत से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या

0: घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगनक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोज़ दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जे कलस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है
1: जी।
0: जो बेघर होते हैं बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331 0481 पर और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371717 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रिशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनकी उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है, जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
1: जी, अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
1: जी।
0: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था, क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान एक तो गाँव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी, और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा, जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ विशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो वो लोग ये
0: बिल्कुल
1: सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें
1: जी
0: मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है, जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में दो घर है, यहाँ पे एक घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
1: जी और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी,
2: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
3: सर, जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक
0: जी
1: तरीके से,
0: जी
1: क्योंकि
0: हाँ
1: अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है, क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है, और आपका मकान गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत, कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के

आप सुन रहे थे उस्ताद विलायत हुसैन खां का गायन राग जोग में। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10 बजने को हैं। हाजिर हैं हम लेकर आपके फरमाइशी पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी के साथ। सुनने वालों की खिदमत में विशाल आनंद का प्यार भरा नमस्कार।

0: ये पहला गाना फिल्म परवरिश से हमने लिया है। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी एवं शैलेंद्र ने इसे गाया है। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: हम
0: और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। मधेपुरा अनिरुद्ध चौक से आप हैं।

मीना ठाकुर, राज ठाकुर, प्रेमचंद ठाकुर, मुरारी ठाकुर, ऋषि ठाकुर, संजू मिश्र, सुभाष मिश्र, भवानी लवकुश, अरुण झा और इनके परिवार के सभी सदस्य। किशनगढ़ अजमेर से ये पत्र है, लिखने वाले हैं शैलेश झा। नौगछिया मुमताज मोहल्ला से हमें इस गीत को सुनवाने के लिए पत्र लिख भेजा है जफर अंसारी, अथर अंसारी, शौकत अंसारी और परिवार के लोगों ने। कहलगांव पूरब टोला वार्ड नंबर 15 पांडे गली से ये पत्र आया है, लिखने वाले हैं सुजीत रॉय, दीपांकर राय और तमाम रॉय परिवार। मोहल्ला सदरुद्दीन चक से ये पत्र आया है, लिखने वाले हैं मोहम्मद शहजाद हाशिम, मोहम्मद हाशिम उद्दीन और परिवार के सभी सदस्य। सैलबाग भागलपुर से ये पत्र है, लिखने वाले हैं अभिजीत, अभिषेक, सोनू, मोनू, भाव्या, पारस, आदित्य, प्रीति और मोनू। दिल्ली शहर से ये पत्र हमें लिख भेजा है हीना नाज, आदिबा और फातिमा नाज ने। सुल्तानगंज सीता रामपुर से ये पत्र आया है, लिखने वाले हैं प्रमोद पासवान, सुष्मिता, सागर, दीपा, करीना और सूरज। और ये पत्र आया है मोहल्ला सदरुद्दीन चक से, लिखने वाले हैं मोहम्मद शहजाद हाशिम, मोहम्मद हाशिमुद्दीन और इनके परिवार के सभी लोग। आइए सुनते हैं आप सबों की मिली जुली फरमाइश पर ये की।

अब ही सुनते हैं किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर का गाया फिल्म गैम्बलर का एक गीत। गीत के बोल नीरज के हैं और संगीत तैयार किया है सचिन देव बर्मन ने। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। भट्टा बाजार पूर्णिया से आप हैं लीनू नीशू और उनके मम्मी पापा। कुनौनी बांका से हमें इस पत्र लिख भेजा है बबलू डब्लू नीपू चंदा और ललन ने। ग्राम कुड़रो से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं पप्पू लीली आपरा वैष्णो और कौशिक। ये पत्र आया है चांदपुर गोगरी जिला खगड़िया से। लिखने वाले हैं जानकी प्रसाद मंडल रीता देवी रेखा पूनम नंदू मंडल और घर के सभी सदस्य। लालूचक भागलपुर से हमें पत्र लिख भेजा है सागर बादल चेतना गायत्री देवी विष्णु कुमार चौधरी एवं रामदेव प्रसाद चौधरी ने। भीखनपुर भट्टा रोड से ये पत्र है। लिखने वाले हैं गणेश पासवान और सुधा पासवान। मुंदीचक भागलपुर से हमें पत्र लिख भेजा है दिलीप कुमार सोनी ने। ममलखा लैलक से ये पत्र है। लिखने वाले हैं विनोद यादव। सहरसा से ये पत्र है। लिखने वाले हैं राधे विद्यार्थी। और भागलपुर से हमें पत्र लिख भेजा है डॉक्टर हेमंत कुमार ने। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आइए सुने ये गीत।

नीलकोठी साहेबगंज से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं छोटू, सृष्टि, मोहित राज, सोनम और डॉक्टर सुभट मंडल। बड़ी खंजरपुर भागलपुर से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं भाई गुलफराज आलम, बेगम शमा आरा, दोस्त जमालुद्दीन नेपाली और सिटीजन मास्टर। धोरैया गंगदौरी से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं रामविलास, रविकांत, नीरज, अमर, मारुति, सावित्री देवी, कावित्री, तनुजा और सांदेव हरि जी ने। मुंदीचक भागलपुर से ये पत्र आया। लिखने वाले हैं विशाल कुमार, ऋतिक रोशन और डोलू। बैजानी चौबे टोला से ये पत्र है। लिखने वाले हैं वर्षा, वंदना, कन्हैया, मेगा, साहब जी, शालू, निहाल, साक्षी, कुकू, चीकू, पवन, कल्लू, मुल्लू, सोनू, नीतू, मीतू, ईशु, अनु और आया। बूढ़ानाथ रोड भागलपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं गोपाल प्रसाद शाह और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये पत्र है ग्राम बात से। लिखने वाले हैं राजू, सुमन, हिमांशु, छोटी बाबू, कंचन, डब्लू, बबली, फुच्चन और बबलू। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म नया जमाना का ये गीत।

अगला गाना फिल्म सौदागर से है, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। बड़ी गोविंदपुर जमालपुर मुंगेर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं मुकेश कुमार, परवीन बाबू, बबलू, राजेश, जितेंद्र, जीवन, मनोज, दीपक, विवेक, मनोहर, अनिल, हिमांशु, कौशल, विजय, प्रफुल, मोहन और राहुल। मोजाहिदपुर पूरब टोला से ये पत्र आए। लिखने वाले हैं मोहम्मद राजू खान, मोहम्मद जहांगीर खान, शबनम जानम, खैरू भाई, रूबी बेगम, अरबाज खान, अयाज खान और महमूदा खातून। बसवारा पुंसिया से ये पत्र आए। लिखने वाले हैं पवन कुमार सिंह, सचिन, छोटू राजा, सौरभ और गोलू। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये पत्र आए। लिखने वाले हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। जिला पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से ये पत्र है। लिखने वाले हैं शिवा गोप, संगीता गोप, लिली गोप और दीपाली गोप। घंटाघर भागलपुर से ये पत्र है। लिखने वाले हैं नैना कुमारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। कटोरिया बांका से ये पत्र है। लिखने वाले हैं शहादत अली, सालिक शहादत, शिद्रा शहादत और शाहिना परवीन। और ये पत्र है चंपानगर से। लिखने वाले हैं शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर, तारिक अनवर और इनके परिवार के सभी लोग। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मुकेश का गाया फिल्म जिंदगी और तूफान का गीत। गीतकार राम अवतार त्यागी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है आप श्रोताओं ने। ग्राम झिकुलिया जिला बांका से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं रमेश शाह और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये पत्र आया है मोहल्ला ततारपुर से। लिखने वाले हैं नाबा कौशर, अरसान अहमद, जरीश अहमद, हाजिक अहमद, सुमरान, सुमी और सगुफ्ता। लुत्पली लेन मोहल्ला काजवली चक से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं फौजैल नसीम रोज, सुमेरा शहरीन, फैसल नसीम, शादान, सिमरा, सिदरा, जोया और अनम। अली बख्श लेन मोहल्ला नाथनगर से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं हिबा फौजैल, दानियाल उमर, मायरा उमर, उमर फारूक, मोहम्मद फौजैल, जुबैर अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। नाजिर मोमिलेन इस्लामपुर चंपानगर से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं शब्बीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर और तारिक अनवर। सुभानपुर कटोरिया बांका से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं शहादत अली, सालिक शहादत, सिदरा शहादत और शाहिना परवीन। ये पत्र आया है बांका से। लिखने वाले हैं रमेश शाह और इनके परिवार के सभी सदस्य। ततारपुर भागलपुर से ये पत्र आया है। लिखने वाले हैं बाबा कौसर, अरशान अहमद और जरीस अहमद। और ये पत्र आया है साहिबगंज भागल

पुर से लिखने वाले हैं छोटू सृष्टि, मोहित राज सोनम और डॉक्टर सुभट कुमार मंडल। आप सबों की मिलीजुली फरमाइश पर आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: पसंद आपकी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे पहले हिंदी में, फिर 11:05 पर अंग्रेजी।
1: प्रस्त चैनल है, आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
3: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची

के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।